जय गुरु भाई बोलो, आप सबको खनिमान स्वागत करो हूँ हमारी आज नी पर बात नी सभा में। आप सभा में दिया हो आप लोग सामुदायिक रेडियो वाक रेडियो 90.8 FM मो हूँ आपने हाथे आपनी बुनंजली पारेश्वर ने आज वार सोमवार ने तारीख 7 सितंबर 2026 नो दाड़ो है। भाई बोलो हमें देखी रहे हो कि अपने स्टूडियो ने घड़ी में पर बात ना 6 बजे के हैं। तब आपने शुरुआत करो परबात ने सभा में प्रसारित थवा वाला कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा। तो भाई मुनो आज सभा ने शुरुआत करेंगे सप्ते की पहले भक्ति श्रद्धा ने आस्था तक की जुड़ कार्यक्रम आराधना तक की। यहाँ में अपना हम रंगा आज न सुविचार ने हाथी भक्ति में गीता ने मानस क्रम में अगाड़ी बढ़ेगा किसान भाई बहनों तक की जुड़ कार्यक्रम खेती बाड़ी आ कार्यक्रम आप हम रिश्कोगा ठीक 6:30 माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने मुँह आपकी बूंद अंजलि पारेश्वर ने हाथे इस कड़ी में अपने बीजा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जेने कहीं बालकों ने बालपन अगले कार्यक्रम सच्चा बचपन आ कार्यक्रम आप हम रिश्कोगा ठीक 7 बजे प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने मुँह आपकी बूंद अंजलि पारेश्वर ने हाथे इस कड़ी में अपने अगाड़ी रुख करेंगे तमारी ने अमारी आवाज कार्यक्रम युवाओं ने आवाज नियाड़ी आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक 7:30 माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने कशिश पारेश्वर ने हाथ थी इस कड़ी में अपने अगाड़ी बढ़ेगा अपने अधिकार कानून नियम तक की जुड़ कार्यक्रम सच्चा स्वराज आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक 8 बजे प्रस्तुत करता अंजलि पारेश्वर इटले मो ने मारे हाथे रहेगा मारे रेडियो साथी जागृति भट्ट अनस क्रम में बढ़ते तक अपना रुख करेंगे राजस्थानी गीत तक की जुड़ कार्यक्रम लोक संगीत आ कार्यक्रम आप हम रिश्कोगा ठीक 8:30 माते श्रोताओं बिस्सू कार्यक्रम शुरू था का ठीक 9 बजे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य आ कार्यक्रम लेने आवेगा प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने मनीषा पटेल इन बाद भाई बोनो ठीक 9:30 माते आप हम रोगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी बहन बुनो हमारी आप तक की हिंदी मुलाकात था का कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में ठीक 10 बजे आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी इन बात बहन बुनो शुरू था का अपनी पसंद का कार्यक्रम जिन्हें आप हम रिश्कों का पर बात 11 तक की बोपरनी 1 बजे में बहन बुनो अगर आप भी अपनी फरमाइश न गीता ने हम रोचा हो तो मैंने लकीन मोकली शको फिल्म नाम गीत ना बोल अपना नाम ने अपना गम नाम हमारे अणा व्हाट्सएप नंबर माते हमारो नंबर है 9414082643। तो बहन बोनो आ तो हती हमारी आज ने प्रभात ने सभा में प्रसारित थवा वाली कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा अब आवो अपने सभा ने शुरुआत करा भक्ति श्रद्धा ने आस्था की जुड़ कार्यक्रम आराधना थकी।

0: आज के सुविचार।
1: मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वो हे दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय। काल, काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता, समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपणा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनू, आप एकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना कदम है ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हमरो घणी बोने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
4: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावो है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जैवरे अधिकार हंग्र अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
3: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरावरा हंगरा किसान भाई बहनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बहन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 एफएम माते ने आप सबनु घणे मान स्वागत कर हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के किसान भाई बहनो आप सब जाणो छो के अमे अमारे टाइम माते हाजिर थई जह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लईने एक नवा विषय ने हाते। तो किसान भाई बहनो आज अमारी आप तकी बातचीत नो विषय है जलवायु शमन हूँ कहवा है ने अणा परिवर्तन ने रोकवा बल्ले आपणे कया कया उपाय करी शका। तो किसान भाई बहनो अण विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी आप तकी घणा कानी वाते थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरा विदा गीत मोरे करा आपणी वाते। तो किसान भाई बहन आप हमर दरेजू आपणो रेडियो आपणी वाते वागड़ रेडियो 90.8 एफएम माते।

0: કિસાન ભાઈ બોનું ગીત તો આયશું પૂરું. નાણા ગીત બાદ એક વખત ફેરી આપ સબનું ઘણીમાન સ્વાગત કર રહા અમારે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે કિસાન ભાઈ બોનો, અમે આપને ગીત થકી પહેલે વિશે બતાડી દીધું હતું કે આજે આપણે વાત કરવા વાળા હ કે જલવાયુ શમન શું કહેવાય ને આ જલવાયુ જે પરિવર્તન થઈ રહ્યું હે એને આપણે હરતી રોકી શકા. તો કિસાન ભાઈ બોનો, આના વિશે માટે જાણકારી આલવા બદલે આજે આપણે સ્ટુડિયો મેં પધારે તકે હે શ્રીમાન પ્રમોદજી રોકડિયા સાહેબ. તો સૌ થકી પહેલા આપણે હામરી લણાની વાત મોરે કર આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્કાર
0: સર, આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: કિસાન ભાઈઓ, સભી શ્રોતાઓ કો નમસ્કાર.
0: સર, જૈસા કે આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે સમય સમય પર જુડતે હૈ ઓર હમારે બાતચીત કા એક નયા વિષય ભી હમારે સાથ મેં જુડતા હૈ, તો આજ કાર્યક્રમ મેં હમારી આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ કે હમ યે જો જલવાયુ પરિવર્તન દેખ રહે હૈ વો ક્યું હો રહા હૈ ઓર સાથ હી યે જો જલવાયુ પરિવર્તન હો રહા હૈ ઇસકી રોકથામ હમ કૈસે કર સકતે હૈ, ક્યોંકિ યે પરિવર્તન જો હૈ વો હમારે લિયે કહે સકતે હૈ કે કહીં ના કહીં નુકસાનદેહ હોતા હૈ.
1: નિશ્ચિત રૂપ સે જૈસા ભી આપ બાત કર રહે હૈ જલવાયુ પરિવર્તન, આજકાલ અપન દેખતે હૈ કે જલવાયુ કે અંદર કઈ સારા પરિવર્તન આતે હૈ. કભી તો બારિશ જલ્દી આતી હૈ, કભી બારિશ લેટ આતી હૈ, કભી વાતાવરણ મેં ગરમી બહોત બઢ જાતી હૈ, કભી વાતાવરણ મેં ગરમી કમ હો જાતી હૈ, ઠંડક હો જાતી હૈ, તો ઇસી કો જલવાયુ પરિવર્તન કહેતે હૈ. ઓર ક્યોંકિ હમ કિસાન લોગ હૈ, હમ ખેતી વાલે લોગ હૈ, તો હમ યે દેખતે હૈ કે જલવાયુ કા હમારે કો સબસે જ્યાદા પ્રભાવ પડતા હૈ.
0: જી બિલકુલ સર,
1: હમારે કો ઇસકા વિપરીત પ્રભાવ, જૈસે અભી અપન દેખ રહે હૈ કે બારિશ નહીં આ રહી, તો યે ભી જલવાયુ પરિવર્તન કા એક દુષ્પરિણામ હૈ.
0: જી બિલકુલ,
1: કિસ તરહ સે વાતાવરણ કે અંદર જો બાદલ બનને થે વો નહીં બન પા રહે ઓર જો હવાએ કા રુખ હૈ ઓર જો ગરમી હૈ વો જ્યાદા હોકર બાદલ કા બનને કા પ્રક્રિયા રુક રહી હૈ, તો જો માનસૂન કે બાદલ હમારે યહાં અભી નહીં આ પા રહે.
0: જી બિલકુલ,
1: તો એક યે સાઇકલ હોતા હૈ, એક નિરંતર એક ચક્ર હોતા હૈ જો હમારે ચલતા હૈ, ઓર ઇસીલિયે હમ કહેતે હૈ કે સાહેબ ખરીફ હૈ, તો હમ કહેતે હૈ બરસાત કા સીઝન આ ગયા, હમ જૂન જુલાઈ મેં યે તૈયાર હોતે હૈ કે હમ બારિશ આ રહી હૈ.
0: જી બિલકુલ,
1: તો ઇસ ચક્ર કે ચલતે હમેં એક નિશ્ચિત રૂપ સે ઠંડ કે દિનો મેં હમારી ઠંડ આના શરૂ હો જાતી હૈ ઓર વાપસ ઠંડ ચલી જાતી હૈ, તો યે ચક્ર કે રૂપ મેં જાતા હૈ. લેકિન જલવાયુ કે અંદર પરિવર્તન, ક્યોંકિ હમ કુછ એસે તરહ કે ગેસેસ જો હોતે હૈ જો ગ્રીન હાઉસ ગેસેસ કહેતે હૈ, તો વો ગરમ હોતી હૈ ઓર ઉસકે હિસાબ સે જલવાયુ કે અંદર જો પરિવર્તન આ રહા હૈ ઉસમેં જો વાતાવરણ મેં નમી જા રહી હૈ, ધૂપ જા હૈ, તો ઉસમેં કુછ એસે હૈ ઇન્ડસ્ટ્રી વગેરે હૈ ઉસસે ગેસેસ બન રહી હૈ, તો ઇસ તરહ સે જલવાયુ કા પરિવર્તન હોતા હૈ.
0: જી બિલકુલ સર,
1: इसको अपन ऐसा भी समझ सकते हैं कि हम जलवायु परिवर्तन के लिए दो तरीके से भी हम बात कर सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन को या तो हम अपनी खेती के ऊपर उसके विपरीत प्रभाव को रोकें और दूसरे जलवायु के परिवर्तन होने के कारणों को रोकें.
0: जी बिल्कुल,
1: तो जिसको अपन जलवायु शमन भी कहते हैं.
0: जी बिल्कुल, तो सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये जो जलवायु परिवर्तन है इसका प्रभाव हमारी खेती पर भी होता है और साथ ही हम देखते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं वो हम पर भी इफेक्ट करती हैं. तो यही आपने जैसा कि बताया कि आज हम जलवायु शमन के बारे में बात करेंगे, तो सर ये क्या होता है और किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं?
1: जलवायु शमन जैसे अपन बात करें क्लाइमेट मिटिगेशन.
0: जी बिल्कुल,
1: यानी कि क्लाइमेट का जो इस तरह से रोकना है उसको कि हमारे खेतों पे और उस पे हमारे वातावरण में विपरीत प्रभाव ना पड़े.
0: जी बिल्कुल,
1: तो एक तो होता है जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हम अपनी खेती को जलवायु के अनुरूप कर लें, उसका मतलब कि हम अपने जल्दी जो पकने वाली वो फसलों को ले लें और ऐसे तरह के कारक बनाएं ताकि हम उसके अनुरूप अपना काम करें. गर्मी है तो उसके अनुरूप करें खेती को, उसके अनुरूप जैसे हम कहते हैं मिलवा खेती करना शुरू कर दें, जैविक खेती करना शुरू कर दें. जैसे अपन बातें करते हैं कि हम जैविक खेती करेंगे तो नमी को हम ज्यादा रोक पाएंगे, मिट्टी को अच्छी कर पाएंगे, तो ये हम उसके अनुरूप हमारी खेती में परिवर्तन करें.
0: जी बिल्कुल,
1: और दूसरा है कि हम उसके कारकों को रोकने का प्रयत्न करें. अब उसको हम जलवायु शमन कहते हैं, जलवायु जिस मिटिगेशन जो अपन बात करें ना.
0: जी जी.
1: तो उसमें क्या है कि उसमें दो तरीके से बात करेंगे, क्योंकि एक जो अपन कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस होती है जो वातावरण को गर्म करती है.
0: जी हाँ.
1: तो उनको तो कम करना, उनके जो कारण है उसको रोकना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की खपत करते हैं
0: जी जी,
1: जैसे अपन कहते हैं जंगल वगैरह जो जंगल के पेड़ वगैरह होते हैं, तो हम कहते हैं वन अधिक लगाना, पेड़ अधिक लगाना, तो उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो अपन जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते लेते हैं, तो अगर ज्यादा पत्ते होंगे, ज्यादा पेड़ होंगे, ज्यादा पौधे होंगे, तो उसको वो सोख सकते हैं.
0: जी जी.
1: तो दो तरीके से कि कार्बन डाइऑक्साइड रोकना के प्रयास करना और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकली हुई है मतलब उसको जो सोखने वाला कार्यक्रम करना.
0: जी बिल्कुल.
1: अब क्योंकि हम तो कृषि वाले आदमी, हम ये तो नहीं कह सकते कार्बन डाइऑक्साइड रोकें, वो इंडस्ट्री वगैरह होती है उसके विकास के कार्य है, उनका अपनी एक गति है जो हमारे विषय में भी नहीं आती. हम कहते हैं भाई वो इंडस्ट्री को तो अपन नहीं रोक सकते, हमें वो भी आवश्यकता है, लेकिन हम खेती के आदमी अपने वनों को बढ़ाना और इस तरह के जो कार्य है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की प्रक्रिया होती है, जिसको कहते हैं सिंक, यानी कि उसको सोखना, तो उसको सोखने की प्रक्रिया के जो परिणाम है उसको हम उस पर ज्यादा अपन फोकस करें।
0: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा, क्योंकि हम अधिक से अधिक वन और पेड़ पौधे लगाएंगे तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको हम रोक पाएंगे। बाकी जो चीजें हैं वो अलग अलग निर्भर करती हैं, लेकिन हम जो हमारे स्तर पर कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए।
1: बिल्कुल, इसको आप कैसे करें, अपन जैसे कहते हैं कि भाई कैसे किस रूप में हम इसको शमन करें।
0: जी बिल्कुल,
1: तो शमन करने के लिए हम कई सारे, जैसे अभी वन की बात करें, अपन वन रोपण करें, वन रोपण में हम ज्यादा पेड़ लगाए। अभी अपन अपने ही बातें करें कि हमारे यहाँ कितना वन क्षेत्र है। अभी अपन देखते हैं हमारे यहाँ जंगल काफी है, बहुत पहले की बातें करते हैं तो खूब वन थे, लेकिन धीरे धीरे वनों का आकार हमारा कम होता जा रहा है। तो हमें धीरे धीरे जो वातावरण में गर्मी बढ़ती जा रही है, तो हम स्थानीय लेवल पे बात कर सकते हैं। तो हम स्थानीय लेवल पे अपन जिले की बात कर सकते हैं कि हम जिले में किस तरह से वन का क्षेत्र बढ़ाए। अभी लगभग मानते हैं कि 20,000 हेक्टेयर हो, तो हम उसको 5,000 हेक्टेयर और बनाए।
0: जी बिल्कुल,
1: तो ऐसे करीब 5,000 हेक्टेयर अगर हम बढ़ाते हैं तो इस तरह से हम वन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं,
0: बढ़ा सकते हैं।
1: तो वन के क्षेत्र में हमारा जैसे महुआ है, हम सागवान है, ऐसे कई सारे करण है, ऐसे जो भी वन के पौधे हैं, तो हम हमारे जो अपना वन विभाग है उससे हमारी सहयोग लेकर हम वन के क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे जो लकड़ी काटने की, पेड़ काटने की जो प्रक्रिया है उसको हमें रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो हमारी ओवरऑल जो हमारी कार्य है वो हमारे वातावरण को हमारे को फायदा देगी। क्योंकि जैसे अपन बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सोखने वाले जो पौधे हैं, यानी जो पेड़ है, क्योंकि उसमें एक पेड़ के अंदर बहुत सारे पत्ते होते हैं।
0: जी बिल्कुल सर,
1: तो उसमें ज्यादा गुंजाइश होती है कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की, तो ऐसे पेड़ों का बढ़ाना चाहिए, तो इसके कार्यक्रम को करना चाहिए। तो एक तो हम इसी की बात करेंगे भाई वन रोपण है, दूसरा अपन बात करें कि जो हमारे ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है उसमें जिसमें की कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्सर्जन होता है, जैसे कि अपन आजकल देखते हैं कि सोलर लाइट है ना, सूर्य के जो ऊर्जा का जितने विकल्प हैं, तो ऊर्जा के विकल्पों पे बात कर सकते हैं कि हम हमारे क्षेत्रों में, अभी हम अपन राजस्थान की बात करें तो पूरा राजस्थान अपना सौर ऊर्जा के रूप में पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान है हमारा। तो हम उसको और बढ़ाते हुए, क्योंकि सूरज की रोशनी हमारे सबके लिए उपलब्ध है, तो उसमें हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। हमें अपने लाइट के लिए हमारे पास विकल्प बनाने चाहिए। आजकल कई सारी योजनाएं भी आती है
0: कि
1: जैसे छतों के ऊपर सोलर की प्लेटें लगाकर हम अपनी बिजली का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो ये भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के जो रोकने के कार्य है उसमें आता है, क्योंकि हम इनकी बात करते हैं कि हम अपन जो कैसे कोयला आधारित अगर बिजली बनाते हैं, तो कोयला आधारित बिजली बनने में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है।
0: जी बिल्कुल,
1: एटॉमिक पावर वाले में कार्बन का उत्सर्जन होता है, लेकिन ऐसे जो है, क्योंकि वो तो हमारी आवश्यकता है, लेकिन हम अगर छोटे रूप में भी कहें तो हम सूर्य ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, पन ऊर्जा है, इस तरह के जो विकल्प है उसका उपयोग को अधिक से अधिक करें। और क्योंकि हमारे जब हम जैसे बात भी करेंगे अपना, तो राज्य है नंबर वन है इसमें हमारे सबसे ज्यादा, क्योंकि गर्मी के हमारे बहुत सारे स्रोत हैं,
0: तो
1: हम उसका दोहन करके हम सोलर ऊर्जा का कार्य भी कर सकते हैं। और हमारे लेवल पे हम अपना जो सूर्य के जितने भी हैं, ताकि उससे सूर्य ऊर्जा के लिए हम जैसे मोटर चलाना है, घर के लाइट है, रोड़ों के लाइट है, और इस तरह से सोलर प्लेट लगाकर अभी ये भी चल रहा है कि अपने क्षेत्रों में भी केवल जल, क्योंकि उसमें जगह घिरता है, जब हम कांच की प्लेटें लगती है तो उसमें स्थान घेरता है, तो उसमें ज्यादा कभी ये भी माना जाता है कि जैसे पानी के ऊपर है तो पानी के ऊपर लगाकर हम सोलर प्लेटें लगाते हैं, ये भी एक बड़े रूप में ये कार्य भी
0: किया जा सकता है।
1: ये योजनागत कार्यक्रम है जो बड़े रूप में किया जाता है, लेकिन हमें इसके

0: जो फायदे हैं उसको हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह से उसके लगाने का प्रयास करें।
1: जी बिल्कुल,
0: तो इस तरह से हम उसको करें। अब फिर पर्यावरण के बारे में हम क्या है कि उसमें जन जागरूकता फैलाना है, इसके बारे में जैसे बात भी आज भी बात कर रहे हैं अपन रेडियो पे,
1: जी जी।
0: तो ये भी जन जागरूकता फैलाने का है कि हमें जितने हमारे श्रोता हैं वो इसके बारे में सीख रहे हैं, हम पेड़ों के लगाने के महत्व को सीख रहे हैं। पेड़ों के लगाने के महत्व को हमको रोज सिखाया जाता है
1: जी बिल्कुल,
0: लेकिन हम उसके उस एंगल पर ये समझने की आवश्यकता है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है उसको रोकने के प्रयास करने चाहिए। उसको रोकने के प्रयास में अगर हमारा एक पेड़ भी हम लगाते हैं या हम वन के रूप में कोई अगर हम प्रयास करते हैं तो हमारे प्रयास बहुत लाभदायक होते हैं
1: जी बिल्कुल।
0: तो इस तरह से हमारे खेतों में हम कहते हैं भाई कि हम खेतों के चारों तरफ पेड़ लगाएं, तो पेड़ लगाना मिट्टी को रोकने के लिए तो फायदेमंद है ही है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए फायदेमंद है, हमारे यहाँ जो पानी के जो स्रोत हैं वो बनाए रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन साथ में हमारी जो कई हवाएं चल रही है तो उससे हमारे पौधों को बचाव के लिए भी आवश्यक है। और जो आज अपन जलवायु शमन की बात कर रहे हैं तो उसमें तो अति आवश्यक है कि जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का जो स्रोत है वो बढ़ जाता है इससे।
1: जी बिल्कुल,
0: तो इस तरह से ये भी करते हैं। फिर हम इसकी जानकारी के बाद में पर्यावरण की जो हमारी शिक्षा है इसमें भी जोर देना चाहिए कि जो हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में बच्चे पढ़ रहे हैं,
1: जी जी।
0: तो उसके अंदर भी उनको ये ज्ञान देना की आवश्यकता है। हमारे जो गुरुजन हैं तो वो इसमें सेमिनार वगैरह करके, वर्कशॉप करके, हमारे कुछ बच्चों को तैयार करके इसके बारे में जिक्र करके टॉपिक को समझा कर बच्चों को समझाएं, ताकि जो पर्यावरण के बारे में बच्चों की जो जिज्ञासा है उसको शांत किया सकते हैं, जलवायु के बारे में जो जिज्ञासा है उसको शांत किया सकते हैं, और कहीं हम गलती से गलती काम ना करें। तो इसलिए बच्चों को हमारे जो स्कूल के हैं या कॉलेज में जो पढ़ने वाले जो हमारे शिक्षार्थी हैं तो उनको भी हमारे जो टीचर्स हैं, गुरुजन हैं, उनको ये स्पेशल रूप में लेकर इसकी शिक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये भी हमको करना चाहिए
1: जी बिल्कुल।
0: फिर कई सारे जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे भी बात करेंगे पन ऊर्जा और ये है, लेकिन कुछ हाइड्रोजन ऊर्जा जैसे होती है, हाइड्रोजन एक गैस होती है जो वातावरण में बहुत रुख है, लेकिन उसके प्रयोग करके हमें हम गाड़ियों के लिए हमारा प्रयोग किया जा सकता है
1: जी हाँ।
0: तो उसके प्रयोग के लिए भी हम उस दिशा में भी हमको सोचना चाहिए कि किस तरह से हम उस पर करें। एक हम आजकल सुनते हैं कि सब इथेनॉल से गाड़ी चल रही है,
1: जी जी।
0: हमारी चल रही है कि सब इथेनॉल जो है, जैसे पेट्रोल वगैरह होता है उसमें एक इथेनॉल तत्व होता है, इथेनॉल तत्व को मिलाने से जो पेट्रोल की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और पेट्रोल की खपत कम हो जाती
1: है।
0: तो और इथेनॉल बनता कैसे, इथेनॉल जो हमारे पौधों के जो तत्व होते हैं, जो हमारे जैसे कड़वी है, मक्की की कड़वी है, गन्ने की कड़वी है, तो इनसे इथेनॉल बनता है। इनसे इथेनॉल बनने के बाद में उस इथेनॉल हमारा एक जो दहन के लिए काम में आना वाला एक ईंधन है, उसका प्रयोग होने से क्या, उससे कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज्यादा उत्सर्जन नहीं होता। तो इस तरह के प्रयोग अगर वैकल्पिक जो प्रयोग है उसको करके हम इसको काम में ले सकते हैं। तो इथेनॉल पे भी हम अपनी चर्चाएं चला सकते हैं। हमारे जो नए जो उद्योग लगाने वाले जो हमारे साथी लोग हैं
1: जी जी।
0: वो इथेनॉल के उद्योग के बारे में भी बात करें, समझें और उसको लगाने के प्रयास करने चाहिए
1: जी हाँ।
0: तो इस तरह से फिर हमें कई सारे ऐसे विकास कार्यों के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि जो हमें अपना जनसंख्या वृद्धि है, तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं कि जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने के काम में आते हैं। तो हम केवल अपने जो कह ये नहीं बात करें कि इंडस्ट्री को रोकना, केवल हम ये नहीं सकें हमारे उद्योगों को रोकें, हम सीधे सीधे उद्योगों की जिम्मेदारी ना करें, हम उद्योगों की जिम्मेदारी के साथ में हमारी जिम्मेदारी को भी समझें कि हम इस किस तरह से उसके रूप में हम अपना फायदा, अपने जो है जनसंख्या के हिसाब से फायदा कर सकते हैं, वन के हिसाब से फायदा कर सकते हैं, हमारे जो वैकल्पिक ईंधनों के बारे में बात कर सकते हैं, और इन सब के साथ में हम ये इस जमन के बारे में जन जागरूकता फैला सकते हैं
1: जी बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाई बहनों को दी है कि किस तरीके से जलवायु जो शमन हो रहा है उसके क्या कारक हो सकते हैं, जैसा कि सर ये जो कारक हैं वो हमारे श्रोता साथी अगर कार्यक्रम सुन रहे होंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे वो कि कैसे आसान तरीके हैं बहुत सारे जिसकी वजह से ये जो जलवायु का परिवर्तन हो रहा है उसे हम बढ़ने से रोक सकते हैं। समय पर वर्षा हो, समय पर गर्मी हो, समय पर सर्दी हो, ये सारी चीजें हमारे जीवों को उपार्जन के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो ये सारी चीजों में जो परिवर्तन हो रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें रोकने के लिए हम अपना अहम योगदान दे सकते हैं। तो सर, जैसा कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे किसान भाई बहनों को आपने बहुत अच्छी जानकारी से अवगत करवाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: धन्यवाद।
1: सिम के किसान भाई बहनों, अवड़े आपड़े वैस में प्रमोद जी रोकड़िया सर जुड़े तक ने एणा आपड़ा ने घनी असल तरीका की बताड़ दीदू है कि आज परिवर्तन थे रू है, इन्हें रोकवा बल्ले अपना ने घना आकाना जो उपाय है ये अपने स्तर माते करवा होगा, ने अगर आपड़े आ उपाय ने अपना भी लो આપણે દેખી શકો કે આ જે પરિવર્તન થઈ રહ્યું હૈ એ રૂકી જાગા ને આપણું જે જીવન હૈ એ સરળ થઈ જાગા. તો કિસાન ભાઈ બોનો, આશા કરા હું કે આ હંગરી વાતે આપે ધ્યાન થકી હામરી હોગા ને આ પણી વાતને આપને જીવન મેં અમલ ભી કરોગા. ને હવે આપણે દેખી રહ કે ટાઈમ થઈ ગયો હૈ આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટ પડવાનું. તો આપણે સૂટ તો પડા, પણ સાથે પહેલા હામરી લે એક ઓર ગીત ને મોરે પડા સૂટા.

किसान भाई बोनो अणस के थाते अमे कार्यक्रम खेती वाड़ी तकी पड़ा सूटा। आशा कर रहा कि आज के कार्यक्रम में हमारी अब तक जो भी बातें रही हैं ये बातें आपने गमी होंगा। तो किसान भाई बोनो आपने अमारो आज नवा कार्यक्रम केव लग्यू इन्हें बारा में आप राय सुझाव और मैंने आली सको अमारे अणपता माते। हमारो पतु है कार्यक्रम खेती वाड़ी वाग रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारो पिनकोड नंबर है 3270001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9460051234। तो किसान भाई बोनू फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम ने अणस टाइम माते एक नया विषय ने हाते तारू दी। राम राम राम राम।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: भाई ने बोनो, जैवरे ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, माँ जंगल थकी जुड़ियो बोनो नो रिश्तो है। जे जंगल में हमसे हैं ई इन्होंने रक्षा करे हैं, तो आवो बोना ने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा, ने जंगल अनु भविष्य सुरक्षित करा। बोना ने आवाज विकास की असली पहचान है।
4: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर जब भी हाजिर होते हैं तो आपसे एक नए विषय को लेकर बातचीत करते हैं, और जैसा कि अभी हम कार्यक्रमों के माध्यम से श्रोता साथियों पोषण माह मना ही रहे हैं, तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर हमारी आपसे बातचीत रहेगी। साथियों, आज हम बात करेंगे शिशु के जीवन के पहले 1000 दिनों को लेकर। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो इसी दस्तूर को निभाते हुए दोस्तों सुनते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि गीत से पहले विशेष रूबरू में आपको करा ही चुकी हूँ कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं शिशु के पहले 1000 दिन को लेकर। तो श्रोता साथियों, किसी भी घर में बच्चे का जन्म खुशियों की शुरुआत होता है, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या श्रोता साथियों, आप ये जानते हैं कि बच्चे के जन्म के पहले से लेकर उसके 2 साल पूरे होने तक का समय उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और माना जाता है कि यही जो दौर होता है वो उसके पूरे जीवन की नींव रखता है और वो अवधि है जीवन के पहले 1000 दिन। श्रोता साथियों, इन 1000 दिनों में माँ का पोषण, गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य जांच, बच्चे का जन्म, स्तनपान, 6 महीने बाद पूरक आहार, टीकाकरण, साफ सफाई और परिवार का प्यार, हर छोटी बात बच्चे के विकास में बड़ी भूमिका निभाती है। तो आज के इस कार्यक्रम में इस विषय को लेकर मेरी आपसे ढेर सारी बातें होंगी और बताना चाहूंगी साथियों कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बीच विषय विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे। तो आइए श्रोता साथियों, आप सभी को पहले विशेषज्ञ से रूबरू करवा देते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से बच्चे के जो प्रथम 1000 दिन होते हैं वो उसके जीवन में कितनी महत्वपूर्णता रखते हैं। सर नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: हाँ जी।
0: जैसा कि सर आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पोषण माह हम सभी मिलकर मना रहे हैं, तो आज सबसे पहले कार्यक्रम में आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: अपने को तो बांसवाड़ा वाले सब जानते हैं, डॉक्टर युधिष्ठिर त्रिवेदी। 50 साल से मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, बांसवाड़ा जिले में काम कर रहा हूँ। और अभी भी कोई सिलेक्टेड ऐसे पेशेंट होते हैं तो देखता हूँ राती तलाई में बैठ के।
0: तो सर जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बताया, तो आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि पहले 1000 दिन आखिरकार क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले आप हमारे श्रोता साथियों को यही बताइए आसान सी भाषा में कि जीवन के पहले 1000 दिन से हमारा क्या मतलब है।
1: जीवन के पहले 1000 दिन मतलब 1000 दिन पेट में बच्चा जिस दिन ठहरता है उस दिन से गिन लेने हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो 9 महीने तो पेट के और फिर 2 साल और ऊपर, ये 1000 दिन हैं। तो अपने 1000 का आंकड़ा महत्वपूर्ण होता है, सब जानते हैं। ऐसे ही बच्चों में 1000 का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए ये 1000 दिनों पे दुनिया भर में वो कर रहे हैं कि भाई इन 1000 दिनों में बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने हमें बताया कि 1000 दिन क्या होते हैं और उसका क्या मतलब है, यही हम देखते हैं कि हमारे गाँव में कई परिवार सोचते हैं कि बच्चा जो है वो बड़ा होकर सब कुछ सीख जाएगा, तो उसके लेकर हमें क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, शुरुआती दिनों में हमें किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
1: आपने बिल्कुल सही प्रश्न बहुत अच्छा पूछा, गांव में ऐसा ही समझते हैं। इसलिए पोषण सप्ताह में अपन इसी बात की बात करेंगे कि पहले 1000 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जैसे मकान की नींव रखते हैं ना, तो नींव कमजोर हो गई तो बाद में बड़े होके बच्चे को आप कितना भी टॉनिक पिलाओ और कितनी भी अच्छी स्कूल में रखो और कसरत कराओ, उसका शरीर अच्छा नहीं बन सकेगा शुरू से जो कमजोर हो गया। तो पहले कमजोरी होने से, अगर आंख चली गई विटामिन ए की कमी होने से, तो वो आंख वापस नहीं आएगी। पहले कमजोरी रहने से बार बार बीमारियां हो गई और शरीर में, तो बाद में कितना भी अच्छा खिलाओगे काजू बादाम रोज तो भी अच्छा नहीं होगा बच्चा। इसलिए ये पहले 1000 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आदमी के दिमाग का विकास होता ना, 1 किलो के ऊपर होता दिमाग, ये अपने खोपड़ी में रहता, उसी से तो सब फर्क पड़ता है ना। कोई तो कितना बड़ा नेता बन जाता है, कोई छोटा सा रह जाता है। किसी को पढ़ाओ तो याद ही नहीं रहता, किसी को अच्छा याद

0: रहता है कोई, तो पढ़ लिख करके ना आकाशवाणी में चला जाता नहीं, इतना बढ़िया बोलता है, और कोई गांव नहीं सूर्य होता है बोलता भी नहीं आवड़े, लोग करी करी ने बोले आम करी ने याद भी नहीं रहे। तो ये सब दिमाग पे निर्भर है, और दिमाग का विकास 2 साल तक ही होता है, वैसे तो दिमाग वधे नहीं, अपने हाथ पोग ही तो थोड़ो 17 वर्ष 18 वर्ष नो थे त्यार सुधी वत्तू रहे है ने, लांबो थाय सोरो पीलो थाय, बहिरने भी पहले वत्ती जाए पसे धीरे धीरे बच्चा दानी मोटी थाय बीजू मोटो थाय ने ऊंजाव शुरू थाय 12-13-14 वर्ष सुधी है ने। पर दिमाग 2 वर्ष में जितलो थई गयो थई गयो, खास तो पेट में रहे 9 महीना में खूब वधे, पसे थोड़ू थोड़ू वत्तो जाए पहला साल में ने, अजी थोड़ूक वधे 2 वर्ष में ने, 2 वर्ष बाद तो बिल्कुल नाम मात्र 4-5 वर्ष सुधी थोड़ू सो वधे, अन्य इना में तो फिर अपन उसको अभ्यास कराते हैं, पढ़ाएंगे लिखाएंगे उस पे। तो शुरू में ध्यान देना तो बहुत जरूरी है, नींद कमजोर थी गई तो मकान बिल्कुल बेकार है। हवे आप पूछो का हूँ ध्यान देव जुए,
1: बिल्कुल सर
0: पूछो का एम तो बताओ तो आपड़े बीजू ध्यान हूँ रखू के पेट में बच्चू हो तई वेरे माँ ने संता नहीं करे, माँ आराम करे बरोबर, कई वेरे माँ ने बराबर खवाड़वू है, खवाड़वू है तो अपने गाँव में मनक जाने के आ भाई तो 2 जीवी है डबल खवाड़ो है, अपने आंगनवाड़ी में भी जाए तो गर्भवती महिला ने डबल आले अनाज सब है, तो डबल भी आलवू है ने खावानी गुणवत्ता, अपने अंग्रेजी में क्या क्वालिटी, अपने देशी भाषा में कहकर खावानो जो स्टैंडर्ड है कि ये भी ताजू खाऊ जो है, एक तो रोटो खाओ मकीनो कोरो कोरो खा ली, ये भी अच्छो खाऊ पड़े ताजू है, पर रोटा ने अलावा दूध पिए, बादाम थोड़ा घी ले, शाक सब्जी ले, तो वो खाने की क्वालिटी बताएंगे। तो खाना डबल भी खाना, समय पे खाना, और खाने की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए कि साफ सब्जियां खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा घी वो भी देना चाहिए, ये तो खुराक में ध्यान रखने का है। दालें बहुत अच्छी है प्रोटीन की, बच्चा नु शरीर बने तो प्रोटीन भी जो है मांसपेशी बनवाने, तो दालें भी खानी चाहिए, विटामिन भी चाहिए तो साग सब्जी चाहिए, फल फूल भी चाहिए, कैल्शियम बच्चे की हड्डियां बनेंगी तो माँ की हड्डी में से जाता है वो कैल्शियम, तो सीताफल जैसे फल खाने चाहिए, विटामिन सी भी जो है तो आपड़े आंवले हुए और पपीता पालक मेथी इनमें सब संतरे जे मले आपड़े गांव में आपड़े देश में आपड़े वागड़ देश में जे फल जैया मौसम में मले ये सब फल भी खावा जो है, केरी दाड़ा में केरी नो रस पीव मजाम में इटलू पसे इटलू ने दूध दही भी लेव, दूध पसे तो ताजू ने नी तो दही लेवानू, दही थकी सर्दी थी जाए एम कही हो तो दही नी कड़ी बनावी ने लेवानी, ये तो खाने में ध्यान एक चीज, और जुए इतले ध्यान बीजो पेट में बच्चों तो खाली इन्हें आई नहीं संता नथी अने पूरा परिवार नहीं संता है, हाँ उभारा पेली बुआ बनेगा ही, अगाड़ी पेलो काको बनेगा ही, मतलब देवर देवरानी नंदे दादा दादी घर में जो बनने वाले हैं उनकी सबकी इच्छा है कि माँ का ध्यान रखें, माँ बरोबर आराम करे, माँ ने कोई टेंशन नहीं आले, लड़ाई झगड़ो नहीं करावे, माँ ने है के दाड़े भी आराम करे वो ध्यान रखे, इन्हें माते काम वधारे ने के ना को कवाहुआरी है तो आस करेगा हारी, अटलेस्ट लाइवा आपड़े पढ़ना भी ने ऐसा नहीं है, जब पेट में बच्चा हो तो माँ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, खुराक अच्छी, उसके आराम का ध्यान रखना, उसके मानसिक स्वास्थ्य का, टेंशन नहीं था इन्हें लड़ाई नहीं था है ने, भी कोई लड़ झगड़ न करो, अपने बीजा ने कोई लड़ाई हो संता हो घर में कर्जो थी गयो तो इन्हें माँ थे की बात न करो, ने चौथी बात माँ नु असल ध्यान रखवा, बढ़िया कहानियां होनावा नी भगवान राम नी कृष्ण कन्हैया लाल नी अपने मन सब जाने है ने, तई वेरे भजन करे, माँ ने संता हो क्या जापो हरते थाए गाले जापा में तो खूब दुखे, आजकल नवी सूर्य थोड़ी केवी भी है जापा में कोई थी गयु तो ई भी इन्हें हिम्मत अलाड़ी के कोई नहीं सब आपूर तू भगवान करे, सपने कोण जापो करावे, आजकल तो अपने तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है आशा बहन है सब अस्पताल में आटली नर्से है ये भी सब ध्यान रखो, बीजू कोई खराबी तो नहीं बच्चा ने के माँ में खतरो तो नहीं रहे, जांचने हूँ के बताड़ो आप खबर है अपने अपने बहने हुए इन्होंने भी खबर होगा, महीने ने महीने अस्पताल में जाने जांच करावे, 9 तारीख के जांच करावे, वो कौन सी जांच कहलाती है ANC एंटीनेटल क्लिनिक है ने, पेट में बच्चों होते ही महीने ने महीने जाने जांच करावी दवाखाना में, असर सरकार तो सोनोग्राफी करावे खबर पड़ी जा बच्चों मोटू थई रियो के नथी थई रियो, बच्चा ने मई तो कोई खराबी नथी, वजन करे सिस्टर तो खबर पड़ी जाए, खूननी जांच करा भी सिस्टर करे दवाखाना में करे सब जगह करे खूननी जांच में खून कम तो नहीं थी खबर पड़ी जाए खून कम हो तो माने भी खतरो ये एंटीनेटल जांच भी करा भी पहले जमाने तो जांच से था थी ना तो हवे जांच में सब खबर पड़ी जाए बच्चा नु वजन कितलो है बच्चों बराबर थई गयो के नहीं थई गयो बच्चों कमजोर तो नहीं खूननी जांच से फटाफट नानी जगह थी जाए तो ये जांच करा भी जरूरी गर्भवती महिला नो ध्यान रखू तो इन तक हूँ माँ भी ठीक देगा ना पेट नो बच्चों भी ठीक रहेगा इनो दिमाग भी बराबर
1: रहेगा होवे जिम की सर आप घड़ी असल बातें मने बता दी रहो तो आए सभी मु जानू चाहूंगा कि अगर जे सोरो है ये जन्म बाद भी इन वजन कम रही क्यों तो इन परिवार ने इन्हें देखरेख करते करवी है
0: तो जापो असल जगह करा होगा ना कमजोर सोरो हो तो सांस भी नहीं ले बस परमानेंट दिमाग खराब हो जाते जे कमजोर सोरो हो तो इनो डॉक्टर नर्से बता दी देगा कि तुम्हारे जापा मोटो अस्पताल में कराओ है ना जापो ये भी जगह कराओ जो के जहाँ डॉक्टर हो ने खून जुए तो खून भी मले ने जहाँ नाना सोरा ने जोवा वास्ते बच्चों नो डॉक्टर हो ऑपरेशन करी ने सोरू काढ़े या वो कम वजन वालू सोरू नेस्तकी भी ले ने तो बच्चा ना डॉक्टर ने तेईस पर हाथ दे के काट तुम्हें सोरू रोयू नहीं हो तो पहले तो थप थपावी ने अर्धा मिनट 15 सेकंड में 20 सेकंड में अर्धा मिनट में सांस ले लें रोवे तो ठीक है नहीं तो बस इन्हें ऑक्सीजन आ लें ने मशीन तक ही सांस आ लें ने तो ये भी ध्यान रखू ने बीजो कमजोर सोरू हो तो वधारे कमजोर हो तो अस्पताल में राखे ऑक्सीजन आ लें एक इनक्यूबेटर कहवाए इना में टेम्परेचर मेंटेन करें ने नरी थकी दूध आ लें आई नु दूध सब तक बढ़िया रहे तो मानो दूध काढ़े हाथ तक दबावी ने काढ़ो कि आजकल पंप आवे पंप तक काढ़ी पास नली थकी भी दूध पाओ केम के सब तक बढ़िया रहे आते अपने कमजोर नु बीजू कमजोर सोरू नु ठंडो पड़ी जाए सोरू तो इन्हें असल ओढ़ावी ने राखव पड़े 2 किलो सुधी नो हो तो घरे राखी शक ने 2 किलो थकी कम नो हो तो पसे दवाखाना में राखो नहीं तो आ इन्क्यूबेटर कहवाय के एना में टेम्परेचर सब कंट्रोल रहे बच्चा ने एक वायर लगाड़ दे ने पेलो मशीन में है तेना में टेम्परेचर आवतु रहे ने मशीन एवी रहे कि टेम्परेचर कम थाय तो एना में गर्मी वधारे पैदा थाय तो सोरा नो टेम्परेचर बराबर रहेवू जोईए सफाई भी कमजोर सोरा ने वधारे राखवानी केम के बीमारी थई गई हजी कमजोरी थई जायेगा पछी ने बीमारी जान लेवा थई जायेगा बराबर वजन ने सोरो हो तो बीमारी ने हुए फेस करी ले बीमारी ने दवाई करन ठीक थई जाय कमजोर हो तो बीमारी ने लड़वानी ताकत जराय नहीं हो तो जरा बीमार थयो ने खलास
1: जिम की सर आपे बता दियो कि कमजोर जो सूरत आए हैं कम वजन वाला है इन्हें ध्यान अपना ने हरते रखो है
0: वधारे रखवानो होवे हर एक सोरा नो ध्यान रखवानो पर कमजोर नो डबल रखवानो
1: होवे तो जिम की सर घनी असल बातें आप बता दी रहो आए से वे मु जानू चाहूंगा कि कई एवी गलती है आपड़े करी द से आपड़ा ने नहीं करवी सुए आने टाइम
0: एक तो पहले तो आपड़े मन काम से तो कम बुद्धि पहले पहले दूध ने रे कोलेस्ट्रॉल पीरू पीरू छे ये फेंकी देता अवे तो आजकल समझ आ गई है सब में तमारे रेडियो वाला एक खूब कीधु है गांव गांव में आशा बहने हैं आंगनवाड़ी है नर्से है सब हमें वे खूब जय जय ने पंचायत में भाषण आ लिया की पीलू फेंको न कही तो ताजू है बस दूध तरत पाऊ जो है मन के अगर बाई ने नहीं अरे के उतरतु नहीं हो पेम कर गांडा जी भी बात है अरे नहीं उतरतु तो हमें साथी में लगाड़ो सोरा ने ये अपने सुवाड़ो सोरा ने इन थकी दूध उतरेगा जल्दी नती उतर तो एम करीने नी पीवाड़ो ही नहीं फिर भी नहीं उतरे तो इनी दवा है ने ये करा भी तो मानू दूध कोलेस्ट्रॉल पाऊ तरत पाऊ अर्धा घंटा में 2 घंटा ने मई मई तो सोरा ने मुड़ा में था नाल देव जो है थोड़ो थोड़ो भी उतरेगा ने बराबर पाऊ ने नी उतर तो दवा करावो ने पसे इने बाद 100 महीने सुधी मानुस दूध पाव बीजू कई नहीं हालवू हो पेलू पेलू कई कई हाले के अपने काड़ो बनावी ने बीजू ने हरते पाए पेला रूई थकी ने के पाओ नहीं तो पेला में अस्पताल ना पेलो गद्दो है ना में गंदी गंदी रूई हो गए आ रहे इन तक ही दूध इन तक ही पाए कप में दूध ली तो गाय नो उतरी नती थे ने ये रूई डबोरी इना में नेसवी ने पाई दे इन तक ही नके पाओ पिला ड्रॉपर तक ही भी नके पाओ कटोरी समझ से ही पाओ अगर एक आध दाड़ा थान मुड़ा में हलवा बाद भी कम दूध आवी रही है ते एम पावानू
1: होवे जिम की सर आपे बता दियो के आपड़े कई गलती एवी कर द से आपड़ा निर्णय करवी सुए आए सब मु जानवू चाहिए रही हूँ कि हेती आ सब चीजें आपड़े हर टाइम आपड़े भाई बहनों ने बताड़ीस कर आए घर परिवार ने जे पति रहे जे सोरो नु पिता रहे एना नी हूँ जिम्मेदारी बने
0: अरे इन जिम्मेदारी है तो सोरा बाप है अड़दू जिम्मेदारी माँ है तो सोरू पेट में राख्यो ने पैदा कर दीदो हवे तो माँ नी जिम्मेदारी तो कम घर वाला नी वधारे કે સોરાને બરોબર સફાઈ થકી રાખો, 2 કિલો તો કી કમ વજને તે ડાક્ટર ને જઈને બતાડો, 2 કિલો સુધી તો કમરો ગરમ રહીને આઈનું એને સોરાન વાસ્તે ક્ષેત્ર બરોબર લઈ આવો, કમ વજન વાળા ક્ષેત્ર ને પોગ મે મોજા જુએ, માતા મે ટોપી જુએ એને અચલ ઓડાવીને રાખો, ને એની આઈ બરોબર ખાય. હવે એ કમજોર હે ને, આપણે બાહ્ય હું હે કે ઘર મેં સબને તો ખાવાને મનવાર કરી કરીને ખુદ ખાવા મેં કમજોર રહે, પસાડી રહે, મેણન તો આદત જ એવી પાડી રાખીએ કે સબને ખવાડી દો ને પછે જે બચે એ ખાઈ લો. જાભાવારી બાઈ ને એમની જાભાવારી બાઈ ને પેલે ખવાડો, એને જે ભાવે એ ઘર મેં ખીર બનાવી હોય તો એને પેલે ખવાડો, લાડુ બનાવ્યા હોય તો એને પેલે ખવાડો, પેટ ભરીને ખવાડો, ને પછી જે રે એ થોડું થોડું ખાવ. તો બાઈ કે ખુરાક કા, બાઈ કે આરામ કા, બાઈ કે પ્રસન્નતા કા ધ્યાન એને બાપ નું ભી રાખવું જોઈએ. બજાર થી કઈ લાભો તો હવે ભાઈ લઈ આવંગા, આજે જાઉં ને આજે પછી પાણી આવી ગયું તો કાલે લાવંગા, ને એમ નહી બચ્ચે ઓર માં કે લીએ જો ચાહીએ તુરંત લાને કા, કઈ તકલીફ હો તો તરત દવાખાના માં બતાડીને દવાઈ ભી તરત લાવવાની,
1: નહીં
0: તો આઈ બીમાર હો તો પછી એ બીમારી સોરાન લાગી જાય, આઈ બીમાર હો તો પછી દૂધ કમ ઉતરે, સોરું કમજોર હો તો તકલીફ
1: હે.
0: બાપ નું તો ખૂબ કામ હે, ખાલી બાપ નું જ નથી, દાદા દાદી ઘર મે હો હારા જે હાઉસી ને બીજા એણનો ભી કામ હે.
1: હવે તો સીમ કે આપે બતાડ્યું કે ઘર પરિવાર ને વોર્ડ ની હું જિમ્મેદારી રહે, તો જેમ કે આપે ઘણી અસલ વાતે બતાડી હે કે 1000 દાડા હું કહેવાય હે, હર તે બોના ને ધ્યાન રાખવી જોઈએ, કઈ કઈ ચીજે આપણે નથી કરવી. તો અંત મે આપણે જે ભાઈ બોના કાર્યક્રમ સાંભળી રહે હે એણને આ હેતી વાતો નું હું એક સાર હે જે આપ આપણા ભાઈ બોનો ને સંદેશ ને માધ્યમ થકી કહેવું ચાહોગા.
0: હું સંદેશ આપણે તો સબ વાત કરી કે ભાઈ ભગવાન ને આશીર્વાદ થી કી બચ્ચો મળે, બચ્ચો પેટ મે રહે, ઇંદાડા થી કી ધ્યાન રાખો, ને અમારે તો આના ગાયત્રી પરિવાર મે એક કરે આવો ગણેશ સંસ્કારવાન પીઢી, તો બચ્ચું પેટ મે નહીં આવે ત્યાર થી કી કરે કે આ ખાવું, આ વિચાર કરવું, વિચાર એવું કરવું કે આ દુનિયા આવી અને પેલે પેલા નું ઝેપ કાઢી દીધું, ને પેલે બાઈએ તો એના આદમી ને આમ મારી દીધી, એવી ગંદી વાતે નહી સોચવી, ભગવાન રામ નું સોચવું, કેવા સબ ભાઈ મળીને રહેતા હતા, રામ હવે અને રામ સીતા નું કેવું પ્રેમ હતું દેખો, અને આપણે અચ્છી અચ્છી વાતે પેલા શિવાજી બન્યા ને, શિવાજી હરતે બન્યા કે એની માં જીજાબાઈ જાર થકી પેટ મે હતું તો કરે, આ ગળે સંસ્કારવાન પીઢી મેં હું કરી, માં પેટ માતે હાથ ફેરવી, બાપ ભી પેટ માતે હાથ ફેરે, બાપ ને અસલ ભજન હુણાવે બઢિયા, આપણે અસલ ભજન હુણે શાંતિ વાળી લડાઈ ઝઘડા ની પેલા પેલા ની શક્તિ મારી પિક્ચર આવે કે પેલી સાસ બહુ ની વાતે આવે કે પેલો ષડયંત્ર કરે, એ ગંદી વાતે નહી દેખવી, ગંદી ટીવી નહી દેખવી, ગંદા મોબાઈલ માતે નહી હોણવું, અચ્છું ભગવાન નું ભજન, સિમ્પલ શાસ્ત્રી સંગીત આપણે અસલ ધીરે ધીરે થકી થાય એ હુણવું, ને બચ્ચો પેટ મે રહે તઈ વેરે ભી વાત કરવી ને થકી, ને પછી દેશી દવાઈ આલે, બરગદ ની જડ નું રસ, બરગદ કેવું રે સબ વધે ખૂબ, આપણો ભી પરિવાર એવું વધે ભગવાન ની દયા થકી હે ને.
1: હવે સર જેમ કે આપે ઘણું અસલ સંદેશ આપણા ભાઈ બહેનો ને આલ્યું હે કે હરતે એણાની કઈ કઈ વાતો નું વિશેષ ધ્યાન રાખવું હે, ને હરતે એક બોન જે વખત ગર્ભ મે સોરું ધારણ કરી રહી હે તઈ વખત તકી એને સંસ્કારવાન જે ચીજે હે એ કરવી જોઈએ, એને તકી વાતે કરવી જોઈએ, આ સબ વાતે આપે બતાવી. તો હું આપનો ધન્યવાદ કરું ચાહુંગા કે આપ અમારે કાર્યક્રમ તકી જોડ્યા ને મને આટલી અચ્છી જાણકારી આપી.
0: રામ નામ.
2: તો સાથીઓ આજ કી બાતચીત સે આપ યે સમજ પાએ હે કે બચ્ચે કા સ્વસ્થ ભવિષ્ય કેવલ ઉસકે જન્મ કે બાદ શરૂ નહીં હોતા, બલ્કિ ઉસકી નીવ તો ગર્ભાવસ્થા સે હી પડને લગતી હે. પહેલે જો 1000 દિન હોતે હે વો હમે યે યાદ દિલાતે હે સાથીઓ કી માં કી થાલી સે લેકર બચ્ચે કી પહેલી ખુરાક તક, પરિવાર કે સહયોગ સે લેકર સમય પર સ્વાસ્થ્ય જાંચ તક હર કદમ માયને રખતા હે. इसलिए गर्भवती महिला के पोषण को परिवार की जिम्मेदारी समझे, बच्चे के जन्म के बाद माँ का पहला दूध बच्चे को जरूर दें. तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में. तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM.

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सच्चा बचपन में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार साथियों।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है कि हम अपने जीवन का हर दिन पूरी तरह किस तरह से जिए।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि कशिश, जिंदगी हमें हर दिन एक नया पन्ना देती है। कुछ पन्ने खुशियों से भरते हैं, कुछ अनुभवों से, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर सुबह हमें एक और मौका मिलता है अपने आज को बेहतर बनाने का।
0: जी हाँ।
1: तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे कि हम अपने जीवन का हर दिन पूरी तरह से किस तरह से जिए, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय के बारे में तो आपको बता ही चुके हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जिस विषय को लेकर हम बात कर रहे हैं वो वैसे तो काफी सुनने में सरल लगता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो जीवन जीने का पूरा नजरिया बदल जाएगा। जागृति जी, विषय है साथियों, अपने जीवन का हर दिन पूरी तरह कैसे जीना है।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि दोस्तों, जिंदगी किसी परीक्षा की तरह नहीं है जिसमें हमें सिर्फ अंतिम परिणाम का इंतजार करना हो। जिंदगी तो उन छोटे छोटे पलों का नाम है जागृति जी, जो हर दिन हमारे सामने आते हैं।
1: बिल्कुल
0: साथियों, सुबह की पहली किरण, परिवार के साथ बिताया गया समय, दोस्तों के साथ हंसी, अपने सपनों के लिए की गई मेहनत, किसी की मदद करने की खुशी, ये जो सारी चीजें हैं ये सभी मिलकर हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। जागृति जी।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि अक्सर हम अपने वर्तमान को छोड़कर भविष्य की चिंता में इतने उलझे रहते हैं। साथ ही हमारे जो युवा साथी, वो सोचते हैं कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं घूमूंगी, जब मेरा सपना पूरा होगा तब जिंदगी का मैं आनंद लूंगी। लेकिन इसी जब के इंतजार में आज का दिन हमारे हाथ से निकल जाता है।
0: बिल्कुल,
1: हमें ये समझना होगा श्रोताओं कि भविष्य की तैयारी जरूरी है लेकिन वर्तमान को जीना भी उतना ही जरूरी है।
0: जी जी,
1: इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाए या बिना सोचे समझे हर इच्छा पूरी करने लगे।
0: बिल्कुल,
1: बल्कि इसका मतलब ये है कि आज जो हमारे पास है उसकी कद्र करते हुए हमें अपने आज को पूरी ईमानदारी और उत्साह के साथ जीना है।
0: जी हाँ,
1: आज का दिन दोबारा नहीं आएगा साथियों, इसीलिए आज की पढ़ाई आज करें, आज अपने माता पिता से प्यार से बात करें, आज अपने दोस्तों की मदद करें, आज अपने सपनों की दिशा में एक कदम बढ़ाएं और आज अपने मन की खुशी के लिए थोड़ा समय निकालें।
0: बिल्कुल जागृति जी। साथ ही अगर बात करें कि युवाओं के लिए पूरी तरह जीना क्या होता है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि युवावस्था जीवन का एक ऐसा दौर है जहां हमारे भीतर दोस्तों ऊर्जा भी होती है और सपने भी होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इसी समय हमारे सामने पढ़ाई, करियर, प्रतियोगिता, परिवार की अपेक्षाएं और भविष्य की चिंता जैसी कई चुनौतियां सामने होती है। ऐसे में पूरी तरह जीने का मतलब केवल घूमना फिरना या मनोरंजन करना नहीं है। पूरी तरह जीने का मतलब है दोस्तों कि जीवन के हर पहलू को संतुलित तरीके से स्वीकार किया जाए।
1: बिल्कुल,
0: पढ़ाई करें तो मन लगाकर करें, काम कर रहे हैं तो ईमानदारी से करें, खेल रहे हैं साथियों तो पूरे उत्साह से खेलें, और परिवार के साथ अगर बैठे हैं तो मोबाइल से थोड़ा दूर होकर उनसे दिल से जुड़ें। दोस्ती करें तो उसमें विश्वास और सम्मान भी रखें, और जब कोई कठिन परिस्थितियां आए तो उससे भागने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करें।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि जीवन का हर दिन अच्छा नहीं होगा दोस्तों, कुछ दिन थकान के होंगे तो कुछ दिन असफलता के, कुछ दिन निराश के भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वह दिन बेकार था। कभी कभी कठिन दिन हमें ऐसे सीख दे जाते हैं जो कोई किताब नहीं दे सकती। जागृति जी।
1: बिल्कुल कशिश, आपने बहुत सही बात बोली, क्योंकि हम अक्सर बड़ी खुशियों की तलाश में छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: एक कप चाय के साथ परिवार से बातचीत, बारिश में मिट्टी की खुशबू, पसंदीदा गीत सुनना, किसी पुराने दोस्त से बातचीत करना, सुबह थोड़ी देर प्रकृति के बीच बैठना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, ये छोटी छोटी जो बातें हैं श्रोता साथियों, ये मन को बहुत सुकून देती है।
0: बिल्कुल,
1: खुशी हमेशा बड़ी उपलब्धि में नहीं होती, खुशी कई बार उस पल में छिपी होती है जिसे हम जल्दी जल्दी पार कर जाते हैं। इसीलिए आपसे कहना चाहेंगे साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप भी अपनी जिंदगी में छोटी खुशियों के लिए जगह बनाएं, अपने आसपास की अच्छी चीजों को महसूस करें और उनके लिए आभार व्यक्त करें। साथ ही हर युवा के मन में कोई न कोई सपना तो जरूर होता है कशिश, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई कलाकार बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है और कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ कोई समाज के लिए कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है। लेकिन श्रोताओं, केवल सपना देखना पर्याप्त नहीं है, सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए आज से शुरुआत करनी पड़ती है।
0: बिल्कुल,
1: अगर आपको कोई नई भाषा सीखनी है तो आज पहला शब्द सीखिए, अगर परीक्षा की तैयारी करनी है तो आज एक अध्याय पढ़िए, अगर कोई हुनर सीखना है तो आज पहला कदम उठाइए, अगर स्वास्थ्य बेहतर बनाना है तो आज अपनी दिनचर्या में अच्छी आदत जोड़िए।
0: बिल्कुल,
1: याद रखिए बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन की छोटी छोटी कोशिश बड़ा बदलाव जरूर लाती है।
0: बिल्कुल जागृति जी। तो जैसा कि युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन का हर दिन पूरी तरीके से जीना है, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे दोस्तों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में और हम बात कर रहे थे कि हम अपने जीवन का हर दिन पूरी तरह से किस तरह से जिए, जैसे कि हर दिन एक नई शुरुआत हमें किस तरह से करनी, इसको लेकर हमने हमारे श्रोता साथियों को बताया था कशिश।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही युवाओं के लिए जाना था कि पूरी तरह जीना क्या होता है। इसी के साथ हम जान रहे थे कि छोटी छोटी खुशियों को हम किस तरह से सीखें, सपने देखें, लेकिन आज से ही शुरुआत करें, ये भी हमने जाना था। यही जानते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया और हमारा आज कैसा होना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों, आज का जो युवा है वो डिजिटल दुनिया में बहुत चीजों से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: सोशल मीडिया हमें जानकारी और मनोरंजन देती है, लेकिन कभी कभी साथियों हम दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी से तुलना करने लगते हैं। किसी की सफलता देखकर लगता है जागृति जी कि हम पीछे रह गए हैं।
0: जी हाँ।
1: किसी की यात्रा को देखकर लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है। किसी की उपलब्धि को देखकर लगता है कि हम अपनी मेहनत को छोटा समझने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी बातों से हमें ये याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जिंदगी किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी नहीं होती।
0: बिल्कुल,
1: हर व्यक्ति की अपनी गति है, अपनी परिस्थितियां हैं और अपनी यात्रा है। इसलिए दूसरों की तुलना करने के बजाय खुद से आप सवाल करें कि क्या मैं कल से आज थोड़ा बेहतर बन रहा हूं या बन रही हूं? अगर जवाब श्रोता साथियों हाँ है, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जिंदगी केवल करियर और सफलता का नाम नहीं होती युवा साथियों, हमारे रिश्ते भी हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जागृति जी,
0: बिल्कुल,
1: कई बार हम अपने दोस्तों को समय देते हैं लेकिन माता पिता से 2 मिनट बात करने का समय नहीं निकाल पाते। घर में लोग हमारे पास होते हैं लेकिन हमारा ध्यान हमेशा हमारे मोबाइल में होता है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आता है जब हमें ये महसूस होता है कि समय तो बीत गया लेकिन हमने उन खूबसूरत पलों को ठीक से जिया ही नहीं। इसलिए अपने परिवार के साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, दोस्तों से खुलकर बातें कीजिए, रिश्तों में सम्मान और संवेदनशीलता रखिए श्रोता साथियों, क्योंकि समय दिया हुआ प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि युवा जीवन में असफलता आना भी स्वाभाविक है। परीक्षा में कम अंक आ भी सकते हैं, प्रतियोगिता में हार हो भी सकती है, नौकरी का अवसर हाथ से निकल भी सकता है श्रोताओं, या कोई योजना सफल नहीं हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन एक सफलता हमारी पूरी पहचान नहीं है। असफलता को तय करने मत दीजिए कि आप कौन है, उसे एक शिक्षक की तरह देखिए और पूछिए कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ।
1: बिल्कुल,
0: कभी रास्ता बदलना पड़ता है, कभी तरीका बदलना पड़ता है और कभी थोड़ी देर रुककर फिर से आगे बढ़ना ही पड़ता है। लेकिन हर अनुभव हमें कुछ न कुछ नया सिखाता है। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते खुद को भूल जाना भी सही नहीं है श्रोताओं। युवाओं को अपनी पढ़ाई और करियर के साथ साथ आराम, रचनात्मकता, खेल, संगीत, कला, प्रकृति और अपने पसंदीदा कामों के लिए भी समय निकालना होगा।
1: बिल्कुल,
0: अपने मन की बात को समझना कमजोरी नहीं श्रोताओं, बल्कि आत्म जागरूकता है। जब हम खुद को समझते हैं तभी हम अपने जीवन के सही फैसले बेहतर तरीके से ले पाते हैं।
1: बिल्कुल, साथी श्रोता साथियों, हर रात आप खुद से 3 सवाल पूछिए, जैसे कि दिन के अंत में कुछ मिनट अपने लिए आप निकाले और खुद से ये पूछे कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे खुशी है।
0: बिल्कुल,
1: दूसरा सवाल ये पूछे कि आज मैंने क्या नया सीखा, और तीसरा ये कि कल मैं अपने आज से थोड़ा बेहतर क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। जागृति जी, इन छोटे सवालों से धीरे धीरे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं।

0: युवा साथियों, जिंदगी को केवल भविष्य की चिंता में मत गुजारिए। आप अपने सपनों के लिए मेहनत जरूर कीजिए, लेकिन रास्ते में मिलने वाली खुशियों को भी महसूस कीजिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि कल की तैयारी आप जरूर करें, लेकिन आज को मत खोइए। अपने परिवार को समय दीजिए, अपने दोस्तों को महत्व दीजिए, प्रकृति को महसूस कीजिए, अपनी प्रतिभा को पहचानिए साथियों, और साथ ही साथ गलतियों से भी सीखिए। जरूरत पड़ने पर मदद मांगिए, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लीजिए, लेकिन अपनी यात्रा की तुलना किसी और से मत कीजिए। क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती इस बात में नहीं है कि हमारे पास सब कुछ हो, बल्कि इस बात में है कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसे कितनी खूबसूरती से जीते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, इसीलिए कहा गया है कि हर सुबह एक नया अवसर है, हर शाम एक नया अनुभव है, हर गलती एक नई सीख है, और हर दिन जिंदगी को थोड़ा और खूबसूरत बनाने का मौका है।
0: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना श्रोता साथियों, आज से आप एक छोटा सा प्रयास करें कि हम अपने आज को कल के इंतजार में बर्बाद नहीं करेंगे। हम अपने सपनों के लिए मेहनत करेंगे, हम अपने रिश्तों को समय देंगे, हम छोटी छोटी खुशियों को महसूस करेंगे और जीवन में आने वाले हर दिन को पूरी जागरूकता, उम्मीद और उत्साह के साथ जिएंगे।
0: जी हाँ,
1: जिंदगी लंबी कितनी है ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन जो दिन हमारे पास है उसे कितना अर्थपूर्ण बनाना है ये काफी हद तक हमारे हाथ में जरूर है।
0: बिल्कुल,
1: आज का दिन आपके जीवन की कहानी का एक नया पन्ना है श्रोताओं। इसे शिकायत से नहीं, उम्मीदों से भरिए, इसे डर से नहीं, हिम्मत से भरिए, और इसे सिर्फ गुजारिए मत, इसे महसूस कीजिए, सीखिए और पूरी तरह से जिए।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी हैं, और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो हम जरूर लेंगे दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहेंगे एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो युवा साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाय यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है मिट्टी और गांव के भविष्य को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: कहा गया अंजलि कि मिट्टी बचेगी तो गांव बचेगा, और गांव बचेगा तो देश का भविष्य संवरेगा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे मिट्टी और गांव के भविष्य का क्या महत्व है, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: ही मिट्टी अन्न पैदा करती है, पशुओं के लिए चारा देती है, पेड़ पौधों को जीवन देती है और करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार बनती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों, मिट्टी का भविष्य सीधे गांव के भविष्य से जुड़ा हुआ है। यदि मिट्टी स्वस्थ और उपजाऊ रहेगी तो गांव समृद्ध होंगे और यदि मिट्टी कमजोर होगी तो गांवों के सामने रोजगार, भोजन और पलायन जैसी अनेक चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।
1: जी हाँ,
0: आज आवश्यकता इस बात की है श्रोता साथियों कि हम गांवों को केवल अतीत की तस्वीर न समझें बल्कि उसे भविष्य की नई संभावना का केंद्र बनाएं। आधुनिक तकनीक, शिक्षा, स्थानीय संसाधन और सामूहिक भागीदारी के माध्यम से गांवों को आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि मनुष्य का जीवन प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति का एक महत्वपूर्ण आधार मिट्टी है। खेत में बोया गया एक छोटा सा बीज मिट्टी, पानी, हवा और सूर्य के प्रकाश के सहारे पौधा बनता है और वही पौधा हमारे भोजन का आधार बनता है। हमारी थाली में आने वाला गेहूं, बाजरा, मक्का, दालें, सब्जियां और अनेक फल मिट्टी से ही हमें प्राप्त होते हैं। इसीलिए श्रोताओं, किसानों के लिए मिट्टी केवल खेती की जमीन नहीं बल्कि उसकी मेहनत, उम्मीद और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन लगातार रासायनिक पदार्थों का अत्यधिक उपयोग, मिट्टी का कटाव, पानी की कमी, जंगलों की कटाई और भूमि का अनियोजित उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।
0: जी हाँ,
1: अगर हम समय रहते मिट्टी की रक्षा नहीं करेंगे तो भविष्य में खेती की लागत बढ़ सकती है और उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए मिट्टी को बचाना केवल किसानों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, गांव भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं।
1: जी हाँ,
0: यहाँ लोगों के बीच आपसी सहयोग, सामूहिक श्रम और प्रकृति से जुड़ाव की परंपरा रही है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि गांव की पहचान केवल खेतों से नहीं होती, यहाँ कारीगर, पशुपालक और महिलाएं हैं, युवा हैं, छोटे व्यवसायी हैं और ऐसे अनेक लोग हैं जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: पहले गांव में जरूरत की अनेक वस्तुएं स्थानीय स्तर पर ही तैयार होती थी। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, बड़ी लकड़ी का काम करता था, लोहार औजार बनाता था और किसान खेती करता था। इस तरह गांव की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई थी।
1: जी हाँ,
0: आज समय बदल रहा है। डिजिटल तकनीक, इंटरनेट, आधुनिक कृषि उपकरण और नई शिक्षा ने गांव के सामने नई संभावनाएं खोल दी है। आवश्यकता केवल यह है कि इन अवसरों का सही दिशा में उपयोग किया जाए।
1: बिल्कुल अंजलि,
0: इसी के साथ जागृति जी बात करें कि मिट्टी की रक्षा क्यों जरूरी है। तो श्रोता साथियों, मिट्टी बनने में बहुत समय लगता है लेकिन उसका क्षरण अपेक्षाकृत जल्दी हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: वर्षा के पानी के साथ हम देखते हैं कि उपजाऊ मिट्टी बहकर चली जाती है। जागृति जी, हवा से मिट्टी का उड़ना और लगातार एक ही प्रकार की खेती करना मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: मिट्टी को बचाने के लिए हमें जैविक पदार्थ का उपयोग बढ़ाना, फसल विविधता अपनाना, पेड़ पौधों को लगाना, खेतों में मेड़बंदी करना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए।
1: जी हाँ, इसलिए कहा गया है कि खेत की मेड़ मजबूत होगी, मिट्टी की पकड़ भी मजबूत होगी। किसान अगर मिट्टी की जांच करवाकर उसके अनुसार पोषक तत्वों का उपयोग करें अंजलि, तो खेती अधिक संतुलित और टिकाऊ बन सकती है। जैविक खाद, कंपोस्ट, फसल अवशेषों का उचित उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकता है।
0: जी जी,
1: जल और मिट्टी के गहरे संबंध को लेकर हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं तो मिट्टी और पानी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जहाँ पानी का सही प्रबंधन होता है वहाँ मिट्टी भी बेहतर स्थिति में रहती है। वर्षा का पानी अगर तेजी से बहकर बाहर चला जाए तो वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी ले जा सकती है।
0: जी हाँ,
1: गांव में तालाब, कुएं, छोटे जल स्रोत, खेत, तालाब, मेड़बंदी और वर्षा जल संचयन जैसे उपाय पानी को रोकने में सहायक हो सकते हैं। इसीलिए हर गांव में ये सोच विकसित करनी होगी कि बारिश की हर बूंद को बचाना है। पानी की हर बूंद बचाए श्रोताओं, मिट्टी और गांव के भविष्य को जरूर सजाए।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, हम जान रहे हैं मिट्टी और गांव के भविष्य को लेकर ढेर सारी बातों।
1: बिल्कुल,
0: ये बातें निरंतर आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जल और मिट्टी के गहरे संबंध के बारे में जाना, यही बात करें कृषि में नई सोच की आवश्यकता की। श्रोता साथियों, गांवों के भविष्य की चर्चा खेती के बिना अधूरी है।
1: बिल्कुल,
0: खेती को केवल जागृति जी परंपरा के रूप में नहीं बल्कि आधुनिक और लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। आज किसान आधुनिक कृषि तकनीक, मौसम की जानकारी, मिट्टी परीक्षण, बेहतर सिंचाई पद्धतियां और बाजार की जानकारी का प्रयोग कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: फसल विविधीकरण, बागवानी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग जैसे क्षेत्र गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। श्रोता साथियों, विशेष रूप से मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और मक्का स्थानीय परिस्थितियों और पोषण के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। स्थानीय फसलों और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ना गांवों की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि गांव का भविष्य उसके युवाओं से जुड़ा हुआ है। अगर युवा गांव छोड़कर रोजगार की तलाश में लगातार शहरों की ओर जाते रहेंगे,
0: बिल्कुल,
1: तो गांवों की सामाजिक और आर्थिक शक्ति कमजोर हो सकती है। इसीलिए युवाओं को गांव में ही शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन सेवाएं, कृषि आधारित उद्यम, स्थानीय उद्योग, पर्यटन, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसाय युवाओं को नए अवसर दे सकते हैं। आज का युवा केवल नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि रोजगार पैदा करने वाला भी बन सकता है।
0: जी हाँ।
1: आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि गांव का युवा जब अवसर खोजेगा, गांव का भविष्य खुद ब खुद बदल जाएगा। साथ ही महिलाओं की भागीदारी को लेकर हम बताएं तो गांव के विकास में महिलाओं की भूमिका भी बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: महिलाएं कृषि, पशुपालन, घरेलू अर्थव्यवस्था, खाद्य संरक्षण और परिवार की देखभाल में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगर महिलाओं को शिक्षा, कौशल, प्रशिक्षण, वित्तीय जानकारी, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय उद्यमों से जोड़ा जाए अंजलि, तो गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।
0: जी जी।
1: महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, कपड़े, जैविक उत्पाद और कई सारी वस्तुओं को डिजिटल बाजार से जोड़ा जा सकता है। श्रोताओं, इससे स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार मिल सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि तकनीक गांवों के विकास का महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। आज मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से किसान मौसम, बाजार भाव और कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों और युवाओं के लिए सीखने के नए रास्ते खुले हैं। डिजिटल भुगतान से आर्थिक लेनदेन आसान हुआ है। ऑनलाइन सरकारी सेवाओं ने कई कामों को घर के पास उपलब्ध कराया है। लेकिन हम देखते हैं कि तकनीक का उपयोग तभी सार्थक है जब उसके साथ डिजिटल साक्षरता भी हो।
1: बिल्कुल।
0: प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना जरूरी है कि इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी में सही और गलत की पहचान कैसे की जाए।
1: जी हाँ अंजलि, साथ ही स्थानीय संसाधन और स्थानीय रोजगार को लेकर हम बात करें तो गांव का विकास बाहर से लाई गई हर चीज पर निर्भर नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: गांव के पास मौजूद प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की पहचान करना जरूरी है। जिस गांव में मिट्टी अच्छी है वहाँ कृषि आधारित उद्योग विकसित हो सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: जहाँ पशुपालन की संभावना है वहाँ दुग्ध व्यवसाय और पशु आधारित उद्यम विकसित किए जा सकते हैं। जहाँ हस्तशिल्प की परंपरा है वहाँ कारीगरों को बाजार से जोड़ा जा सकता है।
0: जी हाँ।
1: इस प्रकार हम कह सकते हैं अंजलि कि स्थानीय संसाधन, स्थानीय रोजगार, स्थानीय विकास का मॉडल गांव को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकता है। साथ ही श्रोताओं, पलायन रोकने की दिशा को लेकर हम आपको बताएं तो रोजगार और बेहतर सुविधाओं की कमी के कारण हम देखते हैं कि कई ग्रामीण परिवार शहरों की ओर चले जाते हैं। पलायन केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, इसका प्रभाव गांव की सामाजिक संरचना और संस्कृति पर भी पड़ता है। अगर गांव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, सड़क हो, इंटरनेट हो, रोजगार और बाजार की बेहतर व्यवस्था हो तो लोगों को अपने गांव में ही अवसर मिल जाएंगे। गांव को ऐसा बनाया जाना चाहिए श्रोताओं जहां युवा भविष्य की कल्पना कर सके, किसान सम्मान के साथ खेती कर सके और परिवार अपने गांव में सुरक्षित एवं सुविधाजनक जीवन जी सके।
0: बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें ग्राम पंचायत और सामूहिक भागीदारी की तो श्रोता साथियों, गांव का विकास केवल सरकार की योजनाओं से नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल।
0: इसके लिए ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। ग्राम सभा में लोग अपनी आवश्यकताओं पर चर्चा करें, विकास योजनाओं में भाग लें और सार्वजनिक संसाधनों की देखभाल करें। गांव की सड़क, तालाब, विद्यालय, आंगनबाड़ी, पेड़ पौधे और जल स्रोत केवल सरकारी संपत्ति नहीं बल्कि पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल।
0: जब गांव के लोग मिलकर निर्णय लेते हैं तो विकास अधिक टिकाऊ और प्रभावी बनता है। इसी के साथ गांव का भविष्य बच्चों के हाथों में है, इसलिए बच्चों को केवल किताबों तक सीमित रखने के बजाय श्रोता साथियों, उन्हें प्रकृति और स्थानीय जीवन से जोड़ना चाहिए। विद्यालय में पौधारोपण, रसोई बाग, जल संरक्षण, स्वच्छता, मिट्टी परीक्षण और स्थानीय इतिहास जैसी गतिविधियां कराई जा सकती हैं। इसी के साथ जागृति जी, बच्चों में अपने गांव और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी। जो बच्चा आज एक पौधा लगाता है, वही कल अपने गांव के पर्यावरण का प्रहरी भी बन सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि मिट्टी की रक्षा के लिए स्वच्छता और हरियाली भी बहुत जरूरी है। गांव में कचरे का उचित प्रबंधन, प्लास्टिक का कम उपयोग, जैविक कचरे से खाद बनाना और अधिक से अधिक पेड़ लगाना जरूरी है। पेड़ मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, वर्षा जल को जमीन में पहुंचाने में मदद करते हैं और पर्यावरण को बेहतर बनाते हैं। हर गांव का लक्ष्य होना चाहिए श्रोताओं, स्वच्छ गांव, हरित गांव, स्वस्थ गांव और आत्मनिर्भर गांव। गांव के विकास का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी परंपराओं को भूल जाएं। हमारे पूर्वजों ने स्थानीय जल स्रोतों, मौसम, फसलों, प्रकृति के बारे में जो ज्ञान विकसित किया है, उसमें बहुत कुछ सीखने योग्य भी है। हमें पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ना चाहिए। पुरानी अच्छी परंपराओं को बचाते हुए नई तकनीक को अपनाना ही संतुलित विकास का रास्ता है।
0: जी हाँ जागृति जी, मिट्टी और गांव के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को छोटे छोटे कार्य करने चाहिए। जैसे कि मिट्टी का अनावश्यक दोहन नहीं करना चाहिए, जल की प्रत्येक बूंद को बचाना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए।
1: जी हाँ,
0: स्थानीय किसानों और स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए। गाँव में स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। युवाओं को कौशल और रोजगार से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। महिलाओं को आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों को प्रकृति और मिट्टी से जोड़ना चाहिए। गांव के विकास में ग्राम सभा और सामूहिक निर्णयों में भाग लेना चाहिए। इसी के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग गांव की भलाई के लिए करना चाहिए।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि मिट्टी और गांव का भविष्य अलग अलग नहीं है। मिट्टी स्वस्थ होगी तो खेत स्वस्थ होंगे, खेत स्वस्थ होंगे तो किसान मजबूत होंगे और किसान मजबूत होगा तो गांव मजबूत होगा और गांव मजबूत होगा श्रोताओं तो देश मजबूत होगा। हमें ये समझना होगा कि गांव पिछड़ेपन का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, प्रकृति और सामुदायिक जीवन की प्रयोगशाला बन सकते हैं।
0: जी जी,
1: गांव में मौजूद संसाधन, श्रम, परंपरा और प्रतिभा को अगर आधुनिक शिक्षा, तकनीक और बाजार से जोड़ा जाए अंजलि, तो गांव में विकास के नए केंद्र बन सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, भविष्य केवल बड़ी बड़ी इमारतों में नहीं लिखा जाएगा, भविष्य उन खेतों में भी लिखा जाएगा जहां किसान मिट्टी में बीज बोता है, उन तालाबों में लिखा जाएगा जहां वर्षा का पानी बचाया जाता है, उन विद्यालयों में लिखा जाएगा जहां बच्चे अपने गांव को बेहतर बनाने का सपना देखते हैं, और उन युवाओं के हाथों में लिखा जाएगा जो गांव छोड़ने के बजाय गांव में अवसर पैदा करने का संकल्प लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए श्रोताओं, हम अपनी मिट्टी को केवल जमीन न समझें बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों की विरासत समझें। गांव को केवल रहने की जगह नहीं बल्कि विकास और आत्मनिर्भर का केंद्र बनाएं।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि मिट्टी हमारी जड़ है और गांव हमारी पहचान है। मिट्टी सुरक्षित रहेगी तो गांव सुरक्षित रहेगा और गांव सुरक्षित रहेगा तो भारत का भविष्य सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों, अपनी मिट्टी से जुड़े, अपने गांव को गढ़े और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारें।
1: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि बहुत सारी बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी हो चुकी है, अब समय का मान रखते हुए हमें विदा लेना होगा, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, आज हम कार्यक्रम में बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत करने वाले हैं। उससे पहले आपको कहना चाहूंगी कि प्रकृति हमारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक है। वह हमें बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखाती है। पेड़ हमें धैर्य सिखाते हैं, नदियाँ निरंतर बहते रहना सिखाती है और फूल हमें सिखाते हैं कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो उसमें सुंदरता और खुशबू बनाए रखी जा सकती है। आज का हमारा विषय है फूलों की छाँव में छिपा है जीवन का उपहार। जी हाँ दोस्तों, यह केवल फूलों की सुंदरता की बात नहीं है, यह उस जीवन दर्शन की बात है जिसमें प्रकृति, मनुष्य, परिवार, गांव और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं फूलों की छाओ में छिपा है जीवन का उपचार।
1: बिल्कुल
0: जी हाँ श्रोता साथियों, प्रकृति ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए अनेक अनमोल उपहार दिए हैं। पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, मिट्टी, हवा और फूल, ये सभी श्रोता साथियों हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इनमें श्रोता साथियों फूलों का अपना एक अलग ही स्थान है। फूलों को देखते ही श्रोता साथियों मन खुशी और ताजगी को अनुभव करता है। उसकी सुंदरता वातावरण को आकर्षित बनाती है और उसकी खुशबू मन को प्रसन्न कर देती है। लेकिन श्रोता साथियों, क्या फूल केवल सुंदरता देने के लिए होते हैं? बिल्कुल नहीं, फूलों का हमारे जीवन और स्वास्थ्य से गहरा संबंध है।
1: बिल्कुल,
0: हमारी परंपरा में कई फूलों का उपयोग पूजा पाठ, घरेलू उपचार, सुगंध, सौंदर्य और विभिन्न पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धतियों में किया जा रहा है। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि गुलाब, गेंदा, चमेली, गुड़हल, कमल और कई अन्य फूल श्रोता साथियों हमारे आसपास आसानी से दिखाई देते हैं। इन फूलों में मौजूद प्राकृतिक सुगंध और वनस्पति योग्यताओं का अलग अलग उपयोग किया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: हालांकि श्रोता साथियों, किसी भी फूल को औषधि मानकर सीधे सेवन करना उचित नहीं है। स्वास्थ्य संबंधित उपयोग के लिए सही जानकारी और विशेषज्ञों की सलाह लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि फूल जो है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि फूलों की सुंदरता मन को सुकून देती है। श्रोता साथियों, क्या आपने कभी सुबह सुबह खिले हुए फूलों को ध्यान से देखा है? गुलाब की लालिमा, गेंदे का पीला रंग, चमेली की खुशबू और कई सारे ऐसे फूल होते हैं जिनकी सुंदरता हमें भाती है।
0: बिल्कुल,
1: और खेतों के किनारे खिले छोटे छोटे जंगली फूल, इन सबको देखकर मन जो है वो अपने आप प्रसन्न हो जाता है। प्रकृति का यही सौंदर्य हमारे मन को कुछ समय के लिए रोजमर्रा की भागदौड़ और तनाव से दूर कर सकता है।
0: जी हाँ,
1: आज हमारी जिंदगी मनीषा काम के दबाव, आर्थिक चिंता, पारिवारिक जिम्मेदारी और लगातार मोबाइल देखने की आदत के कारण ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। ऐसे समय में कुछ देर प्रकृति के बीच बैठना, पौधों को देखना, बगीचे में टहलना मन को आराम देने वाला अनुभव हो सकता है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति की हरियाली आंखों को ही नहीं मन को भी सुकून देती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, यहीं अगर गुलाब की बात करें तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। इसका उपयोग सदियों से श्रोता साथियों सौंदर्य, सुगंध और पारंपरिक घरेलू देखभाल में किया जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: गुलाब की पंखुड़ियों से श्रोता साथियों गुलाब जल और अन्य सुगंधित उत्पाद बनाए जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: गुलाब की खुशबू मन को प्रसन्न करने में मदद करती है साथियों, और कई लोग गुलाब की सुगंध को आराम और ताजगी के लिए भी जोड़ते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, अब यही बात आती है कि फूलों के बीच समय बिताने का क्या महत्व है। श्रोता साथियों, जब हम किसी बगीचे में आते हैं तो वहाँ का वातावरण हमारे सामान्य वातावरण से अलग महसूस होता है।
0: जी हाँ।
1: खुली हवा, हरियाली, फूलों की खुशबू, पक्षियों की आवाज और धूप की हल्की

0: गर्माहट, ये सब मिलकर हमें प्रकृति के करीब ले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज कुछ समय पैदल चलता है और अपने आसपास की प्रकृति को महसूस करता है तो यह उसकी सक्रिय जीवन शैली बन सकती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि फूलों को सूंघना या पौधों के बीच बैठना किसी बीमारी का वैज्ञानिक इलाज नहीं है। इसका लाभ मुख्य रूप से मन की शांति और स्वस्थ जीवन शैली से जुड़ा हुआ है।
1: जी हाँ,
0: श्रोता साथियों, जीवन में तनाव पूरी तरह हम देखते हैं कि कभी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे निपटने के तरीके जरूर सीखे जा सकते हैं। प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना, सुबह टहलना, पौधों की देखभाल करना, खुली हवा में बैठना और परिवार के साथ समय बिताना तनाव कम करने वाली स्वास्थ्य आदतों का हिस्सा हो सकता है। एक छोटा पौधा मनीषा हमें बहुत बड़ी सीख देता है। वह आज लगाया जाता है लेकिन उसका फल और फूल हमें भविष्य में मिलता है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, कुछ परिस्थितियों में समय, प्रयास और सकारात्मक सोच की जरूरत होती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से फूलों की छाव में छुपा है जीवन का उपचार, इस विषय को लेकर हम बातें कर ही रहे हैं। तो ये बातें हमारे आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दी।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान रहे थे, यही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि फूल केवल हमारे मन को सुंदर नहीं लगते, वे प्रकृति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फूलों पर आने वाली तितलियां और मधुमक्खियां परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: बिल्कुल,
0: अनेक पौधों और फसलों के बीच चक्र में परागण जरूरी होता है, इसलिए जब हम अपने घर या खेत के आसपास फूलदार पौधे लगाते हैं तो हम केवल सुंदरता नहीं बढ़ाते बल्कि छोटे छोटे जीवों के लिए भी अनुकूल वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: प्रकृति में हर जीव दूसरे से जुड़ा हुआ है। फूल है तो कीट है, कीट है तो परागण है, और परागण प्रकृति के अनेक पौधों के जीवन चक्र का हिस्सा है।
1: हाँ।
0: यानी एक छोटा सा फूल भी प्रकृति की बड़ी व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि लोगों को पौधों की देखभाल करना बहुत अच्छा लगता है। सुबह पौधों को पानी देना, नई कली देखना, सूखे पत्ते हटाना और पौधों को धीरे धीरे बढ़ते देखना मन में खुशी पैदा कर सकता है। विशेषकर बच्चों को पौधों से जोड़ना बहुत उपयोगी है। जब बच्चा एक छोटा पौधा लगाता है और कुछ महीने बाद उसमें फूल देखता है तो उसे धैर्य, जिम्मेदारी और देखभाल का महत्व समझ आता है। उसे
1: हाँ।
0: यह भी समझ आता है मनीषा कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, इसलिए प्रकृति की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यहीं अगर बात करें गेंदे के फूल की तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि गेंदा हमारे घरों और गांव में आसानी से दिखाई देने वाला फूल है।
0: बिल्कुल,
1: पूजा पाठ और सजावट में इसका खूब उपयोग किया जाता है। साथियों, इसकी पीली और नारंगी रंग की पंखुड़ियां वातावरण को उत्साह से भर देती है। गेंदा पारंपरिक वनस्पति ज्ञान में भी श्रोता साथियों महत्वपूर्ण माना गया है। इसकी पत्तियों और फूलों का विभिन्न पारंपरिक उपयोग में उल्लेखन मिलता है। हालांकि श्रोता साथियों, किसी भी पौधे को उपचार के रूप में इस्तेमाल करने से पहले हमें विशेषज्ञों की सलाह लेना हमारे लिए जरूरी है। गेंदा हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण संदेश देता है साथियों, स्वास्थ्य के लिए। श्रोता साथियों, प्रकृति हमेशा दूर के जंगलों में नहीं होती, हमारे घर के आसपास उगने वाले पौधों में भी प्रकृति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।
0: जी हाँ मनीषा, आपने सही कहा। यही बात करें श्रोता साथियों से कि कई बार हम सुनते हैं कि किसी फूल या पौधे से हर बीमारी ठीक हो जाती है, ऐसी बातों पर बिना प्रमाण के विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ पौधों में औषधीय गुण हो सकते हैं और उनसे बनी कुछ चीजों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा में किया जाता है, लेकिन किसी पौधे, फूल, पत्ते या घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल बीमारी के इलाज के लिए करने से पहले विशेषज्ञ और डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: फूलों की सुंदरता और प्रकृति से मिलने वाला सुकून हमारे जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन बीमारी होने पर सही चिकित्सा लेना भी उतना ही जरूरी है। श्रोता साथियों, पेड़ पौधे हमारे आसपास के वातावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
1: जी हाँ।
0: वे हमें छाया देते हैं, मिट्टी बचाने में मदद करते हैं और अनेक पक्षियों और जीवों को आश्रय देते हैं। हरियाली वाला वातावरण हमें मनीषा प्रकृति के करीब रहने का अवसर देता है।
1: जी हाँ।
0: गाँव में खेतों की मेड़, घर के आंगन, स्कूल परिसर और सामुदायिक स्थानों पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल पौधे लगाए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, पौधा लगाना शुरुआत है, उसकी देखभाल करना असली जिम्मेदारी है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि फूल है वो प्रकृति की मुस्कान है, वे हमारे घर, आंगन और वातावरण को सुंदर बनाते हैं। उनकी खुशबू मन को प्रसन्न करती है और उनकी रंग बिरंगी छटा ही वो श्रोता साथियों हमारे जीवन में आनंद भरती है।
0: बिल्कुल,
1: गुलाब हमें खुशबू और कोमलता का संदेश देता है, गेंदा हमारी परंपराओं से हमें जोड़ता है, चमेली वातावरण को सुगंधित करती है, गुड़हल प्रकृति की सुंदरता को याद दिलाती है और कमल है वो श्रोता साथियों हमें कठिन परिस्थितियों में खिलने की प्रेरणा देता है।
0: बिल्कुल,
1: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि फूलों का वास्तविक उपचार केवल उनके औषधीय उपयोगों से नहीं है, बल्कि श्रोता साथियों प्रकृति से हमारा संबंध में भी छुपा हुआ है। आइए श्रोता साथियों, हम अपने घर और गाँव में अधिक से अधिक पौधे लगाएं, बच्चों को प्रकृति से जोड़ी फूलों और पौधों की देखभाल करें, सुबह शाम कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं और अपने जीवन में सकारात्मकता के लिए जगह बनाएं।
0: बिल्कुल मनीषा, यही अब बात आती है कि प्रकृति हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। श्रोता साथियों, फूलों की सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि जीवन में कठिनाइयां आने के बावजूद हमें खिलना नहीं छोड़ना चाहिए। फूल मिट्टी में पैदा होता है, धूप सहता है, बारिश झेलता है और फिर भी अपनी खुशबू बिखेरता है। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है, हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी लेकिन हमें उनसे सीख लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। जब मन परेशान हो तो कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना, परिवार से बात करना, मित्रों से अपनी बात साझा करना, नियमित शारीरिक गतिविधियां करना और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ से मदद लेना स्वस्थ रास्ते हैं। यही अब बात आती है कि आज से करें छोटे से शुरुआत, जी हाँ दोस्तों, आज से ही आप अपने घर के आसपास एक पौधा लगाएं, उसकी नियमित देखभाल करें, बच्चों को प्रकृति से जोड़ें, फूलों और पौधों को बेवजह नष्ट न करें, सुबह और शाम कुछ समय प्रकृति के बीच बिताएं और किसी बीमारी के इलाज के लिए बिना सलाह के घरेलू नुस्खे पर निर्भर न रहे, क्योंकि स्वस्थ जीवन केवल दवा से नहीं बनता बल्कि स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक भोजन, नियमित गतिविधियां, पर्याप्त आराम, मानसिक शांति और समय पर चिकित्सा, ये सभी स्वस्थ जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। फूल हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन में सुंदरता हर जगह मौजूद है। कभी वह हमारे आंगन के छोटे से गमले में होती है, तो कभी खेत की मेड़ पर होती है, तो कभी गांव के रास्तों के किनारे, कभी जंगल में, तो कभी किसी पेड़ की छांव में। हमें बस उसे देखने और महसूस करने की जरूरत है। प्रकृति हमारे शरीर, मन और समाज के लिए कई तरह से उपयोगी है, इसलिए प्रकृति से जुड़ना अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक सुंदर कदम हो सकता है।
1: जी हाँ।
0: फूलों की छांव हमें सिखाती है कि प्रकृति के करीब रहिए, जीवन को सरल बनाइए, मन को सुकून दीजिए और स्वस्थ रहने की आदतों को अपनाइए, क्योंकि याद रखिए प्रकृति हमारी साथी है, उसकी रक्षा करेंगे हम तो स्वस्थ और सुंदर भविष्य की ओर बढ़ पाएंगे।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्य प्रद बातें अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
2: नमस्कार।

कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। जी हां साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो आपसे बातचीत करते हैं एक नए विषय को लेकर, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक विषय होता है साथियों। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से हम उन्हीं युवा के सपनों की बातें करेंगे जो उनकी मेहनत की, उनके संघर्ष की और उनके छोटे छोटे बदलावों की और उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। जी हाँ साथियों, आज का जो विषय है वो आपको वैसे तो बहुत साधारण दिखाई देगा, लेकिन इसका जो असर है वो हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा है। हम बात कर रहे हैं उस चीज की जो आज लगभग हर युवा की जेब में है, जिसके बिना दोस्तों हमारी सुबह की शुरुआत अधूरी लगती है, जिसे हम पढ़ाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन मनोरंजन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों से बात करने के लिए भी और दुनिया की जानकारी पाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं साथियों। जी हाँ, आप इन्हीं बातों से समझ तो गए होंगे श्रोता साथियों, हम बात कर रहे हैं मोबाइल फोन की। श्रोता साथियों, जैसा कि आज के समय में मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, हमारी शुरुआत भी मोबाइल फोन के साथ होती है, हमारी रात भी श्रोता साथियों मोबाइल फोन के साथ ही बीतती है। लेकिन इन सभी बातों में सवाल बस ये है कि मोबाइल अच्छा है या बुरा। श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मेरा आपसे सवाल है कि मोबाइल आपका साधन है या आपकी आदत। तो बातें ढेर सारी होंगी कार्यक्रम में आज इसी विषय को लेकर साथियों, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों पहले हम यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय से रूबरू तो मैं आपको करा ही चुकी हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल फोन के बारे में। साथियों, जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा आप सभी से एक सवाल है कि मोबाइल हमारा साधन है या हमारी आदत। युवा साथियों, थोड़ा सा सोचिएगा कि क्या आप मोबाइल को अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल जब चाहे आपको अपनी ओर खींच लेता है। यानी कि साथियों, हम बात कर रहे हैं मोबाइल सुविधा से जरूरत और जरूरत से आदत तक को लेकर। साथियों, मोबाइल अपने आप में ना अच्छा है और न ही बुरा, ये तो एक साधन है। जैसे कि खेती करने वाले किसान के लिए औजार काम आता है, विद्यार्थी के लिए किताब काम आती है, ठीक वैसे ही श्रोता साथियों, आज के समय में मोबाइल भी ज्ञान, सूचना और अवसरों तक पहुंचने का एक साधन बन चुका है। साथियों, मोबाइल से हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, नई भाषा सीख सकते हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, नौकरी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं, नई तकनीक सीख सकते हैं और अपने हुनर को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, एक गांव में रहने वाला युवा आज मोबाइल के माध्यम से देश दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकता है। लेकिन समस्या मोबाइल नहीं है दोस्तों, समस्या तो तब शुरू होती है जब मोबाइल हमारे समय और ध्यान का मालिक बनने लगता है। साथियों, जब हम कहते हैं कि बस 5 मिनट फोन देखता हूँ, तो वो श्रोता साथियों देखते देखते आधा घंटा हो जाता है, फिर कहते हैं कि एक वीडियो और देख लेता हूँ, और एक वीडियो से 10 वीडियो हो जाते हैं श्रोता साथियों। यही वह जगह है जहाँ साधन धीरे धीरे हमारी आदत बनने लगता है। जी हाँ साथियों, यही है मोबाइल एक साधन के रूप में आदत तक के सफर की बात। तो यही साथियों एक छोटे से गांव के युवा की कहानी मैं आपको बताना चाहूंगी, वो है रवि। साथियों, रवि पढ़ाई में ठीक था, उसका सपना था कि वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करके एक अच्छी नौकरी हासिल करे। उसने अपने लिए रोज का टाइम टेबल भी बनाया, जैसे कि सुबह उठना कब है, थोड़ा व्यायाम करना है, पढ़ाई करना है, शाम के 2 घंटे परीक्षा की तैयारी करनी है। वैसे तो श्रोता साथियों, शुरुआत में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था और कुछ दिन बहुत अच्छे भी चले। फिर एक दिन उसने पढ़ाई से संबंधित वीडियो देखने के लिए मोबाइल को उठाया, वीडियो देखा, उसके बाद दूसरा वीडियो सामने आया, फिर तीसरा, फिर श्रोता साथियों सोशल मीडिया के एक एक करके नोटिफिकेशन आने लगे। साथियों, रवि ने सोचा कि थोड़ा सा देख लेता हूँ, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट बीते साथियों, फिर 10 मिनट बीते और फिर 20 मिनट बीते, फिर किसी दोस्त का मैसेज आया, फिर एक वीडियो, फिर एक रील। दोस्तों, जब रवि ने मोबाइल नीचे रखा तो लगभग 1 घंटा बीत चुका था। उसने किताब खोली, लेकिन अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। फिर क्या हुआ, अगले दिन भी यही हुआ साथियों। फिर धीरे धीरे रवि की पढ़ाई कम और मोबाइल का समय ज्यादा होने लगा। कुछ महीनों बाद उसने ये महसूस किया कि समस्या उसकी किताबों में नहीं थी, समस्या थी उसका ध्यान और उसके नियंत्रण में। उस दिन रवि ने एक फैसला लिया, उसने मोबाइल साइड में रखा और उसने मोबाइल देखना भी छोड़ दिया। उसने बस मोबाइल के इस्तेमाल के नियम बदल दिए, जैसे कि पढ़ाई के समय फोन दूर, जरूरी काम के लिए फोन पास, सोशल मीडिया के लिए निश्चित समय, सोने से पहले मोबाइल नहीं साथियों। धीरे धीरे उसका ध्यान वापस आने लगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने मोबाइल को अपनी जिंदगी का मालिक बनने के बजाय अपना साधन बनाना जरूरी समझा साथियों। और यही हम सभी को करना है, क्योंकि वर्तमान में श्रोता साथियों मोबाइल हम सबकी आदत बन चुका है और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम मोबाइल चलाते चलाते अपने जरूरी कामों को भूल जाते हैं। तो इस तरीके से साथियों, इस कहानी के माध्यम से मेरा आपसे कहने का तात्पर्य यही है कि आप मोबाइल का यूज कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मोबाइल का उपयोग मत कीजिए, लेकिन एक निश्चित समय के लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, आप मोबाइल का सदुपयोग कीजिए साथियों। तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में मेरी आपसे बातें ढेर सारी हो रही हैं, आगे भी ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं दोस्तों एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छी बातें हमारी आपसे चल रही हैं साथियों, और गीत से पहले एक छोटी सी कहानी के माध्यम से भी हम जान पाए थे श्रोता साथियों कि किस प्रकार से मोबाइल हमारी आदत बन जाता है, लेकिन हमें मोबाइल को अपनी आदत नहीं बनने देना चाहिए। श्रोता साथियों, यही इस कहानी का संदेश था। अब यही प्रश्न ये उठता है कि अगर

स्माइल हमारी आदत बन रहा है तो इसे पहचानना हमें कैसे है? साथियों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मोबाइल आपके लिए जरूरत है या आदत। आप अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। पहला सवाल साथियों आपका ये होगा कि क्या आप बिना किसी जरूरी काम के बार बार मोबाइल चेक करते हैं? दूसरा सवाल ये कि क्या मोबाइल दूर रखने पर आपको बेचैनी महसूस होती है? तीसरा सवाल ये साथियों कि क्या आप पढ़ाई या काम के बीच बार बार स्क्रीन को देखते हैं? चौथा यह कि क्या आप मोबाइल चलाने के लिए अपना जरूरी काम टाल देते हैं? पांचवा ये श्रोता साथियों कि क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ 5 मिनट मोबाइल देखने से क्या होगा, लेकिन बहुत ज्यादा समय बाद में निकल जाता है। छठा सवाल ये श्रोता साथियों कि क्या मोबाइल के कारण आपकी नींद का समय बिगड़ रहा है? और सातवा ये कि क्या परिवार या दोस्तों से बात करते हुए भी आपका ध्यान फोन में ही बना रहता है? साथियों, अगर इनमें से कई सवालों के जवाब आपके हाँ है तो शायद मोबाइल आपकी जरूरत से ज्यादा बढ़कर आपकी आदत बन रहा है और आपको इसे नियंत्रण में करना होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि आज हमारे युवा साथियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती समय है। साथियों, जिंदगी में पैसा खो जाता है तो मेहनत करके वापस हम कमा लेते हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो दोबारा हासिल कर ली जाती है, लेकिन गुजरा हुआ समय जो होता है साथियों, वो वापस नहीं आता। युवावस्था जीवन का वह दौर है जिसमें हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं और इसी समय हम ये तय करते हैं साथियों कि हमें आगे क्या बनना है, कौन सा हुनर हमें सीखना है, किस क्षेत्र में जाना है और अपने परिवार और समाज के लिए क्या करना है। लेकिन साथियों, अगर दिन का बड़ा हिस्सा हम बिना किसी उद्देश्य के मोबाइल स्क्रीन पर निकाल देते हैं और हमारे सपनों के लिए समय हम नहीं निकाल पाते हैं, तो हमारे पास हमारे सपनों को पूरा करने के लिए कभी समय ही नहीं बचेगा। इसलिए श्रोता साथियों, सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं मोबाइल कितने घंटे चलाता हूँ, सवाल ये होना चाहिए कि मोबाइल चलाने के बाद मेरे पास अपने सपनों के लिए कितना समय बचता है। श्रोता साथियों, मोबाइल खोलने से पहले आपको उद्देश्य तय करने होंगे, जैसे कि आपका पहला सवाल ये होगा कि मैं मोबाइल फोन क्यों खोल रहा हूँ। अगर जवाब मुझे पढ़ना है तो पढ़िए साथियों, अगर जवाब मुझे जानकारी लेनी है तो जानकारी भी लीजिए। अगर जवाब श्रोता साथियों ये है कि मुझे किसी से जरूरी बात करनी है तो बात भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जवाब ही नहीं पता है और हाथ अपने आप फोन की तरफ चला गया है तो शायद श्रोता साथियों वहाँ जरूरत नहीं, आदत काम कर रही है। इसलिए आपसे कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप मोबाइल को अपनी आदत मत बनने दीजिए श्रोता साथियों, क्योंकि अगर जिस दिन मोबाइल आपकी आदत बन गया उस समय श्रोता साथियों आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। मोबाइल एक साधन है श्रोता साथियों, आदत नहीं। अब मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपसे ये कहना चाहूंगी कि श्रोता साथियों, अब समय है आज के छोटे से चैलेंज का, 24 घंटे मोबाइल जागरूकता चुनौती का। दोस्तों, आज पूरे दिन मोबाइल चलाने से पहले आप खुद से एक सवाल पूछिएगा कि क्या मुझे अभी सच में इसकी जरूरत है। अगर जरूरत है श्रोता साथियों तो इस्तेमाल कीजिए, अगर सिर्फ आदत है तो फोन को पहले ही साइड में रख दीजिए और आज कम से कम 1 घंटा आप खुद के लिए ऐसा निकालिए जिसे आप अपने भविष्य के नाम करेंगे। उस 1 घंटे में श्रोता साथियों आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, नया कौशल सीख सकते हैं, अपने लक्ष्य की तैयारी कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और परिवार के साथ समय भी बिता सकते हैं। और फिर खुद से ये पूछिएगा कि आज मैंने मोबाइल का इस्तेमाल किया या मोबाइल ने मेरा इस्तेमाल किया। जी हाँ श्रोता साथियों, अगर आप ये सवाल अपने मन से पूछेंगे तो आपको जवाब खुद ब खुद ही मिल जाएगा, क्योंकि साथियों आपके हाथ में मोबाइल है, लेकिन आपके हाथ में सिर्फ मोबाइल नहीं है, आपके हाथ में समय भी है, आपके हाथ में अवसर भी है और आपके हाथ में भविष्य भी है। मोबाइल से दुनिया आपके पास आ सकती है, लेकिन याद रखिए, आपकी मेहनत के बिना आपका सपना आपके पास नहीं आएगा। मोबाइल आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही है। मोबाइल आपको प्रेरित कर सकता है, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी होगी श्रोता साथियों। इसलिए कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि मोबाइल को नियंत्रण में रखिए। मोबाइल आपको नियंत्रण में नहीं रख सकता। आपका फोन स्मार्ट हो सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी को स्मार्ट बनाने का फैसला आपको करना होगा। आपके सपने आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें स्क्रॉल करते करते मत खोइए, उन्हें मेहनत करते करते हासिल कीजिए साथियों। इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का और बातें भी मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं। तो विदा जरूर लूंगी,
लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में, तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यही समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

भाई ने बोनो घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी दोस्तों को आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है अपने संबंधों को सुंदर और सकारात्मक बनाने को लेकर। हम सभी जानते हैं श्रोता साथियों कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
0: बिल्कुल।
1: हम अकेले जीवन नहीं जी सकते, हमारे जीवन में माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे दोस्त पड़ोसी और समाज के अनेक लोग जुड़े होते हैं। इन्हीं लोगों के साथ हमारे संबंध हमारे जीवन को खुशहाल और दुखी बना सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कहा जा सकता है कि रिश्ते खून से बन सकते हैं लेकिन उन्हें निभाने के लिए विश्वास सम्मान और प्रेम की जरूरत होती है।
0: जी हाँ अंजलि जी,
1: आज के समय में कशिश हम सर देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर रिश्तों में दूरी आ जाती है। परिवार के सदस्य एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से मन की बात नहीं कर पाते। मोबाइल और सोशल मीडिया ने दूर बैठे लोगों को तो पास कर दिया लेकिन कई बार पास बैठे लोगों के बीच दूरी बढ़ा दी है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे समय में यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हम अपने संबंधों को सुंदर मजबूत और सकारात्मक कैसे बना सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: आज कार्यक्रम में इस विषय पर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विशेष रूबरू आपको करा ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हमें अपने संबंधों को सुंदर और सकारात्मक किस तरीके से बनाना है।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि जी, हम सभी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम अकेले हमारे जीवन को कभी नहीं जी सकते। साथियों, जन्म से लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव तक वह हम अनेक प्रकार के संबंधों से जुड़े रहते हैं। माता पिता, भाई बहन, मित्र, जीवन साथी, रिश्तेदार, पड़ोसी, सहकर्मी, शिक्षक और समाज के अन्य लोग, इन सभी के साथ हमारे संबंध हमारे जीवन को अर्थ और दिशा प्रदान करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अच्छे संबंध अंजलि जी जीवन में प्रेम, खुशी, सहयोग और सुरक्षा की भावना को उत्पन्न करते हैं, जबकि जो खराब संबंध होते हैं वो जीवन में तनाव, दुख, अकेलेपन और असंतोष का कारण बन सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए ये जरूरी है साथियों कि हम अपने संबंधों को सुंदर भी बनाएं, मधुर भी बनाएं और सकारात्मक बनाने का निरंतर प्रयास करते रहें।
1: जी हाँ कशिश, हमारे जीवन में संबंधों का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम दुखी होते हैं तो हमें किसी अपने के सहारे की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल।
1: जब हम सफल होते हैं तो अपनी खुशी किसी अपने के साथ बांटना चाहते हैं। बीमारी, परेशानी और कठिन समय में बीमार और अच्छे संबंध भी हमें मानसिक शक्ति देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: एक सुंदर शब्द संबंध जो होता है कशिश, वो हमें एहसास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई है जो हमारी बात सुनता है, हमारी जी चिंता करता है, हमें जरूरत पड़ने पर हमारे साथ खड़ा रहता है। लेकिन संबंध केवल साथ रहने से मजबूत नहीं होते।
0: बिल्कुल।
1: रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए समय, समझदारी, धैर्य, प्रेम देना पड़ता है। रिश्ते पौधे की तरह होते हैं श्रोता साथियों, जिस प्रकार पौधे को पानी, धूप और देखभाल की जरूरत होती है, उसी प्रकार रिश्तों को प्रेम, विश्वास, सम्मान और संवाद की आवश्यकता होती है।
0: जी हाँ।
1: अगर हम रिश्तों की देखभाल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उनमें दूरी और गलत फहमियां बढ़ने लगेगी।
0: बिल्कुल अंजलि जी, कहा जा सकता है दोस्तों कि संबंध हमारे जीवन की आधारशिला है। जब कोई व्यक्ति अंजलि जी किसी कठिन परिस्थिति में होता है, तब सबसे पहले उसे अपने प्रियजनों के सहयोग और विश्वास की जरूरत होती है।
1: जी जी।
0: साथियों, परिवार के सदस्य हमारे सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। सच्चे मित्र जो होते हैं वो हमारी सफलता पर प्रसन्न होते हैं और असफलता के समय हमारा मनोबल बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसी प्रकार शिक्षक जो होते हैं वो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कहा जा सकता है कि एक अच्छा संबंध व्यक्ति को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जिस व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों का प्रेम और सहयोग मिलता है अंजलि जी, उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है।
1: जी जी।
0: और अगर इसके विपरीत बात करें तो यदि व्यक्ति अपने संबंधों में उपेक्षा, अविश्वास और कटुता अनुभव करता है, तो उसका मानसिक संतुलन, जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी इससे प्रभावित होता है।

0: बिल्कुल।
1: इसलिए दोस्तों स्वस्थ और सकारात्मक संबंध सुखी जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं।
0: जी हाँ कशिश, किसी भी संबंध की नींव विश्वास पर टिकी होती है, चाहे वह पति पत्नी का रिश्ता हो, दोस्ती का हो, भाई बहन का हो, या माता पिता का हो, या बच्चों का रिश्ता हो। विश्वास के बिना कोई भी संबंध लंबे समय तक मजबूत नहीं रह सकता।
1: जी हाँ।
0: जब हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो हमारे मन में सुरक्षा और अपनापन पैदा होता है। लेकिन यदि हम बार बार शक करें, बिना बात किसी पर आरोप लगाएं या हर बात पर संदेह करें तो रिश्तों में तनाव पैदा होने लगता है।
1: जी
0: इसलिए
1: हाँ।
0: हमें चाहिए कि किसी भी बात को बिना समझे गलत न माने, छोटी बातों पर शक न करें, एक दूसरे से ईमानदारी से बात करें, अपने वादों को निभाने का प्रयास करें, यदि गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करें। याद रखिए कि विश्वास बनाने में वर्षों लग जाते हैं लेकिन उसे टूटने में केवल एक पल लग सकता है। इसलिए अपने संबंधों में विश्वास बनाए रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें प्रेम और सम्मान की, तो किसी भी संबंधी की सबसे मजबूत नींव प्रेम और सम्मान ही माने जाते हैं। केवल प्रेम करना ही पर्याप्त नहीं होता साथियों, बल्कि सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को समझना, विचारों और स्वतंत्रता का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। अंजलि जी, हर व्यक्ति की अपनी पसंद होती है, सोच होती है और व्यक्तित्व होता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि हम श्रोता साथी उसकी बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसके विचारों का सम्मान करते हैं, तो संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन वही इसके विपरीत अगर देखें तो हम उसकी बातों को समझते ही नहीं है और अपने ही विचार उसके सामने प्रकट करते रहते हैं, अपनी बात ही उसे कहते हैं और उसकी बात को सुनने का और समझने का प्रयास करते ही नहीं है अंजलि जी, तो इससे जो रिश्ते होंगे उनमें डगमगा जाएंगे और मधुरता नहीं आएगी बल्कि कटुता आएगी।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए श्रोता साथियों, हमारे जीवन में प्रेम भी होना चाहिए और प्रेम के साथ साथ सम्मान भी होना चाहिए।
0: जी हाँ, आपने सही कहा। आज बहुत से रिश्ते इसलिए कमजोर हो जाते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते। और ये जो बातें जब बंद होती है तो हम देखते हैं कि कई बार रिश्तों में किसी बात का गलत अर्थ निकाल लिया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हमें लगता है कि सामने वाले ने हमें समझा ही नहीं, हमारी कदर नहीं की, जानबूझकर हमें दुख पहुंचाया। लेकिन कई बार सच्चाई कुछ और होती है। अगर हम अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से सामने वाले व्यक्ति से कह दे तो बड़ी से बड़ी गलतफहमी दूर हो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: उदाहरण के लिए, यदि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर नाराजगी है तो चुप रहने के बजाय सही समय पर शांत मन से बात करनी चाहिए।
1: जी हाँ।
0: माता पिता को भी बच्चों की बात सुननी चाहिए और बच्चों को भी माता पिता की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: संबंधों में केवल बोलना ही जरूरी नहीं है, सुनना भी जरूरी होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या या भावना जो है वो हमारे सामने रख रहा है तो हमें उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: बीच में रोकना, मजाक उड़ाना या तुरंत अपनी राय देना कई बार सामने वाले को दुख पहुंचा सकता है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए कशिश, अच्छा संबंध वही है जहां लोग केवल बातें नहीं बल्कि एक दूसरे के दिल से सुनते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि युवा साथियों से और श्रोता साथियों से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अभी क्यों ना हमारे दोस्तों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी बहुत अच्छी बातें चल रही है, यही श्रोता साथियों, सम्मान है हर रिश्ते की पहचान।
1: बिल्कुल
0: जी हाँ, प्रेम के साथ साथ सम्मान भी किसी भी संबंध के लिए बहुत जरूरी है। कई बार कशिश हम सोचते हैं कि अपने परिवार के लोगों से तो जैसा चाहे वैसा हम व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन यही सोच रिश्ते में कड़वाहट पैदा करती है। हमें अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चों, भाई बहनों और दोस्तों सभी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। सम्मान का मतलब केवल बड़े लोगों का आदर करना नहीं, सम्मान का अर्थ है किसी की बात को महत्व देना, उसकी भावनाओं को समझना, उसकी पसंद और नापसंद का ध्यान रखना, उसे अपमानित न करना और उसके सामने और दूसरों के सामने भी अच्छा व्यवहार करना। विशेष रूप से परिवार और महिलाओं और बच्चों की बात करें तो उन्हें महत्व देना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति की अपनी सोच और अपनी भावनाएं होती हैं। यदि किसी व्यक्ति की राय हमसे अलग है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह गलत है। हमें मतभेद और मनभेद में अंतर समझना चाहिए। मतभेद होना सामान्य है, लेकिन मनभेद होना संबंधों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए छोटा साथियों, छोटी छोटी खुशियां रिश्तों को मजबूत बनाती है, उन पर हमें विशेष ध्यान देना है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमेशा कशिश बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती है। कई बार एक छोटी सी मुस्कान, प्यार से पूछा कि आप कैसे हैं, एक कप चाय पियेंगे, किसी की मदद करना या दो मीठे शब्द भी रिश्तों में बहुत खुशी भर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अगर आप सुबह घर के किसी सदस्य से मुस्कुराकर पूछे कैसे हो या कहें कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो सामने वाला व्यक्ति कितना अच्छा महसूस करेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे अपने लोग तो हमारे साथ ही हमेशा रहेंगे, लेकिन हम उनकी तारीफ करना या उनके प्रति आभार व्यक्त करना भूल जाते हैं। और यही सारी चीजें समय समय पर अगर हम नहीं करते हैं तो अगले जो रिश्ते हैं हमारे, वो धीरे धीरे ऐसा होता है कि हम तो इतना सब कुछ करते फिर भी हमारी न तो तारीफ होती है न ही कुछ होता है। और बाहर यही सारी चीजें जब हम करते हुए किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये व्यक्ति तो घर में तो ऐसे है और बाहर ऐसे है। तो श्रोता साथियों, हमें हमेशा अपने प्रियजनों से कहना चाहिए, धन्यवाद, मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, तुमने मेरी बहुत मदद की, मुझे तुम पर गर्व है, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ या समझती हूँ। ये छोटे छोटे शब्द संबंधों में बहुत बड़ी गर्माहट ला सकते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, हम कह सकते हैं साथियों कि हमें परिवार में छोटों को स्नेह और बड़ों को सम्मान देना चाहिए। मित्रता में भी हमें एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और अगर कार्यस्थल की बात करें तो कार्यस्थल पर अंजलि जी, सहकर्मियों के विचारों और क्षमताओं का सम्मान किया जाना चाहिए। सम्मान मिलने पर ही व्यक्ति स्वयं को महत्वपूर्ण और सुरक्षित महसूस करता है साथियों।
0: जी जी।
1: जिससे हमारे संबंध और भी अधिक मजबूत होते हैं। साथ ही विश्वास की बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्वास किसी भी रिश्ते की आत्मा है।
0: बिल्कुल।
1: जिस संबंध में साथियों विश्वास नहीं होता, वहाँ छोटी सी बात भी संदेह और विवाद का कारण बन सकती है। विश्वास एक दिन में नहीं बनता, इसे समय, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से धीरे धीरे अर्जित किया जा सकता है।
0: जी जी।
1: हमें अपने प्रियजनों से झूठ बोलने, उनकी बातों को दूसरों के सामने गलत ढंग से प्रस्तुत करने और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने से बचना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: यदि किसी बात को लेकर अंजलि जी गलतफहमी अगर हो भी जाए तो चुप रहने या अनुमान लगाने के बजाय सीधे बातचीत हमें करनी चाहिए। स्पष्ट और ईमानदार संवाद विश्वास को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: जी हाँ, कशिश आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि हमें गुस्से पर नियंत्रण रखना भी बहुत जरूरी है। कई रिश्ते गुस्से में बोले गए शब्दों के कारण कमजोर हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कभी कभी हम इतना गुस्सा आता है कि हम सामने वाले को ऐसे शब्द कह देते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है।
1: जी बिल्कुल।
0: लेकिन शब्द एक बार मुंह से निकल जाने के बाद उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुकना चाहिए। आप कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि कुछ देर शांत रहें, गहरी सांस लें, उस जगह से थोड़ी देर के लिए हट जाएं, पानी पिएं, तुरंत जवाब देने से बचें, शांत होने के बाद बात करें। याद रखिए कि गुस्से में लिया गया फैसला और गुस्से में बोला गया शब्द अगर बाद में पछतावा बन जाए तो ये रिश्तों को बिगाड़ भी सकता है। इसलिए रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी चुप रहना भी समझदारी है।
1: जी बिल्कुल। साथियों, आपको ये भी समझने की जरूरत है कि इसमें संवाद की भूमिका काफी अहम है। जैसा कि अंजलि जी, आज के समय में संबंधों में दूरी बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण संवाद की कमी भी है।
0: बिल्कुल।
1: लोग एक दूसरे के पास होते हुए भी मोबाइल फोन और सोशल मीडिया में ही व्यस्त रहते हैं और जो परिवार के सदस्य हैं वो एक ही घर में रहते हैं लेकिन उनके पास एक दूसरे से बात करने का समय ही नहीं होता
0: जी,
1: जिसका परिणाम दोस्तों भावनात्मक दूरी बढ़ने लगती है। इसलिए हमें अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए खुलकर और प्रेम पूर्वक बातचीत करनी चाहिए।
0: जी हाँ,
1: केवल अपनी बात कहने के बजाय सामने वाले की बात भी ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। कई बार व्यक्ति को समाधान से अधिक किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है अंजलि जी, जो उसकी बात को धैर्य पूर्वक सुने।
0: जी हाँ,
1: सक्रिय रूप से सुनना संबंधों को हम कह सकते हैं कि और भी गहरा बनाता है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हम संबंधों को लेकर बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, तो ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम के माध्यम से बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों बातें बहुत अच्छी चल रही है हमारी आपसे, अपने संबंधों को हम सुंदर और सकारात्मक कैसे बना के रख सकते हैं इस विषय को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: और गीत से पहले अंजलि जी, हमने ढेर सारी बातें हमारे श्रोता साथियों से की थी कि संवाद की क्या भूमिका होती है हमारे रिश्तों में और विश्वास किस प्रकार से एक मजबूत संबंधों की नींव मानी जाती है।
1: बिल्कुल।
0: यहीं अगर क्षमा करने की भावना की बात करें तो जब प्रेम होता है साथियों, वहाँ कभी कभी मतभेद भी होते हैं। कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से पूर्ण नहीं होता अंजलि जी।
1: बिल्कुल।
0: हम सभी से कभी ना कभी दोस्तों गलतियां होती हैं। यदि हम छोटी छोटी गलतियों को पकड़ कर बैठ जाए और उन्हें बार बार याद करते रहें तो संबंधों में कटुता बढ़ती रहेगी।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए क्षमा करना जरूरी है। हम देखते हैं अंजलि जी कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि क्षमा करना कमजोरी है, लेकिन दोस्तों क्षमा करना कमजोरी नहीं होता बल्कि मानसिक परिपक्वता का एक प्रतीक होता है।
1: बिल्कुल।
0: इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत व्यवहार को स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि उचित परिस्थितियों में हम अपने मन से अनावश्यक क्रोध और द्वेष को दूर कर रहे हैं। इसी प्रकार जब हमसे गलती हो साथियों, तो बिना अहंकार के अपनी गलती स्वीकार करके क्षमा मांगनी हमें चाहिए।
1: बिल्कुल कशिश, कई लोग केवल अपने अहंकार के कारण माफी नहीं मांगते। उन्हें लगता है कि अगर हमने उन्हें सॉरी कह दिया तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन सच्चाई यह है कि माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि साहस और समझदारी की निशानी है। यदि हमसे कोई गलती हो गई हो और हमारी वजह से किसी को दुख पहुंचा हो तो हमें ईमानदारी से माफी मांगनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: यही इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करके हमसे माफी मांगता है तो हमें भी उसे माफ करने की कोशिश करनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि कशिश, हर व्यक्ति से गलती हो सकती है। रिश्ते हमें जीतने नहीं है बल्कि रिश्ते हमें निभाने हैं। एक दूसरे को समझना है, उसमें माफ करने की जो चीजें हैं वो हमें बनाकर रखनी है।
0: जी हाँ।
1: माफी का अर्थ गलत बात को सही मान लेना नहीं है बल्कि अपने मन में जमा कड़वाहट को कम करना है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास काम करने का समय तो है, मोबाइल चलाने का समय है, लेकिन कई बार अपनों के लिए समय नहीं है। सुबह से शाम तक काम, जिम्मेदारियां, मोबाइल की दुनिया में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने परिवार के लोगों से बैठकर बात ही नहीं कर पाते। हमें अपने संबंधों के लिए समय निकालना चाहिए। परिवार के साथ बैठकर भोजन करना, बच्चों से उनके दिन के बारे में पूछना, माता पिता से बात करना, जीवन साथी के साथ कुछ समय बिताना, ये छोटी छोटी बातें संबंधों को मजबूत बनाती है।
0: बिल्कुल।
1: हर दिन थोड़ा समय अपने परिवार के लिए हमें जरूर निकालना है, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन से कुछ समय निकाल कर जब हम अपने परिवार के लोगों के साथ बैठते हैं तो उनके चेहरे पढ़ पाते हैं, उनके मन की खुशी, उनका दुख और ये सारी चीजें पढ़ते हैं।
0: जी हाँ।
1: शायद ये सारी चीजें पढ़ने के लिए उस व्यक्ति को किसी अपने की ही जरूरत होती है। श्रोता साथियों, रिश्तों में तुलना करना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। कई बार हम कहते हैं कि देखो फलाने व्यक्ति ने कितना अच्छा किया है,
0: बिल्कुल,
1: तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो, तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा समझदार है, तुम्हारी बहन तुमसे बेहतर है। इस तरह की बातें कशिश किसी व्यक्ति के मन को दुख पहुंचा सकती है और उसके आत्मविश्वास को कम कर सकती है। हर व्यक्ति अलग है, उसकी अपनी क्षमता है, अपनी सोच है और अपनी परिस्थितियां होती है। इसलिए हमें अपने परिवार के सदस्यों की तुलना दूसरों से करने के बजाय उनकी खूबियों को पहचानना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: बच्चों को भी हमेशा दूसरों से तुलना करने के बजाय प्रोत्साहित करना चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि जी, क्योंकि संबंधों में ये जरूरी नहीं है साथियों कि हम हर बार हम ही सही सिद्ध हो। कभी कभी संबंध बचाने के लिए अपने अहंकार को पीछे रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: प्रेम में मैं से अधिक हम का महत्व होना चाहिए अंजलि जी। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठकर दूसरों की खुशी के बारे में सोचता है तब संबंध और अधिक सुंदर बनने लगते हैं।
1: जी हाँ।
0: हम देखते हैं कि सकारात्मक सोच संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान करती है। साथियों, यदि हम हर बात में कमी, गलती या नकारात्मकता खोजते रहेंगे तो हमारे संबंध तनावपूर्ण हो जाएंगे। इसके विपरीत यदि हम लोगों की अच्छाइयों को पहचानेंगे, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करेंगे तो उनमें उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा अंजलि जी।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि उदाहरण के लिए देख लीजिए, यदि परिवार का कोई सदस्य हमारी सहायता करता है तो उसके प्रयासों को सामान्य मानने के बजाय हमें धन्यवाद देना चाहिए।
1: जी जी।
0: मित्र की सफलता पर ईर्ष्या करने के बजाय उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाने के बजाय उसे सुधारने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
1: जी जी।
0: सकारात्मक शब्दों का प्रभाव बहुत गहरा होता है साथियों, इसलिए सकारात्मक सोच का महत्व भी अधिक है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। कहा तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि परिवार की जो चीजें होती हैं, रिश्तों की जो मजबूती है उसे बनाने के लिए हमें किस तरीके से अलग अलग प्रयास करने की जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: तो जैसा कि बातें बहुत अच्छी चल रही है और भी कुछ बातें हैं जो निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, बातें बहुत अच्छी चल रही थी, अब यहीं बीच आपको बताना चाहेंगे कि हमें अपनी छोटी छोटी खुशियों का आनंद भी लेना चाहिए। दोस्तों, खुश रहने के लिए किसी बड़ी उपलब्धि का इंतज़ार हमें नहीं करना चाहिए। सुबह की ताज़ी हवा, प्रकृति की सुंदरता, पसंदीदा संगीत, किताबें पढ़ना, दोस्तों के साथ हंसना, जैसे जो छोटी छोटी चीज़ें होती है साथियों, वो जीवन में हमारे खुशी ला सकती है। अंजलि जी, जो व्यक्ति छोटी खुशियों को पहचानना सीख जाता है, वह हर दिन को खास बना सकता है। हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने संबंधों को मजबूत बनाना है, उसमें हमें सकारात्मक सोच को भी अपना साथी बनाना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान करती है। यदि हम हर बात में कमी, गलतियां, नकारात्मकता खोजते रहेंगे तो हमारे संबंध तनावपूर्ण हो जाएंगे। वहीं इसके विपरीत, यदि हम लोगों की अच्छाइयों को पहचानेंगे, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करेंगे, तो उनमें उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा। उदाहरण के लिए दोस्तों, कि परिवार का कोई सदस्य यदि हमारी सहायता करता है, तो हमें उसकी बात को सामान्य नहीं मानना है, बल्कि उसे धन्यवाद देना है। और यही हमारी सबसे बड़ी, कह सकते हैं कि उदारता होगी अंजलि जी। किसी भी संबंध को मजबूत बनाने के लिए समय देना काफी जरूरी होता है। केवल ये कह देना कि हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं पर्याप्त नहीं है। प्रेम और अपनापन हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए।
1: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कार्यक्रम में जान पा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे संबंधों को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रेम वाली चीजों के साथ में बहुत सारे अलग अलग प्रयास करने की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, किसी भी संबंध को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। यदि हम हर बात में केवल कमी ढूंढेंगे, हर व्यक्ति की गलतियों को देखेंगे, हर समय शिकायत करेंगे, तो संबंध में खुशी कम हो जाएगी।
0: हाँ।
1: इसके बजाय हमें लोगों की अच्छाइयों को भी देखना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छी बात जरूर होती है। हमें चाहिए कि अच्छाइयों की तारीफ करें, छोटी गलतियों को बड़ा मुद्दा न बनाएं, हर बात पर शिकायत न करें, अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करें, नकारात्मक बातों को कम करें। जहाँ सराहना होती है कशिश, वहाँ आत्मविश्वास बढ़ता है, जहाँ अपनापन होता है, वहाँ रिश्ते खिल उठते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए दोस्तों, एक परिवार तभी खुशहाल होता है जब सभी सदस्य एक दूसरे का सहयोग करें।
0: जबकि
1: जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति की नहीं होती है। यदि परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें और एक दूसरे की मदद करें, तो हम देखेंगे कि घर का वातावरण बेहतर बनता है। कभी कभी छोटी सी मदद भी बहुत मायने रखती है। जैसे कि घर के काम में सहयोग करना, बीमार व्यक्ति की देखभाल करना, बुजुर्गों के कामों में हाथ बटाना, बच्चों की पढ़ाई में मदद करना, किसी परेशान व्यक्ति की बात सुनना। संबंधों में मैं से ज्यादा हम की भावना जरूरी है।
0: जी।
1: जब परिवार मैं की जगह हम पर आता है, तो समस्याएं छोटी और खुशियां बड़ी लगने लगती हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी। साथियों, संबंधों में ज्यादा अपेक्षाएं भी तनाव का कारण बनती है। हम अक्सर चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी इच्छाओं के अनुसार व्यवहार करे।
1: जी।
0: लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है, उसकी अपनी परिस्थितियां और सीमाएं होती हैं। इसलिए हमें दूसरों से अपेक्षाएं रखने के साथ साथ उनकी परिस्थितियों को समझने का भी प्रयास करना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती अंजलि जी, तो हम तुरंत नाराज हो जाते हैं। ऐसे में हमें नाराज होने के बजाय शांतिपूर्वक बातचीत करनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाए रखना संबंधों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है।
1: जी हाँ।
0: दोस्तों, सच्चे संबंधों की पहचान सुख के समय नहीं बल्कि कठिन समय में होती है। जब कोई व्यक्ति परेशानी में हो, तब उसे केवल सलाह देने के बजाय भावनात्मक सहारा भी हमें देना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, कभी कभी ये कह देना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये बहुत बड़ी शक्ति होती है। दूसरों की समस्याओं का मजाक उड़ाने के बजाय साथियों, उनकी कठिनाइयों को छोटा समझने के बजाय उनकी भावनाओं को समझना हमें चाहिए।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि सहानुभूति और सहयोग की भावना संबंधों को गहरा बनाती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। बच्चों के साथ हमारा व्यवहार उनके भविष्य को प्रभावित करता है। कई बार माता पिता बच्चों को केवल डांटते हैं और उनकी गलतियों पर ध्यान देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन बच्चों को प्यार, समझ और प्रोत्साहन की भी जरूरत होती है। बच्चों से दोस्त की तरह बात करें, उनकी बातें सुने, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करें। यदि बच्चा कोई गलती करता है, तो उसे केवल डांटने के बजाय समझाने की कोशिश करें। बच्चों के मन में डर नहीं, विश्वास पैदा करना चाहिए। ऐसा माहौल होना चाहिए कशिश के बच्चा अपनी परेशानी अपने माता पिता से खुलकर बता सके। याद रखें कि बच्चे वही बातें सबसे ज्यादा याद रखते हैं जो उन्हें अपने घर से प्यार और अपनापन से अपनेपन के रूप में मिलती है।
0: बिल्कुल।
1: हमारे माता पिता और बुजुर्ग ने हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है कशिश, उन्हें हमारे समय और सम्मान की अधिक जरूरत होती है।
0: जी हाँ।
1: उनकी बातें हमें सुननी चाहिए, उनकी सलाह का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ समय बिताना हमारा कर्तव्य का हिस्सा है। कई बार बुजुर्ग व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करते हैं, ऐसे में परिवार के सदस्यों को उनके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। उनके अनुभव हमारे लिए बहुत मूल्यवान हो सकते हैं। बुजुर्ग घर का बोझ नहीं बल्कि अनुभव और संस्कार की अमूल्य धरोहर होते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, सादे श्रोता साथियों, हर संबंध में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इन सभी चीजों को और इनसे भी जो चीजें मनमुटाव होता है उन्हें शांतिपूर्वक सुलझाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: सुंदर संबंधों के लिए सहानुभूति बहुत जरूरी होती है। हमें स्वयं को कुछ समय के लिए दूसरे व्यक्ति की स्थिति में रखकर सोचना चाहिए। तो अंजलि जी, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सुंदर और सकारात्मक संबंध अपने आप नहीं बनते।
1: जी जी।
0: उन्हें प्रेम, विश्वास, सम्मान, धैर्य और समझदारी से बनाया जाता है। संबंधों को मजबूत करने के लिए हमें दूसरों को बदलने की अपेक्षा करने के बजाय स्वयं के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं और समय हो चला है अब आज कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता है, कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर को।
0: नमस्कार साथी। दोस्तों, आप सभी को छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ,

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है। तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, आप भी हमारे कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं और आप भी आपकी फरमाइश के गीतों को सुनना चाहते हैं तो आप भी आपकी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजुडवारा से। फिल्म का नाम है खलनायक। गीत के बोल ही पालकी में होके सवार चली रहे। इस गीत को आवाज दी है अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फिजात खान, अनुजी खान। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं दादरी गेट भवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल जी मेहरा। इस गीत के अनुरोध करता है जाफराबाद से सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, जंगुताई राज यादव, सचिन देशमुख, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, हर्षिता देशमुख, सानवी जी देशमुख और प्रणाली जी देशमुख। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकिस्टो, रोज डिकिस्टो, पल डिकिस्टो, विलिसी डिकिस्टो। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही पालकी में होके सवार चले रहे। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम आपकी फरमाइश का शुरुआती गीत तो हमने सुनी लिया है, अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडितपुर सिटी से। फिल्म का नाम है इतिहास, गीत के बोल ही दिल की कलम से। इस गीत को आवाज़ दी है अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़के जी और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप कुश मुणत जी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रसाद राजेंद्र जी वर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सताना एमपी से जुड़ रही हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही जी मलिक। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, शुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है इतिहास, गीत के बोल ही दिल की कलम से। इस गीत को आवाज़ दी है अलका जी ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सदर बाजार मारवाड़ा भिलाड़ा राजस्थान से। फिल्म का नाम है सच्चा झूठा, गीत के बोल है यूं ही तुमसे बात करती हूं। इस गीत की अनुरोध करता है रमेश चंद्र चौहान, जी नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतिज्ञा चौहान। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रीतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है नरवेल महाराष्ट्र से पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं नारायण इगली, सोपानी इगली, आशीष महेकर जी। इस गीत के अनुरोध करता है पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुम जी नेताम। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं। अमरावती से हीरामन शेंडे, सिद्धार्थ जी शेंडे। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है यूं ही तुम मुझसे बातें करती हो। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, अभी हमने लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, यूं ही तुम मुझसे बातें करती हो। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है यवतमाल महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है बातों ही बातों में, गीत के बोल हैं कहाँ तक ये मन। इस गीत की फरमाइश करता है राहुल मनवर, सरला मनवर, रोशनी, चेतन, विशाल और बीबी प्रियांशी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी और सिवन्या जी गोस्वामी। पटियाकला दुर्ग से जुड़ना चाह रहे हैं संजय कुमार शाहू, शशांक शाहू, सीमाजी शाहू और सुजाता जी शाहू। महाराष्ट्र से जुड़ रही बाबा साहेब कणककर, साखरबाई कणककर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणी ईश्वरी और कणककर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ना चाह रहे हैं। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही कहाँ तक ये मन को। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अकोला से। फिल्म का नाम है शिव शक्ति, गीत के बोल हैं शंकर भोले बाले। इस गीत की फरमाइश करता है राहुल बंसोड़, संयम बंसोड़, शरण बंसोड़, मीरा जी बंसोड़। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। छन्नूला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजुयोगिता श्रीवास, रंजन शाह, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी इस गीत के अनुरोध करता है। आगरा से श्रीमती सरिता चौरासिया, सुमित चौरासिया, वीर और अभ्यर्जी चौरासिया। कानपुर से जुड़ रहे हैं श्रीमती सुजाता चौरासिया, पंकज चौरासिया, पीयू और दियाजी चौरासिया। इस गीत के अनुरोध करता है मलियाना सरधाना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन। सरधाना मेरठ से जुड़ रहे हैं आदि जैन, अंश जैन और भव्य जी जैन। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

0: आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनुरी तेलीवाला से। फिल्म का नाम है मोहब्बतें, गीत के बोल हैं आंखें खुली हुई आंखों बंद। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और उदित नारायण जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया, आयन बाबू। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु, बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरार, नरगिस जी खातून। इस गीत के अनुरोध करता है डाबकी रोड अकोला से शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है मोहब्बतें, गीत के बोल हैं आंखें खुली हुई आंखों बंद। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने और उदित नारायण जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था,
2: आंखें खुली हो या हो।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है अनुराग, गीत के बोल हैं नींद चुराए चैन चुराए। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी गोस्वामी, टिंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा जी गोस्वामी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी जी। जमशेदपुर से जुड़ना चाह रहे हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना जी भाटिया। इस गीत के अनुरोध करता है खड़वासी अब्दुल गफ्फार डावर जी, अब्दुल हक डावर जी और जिया हक डावर जी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं सोहन जोशी। इसी बीच जुड़ना चाह रही बुलेंदखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी जी विश्वकर्मा। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जाकोत राजस्थान से। फिल्म का नाम है वक्त, गीत के बोल हैं दिन है बहार के तेरे मेरे। इस गीत को आवाज़ दी है आशा जी ने और महेंद्र जी ने, मगेंद्र जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है शंभुदयाल खटक, विमला देवी खटक, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं लोरमी छजेड़ी छत्तीसगढ़ से। कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से। डोमेंद्र ने ताम, गंगनेश्वरी ने ताम, चंचल ने ताम, कमलेश ने ताम, माहिर नीर जी ने ताम। इसे भी जुड़ना चाह रहे दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाच पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवीर, लक्ष्य सोहिनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणव श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रही है मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो और मानस सिंह राज। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं कोपर गांव से सुरेश मालोदी, वर्षा मालोदी। सेव गांव से जुड़ना चाह रहे हैं श्री राम जी और उषा जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं दिन है बहार के तेरे मेरे। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वागत है साथियों आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से हमारा रोजाना आपके साथ बना रहता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और जैसा कि आज भी ये सिलसिला सुबह 11 बजे से बना हुआ था हमारे आपके साथ में, आप इसे सुन रहे थे साथियों प्रस्तुतकर्ता मनीषा के साथ में, और अब आप इसे आगे सुनने वाले हैं मेरे साथ यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में। तो दोस्तों स्वीकार कीजिएगा आप सभी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना वक्त फिल्म का, दिन है बाहर के तेरे मेरे इकरार के। इसी गीत के बाद श्रोता साथियों फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, आपको बताना चाहूंगी बागपत यूपी से। फिल्म का नाम है दोस्तों मोहब्बतें। गीत के बोल हैं चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं बागपत यूपी से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, सालिक अली खान, सारिक अली खान। और भी हमारे श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में, जो पसंद करते हैं इसी गीत को। बागपत से जुड़ना चाह रहे हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीश देवी, अर्जुन भारती, नूतन जी, अंजलि, नितिन जगमोहन जी और सुधीर नूतन, सिद्धार्थ अकेला जी, रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी जी, ये दिल्ली से जुड़ रहे हैं। इसी बीच और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं उदयन पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, नीतू बघेल, दिव्यांश बघेल और विमलेश पाल। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं, आपको नाम बताना चाहूंगी मधुबनी बिहार से शबीर परवाना जी, शाहिद अली जी, जाहिद अली जी और शाहिद अली जी, साजिद अली जी। इसी बीच जुड़ रहे हैं अनुरोध करता छत्तीसगढ़ से भी नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइश का बहुत ही प्यारा सा गीत था, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, इसी गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं दोस्तों अगले फरमाइश की गीत की ओर। अगले फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे नेहरू चौक पैठन से सुरेश यादव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद यादव, सोनल यादव, बीबी सिया यादव। जलाना शहर से हैं सोमनाथ यादव, गीता ओम, सुभाष चंदन, एकनाथ, संगीता यादव। इन श्रोताओं की फरमाइश है त्रिशूल फिल्म का गीत मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है। साथियों बताना चाहेंगे इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार, लता मंगेशकर जी ने। और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। चोकुनटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सिद्धबासी, निकट प्रवीण अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन सुहान, अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण। उत्तराखंड से जुड़ना चाह रहे हैं हरिद्वार से ताजुद्दीन अंसारी, गुलाम शाबी रही, मेहराज जहां। बाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरा मणिवर्मा, पारस मणिवर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा, नोखिलाल वर्मा जी। और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं जोधपुर राजस्थान से, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी और हिमांक्ष जी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, ये राजस्थान भोपालगढ़ से जुड़ रहे हैं। और भी साथी हैं सैद मसूर, साइना अक्सर, नाजमा, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम जी, ये जुड़ रहे हैं कुमार हड़ा सहारनपुर से। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं नवाशहर पंजाब से भी गंगादीप थांडी, तिंदा कुमारी थांडी, प्रियंका थांडी, प्रशांत थांडी, प्रियम वामिका माणी थांडी जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, उस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है पटियाला से। फिल्म का नाम है साथियों नूरी। गीत के बोल हैं आ जा रे ओ मेरे दिलबर आ जा। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नीति पलक, करण गीतू, निहारिका हार्दिक और वंश बत्ता जी। इसी बीच और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। कोलगांव से हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी प्रतीक्षा, अभिषेक चंदन, सार्थक प्रतिमी, संतोष और पांडुरंग कुम्हार जी। जुड़ना चाह रहे हैं और भी दोस्त आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शुभम बेंडे, विजय जी, पवन जरिया, संजीव डाबीराव जी। जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, नसरी अंसारी, आसना मोहम्मद कैफ अंसारी जी। जुड़ना चाह रहे हैं और भी दोस्त सरगांव से छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा। अमरावती महाराष्ट्र से हैं श्याम कीटे, वनना कीटे, कार्तिक कीटे, भाविका कीटे, समस्त कीटे परिवार सदस्यगण। बीड़शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, जयश मेहतरे, रामनिवास अग्रवाल, दहेंद्र डहोल, बीपी कुलथे जी। छत्तीसगढ़ से प्रेम साय रजवाड़े, सोमार साय, मेर साय रजवाड़े जी, भगत और हेमंत कुमार जी, राम खेलावन जी, पेकरा जी। राहुल नगर अमरावती से हैं सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना ताई गुणाने, प्रेम प्रसिद्धि, हीरामन शेंडे जी। तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं आ जा रे ओ मेरे दिलबर आ जा। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता, उस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश आई है मोहाली पंजाब से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों फूल और कांटे। गीत के बोल हैं मैंने प्यार तुम्ही से किया है। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सानू जी ने और फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं बबल मल्होत्रा ओम प्रकाश मल्होत्रा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी दोस्त हमारे जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। बरेली से है आरिफ हुसैन अंसारी, अमीर अंसारी, शमीम अंसारी, नसरीन, शमा अंसारी, माहिनूर अंसारी जी। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा जी। पंजाब से जगराव से जुड़ना चाह रहे हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं रामहरी लोखंडे, मंजू लोखंडे, सूरज लोखंडे, अर्शबाबू, सुरमित, आराध्या लोखंडे जी। इसी बीच देहरादून से जुड़ना चाह रहे वसीम महाराष्ट्र से, मास्टर विठल, सुरेश सुषमा, सुरेश पद्य सुरेश, मायरा सुरेश जी। ये तला महाराष्ट्र से है शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अन्नय जायसवाल, दुर्गेश्री जायसवाल, राखी जायसवाल, तृप्ति जायसवाल जी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल है मैंने प्यार तुम्हें से किया है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, मैंने प्यार तुम्ही से किया है, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश की गीत हमारे बीच आई है बाबू रोड गिरडीह झारखंड से। फिल्म का नाम है नमक हलाल। गीत के बोल हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाचेगी। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद यासिन अंजान, सावन नवाज, असन नवाज, बाबू ऐत, मिफरा नवाज, बेबी चाहत जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं हमारे और भी साथी कोरबा से हैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानू शानू, बब्बन मुनहू काना ठाकुर और हरिप्रिया जी। और भी हमारे दोस्त हैं गंजू द्वारा उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं एहताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर अंसारी जी और लुबाना अंसारी जी, आलिया अंसारी जी। और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। श्रोता साथी जुड़ रहे हैं नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन जी शाह, राजन शाह, सुषमा कपूर जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, ओम मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक जी। तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल है के पग घुंघरू बांध मीरा नाचेगी। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

क्या देश है, क्या जात है, क्या उम्र है, क्या नाम है। अरे छोड़िए इन बातों से, हमको भला क्या काम है। अजी सुनिए तो, हम आप मिले तो फिर हो शुरू

श्रोता साथी, उस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी, पत्थर के फूल। गीत के बोल हैं, कभी तो छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है। ये फरमाइश हमारे बीच तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई है। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आशीष श्रीवास छत्तीसगढ़ से हैं, मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो, मानस राज। इसी बीच हमारे और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूँगी, जुड़ रहे हैं गनगोला दाता गन से इसरत खान, रहफ खान, शारा बेगम, शबरीम खान, शहबाज खान, शेफ खान, ईसान खान, संजय कॉलोनी खंडवा से हैं, अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियावलुक रहमान डावर, कादर डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं, सोहन जोशी जी। गंजू द्वारा से जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से और भी श्रोता साथी, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव जी। तो आइए साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, कभी तो छलिया लगता है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत आया है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, नेहा निशान और समस्त नामदेव परिवार, रजन साहू चौहान जी। इन श्रोताओं की फरमाइश है, आपको बताना चाहूँगी, कुछ कुछ होता है फिल्म का गीत साजन जी घर आए। फरमाइशकर्ता और भी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं। सुधाकर राजे जादव, प्रशांत राजे जादव, देशमुख जगुताई राजे जादव, संजित वयाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख जी और देशमुख परिवार के सभी सदस्यगण और भी हमारे साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। बताना चाहूँगी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छनुलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। बाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, बेबी जोशी, वेदही जोशी, हंसिका जोशी, लोकेश जोशी, पायल जोशी। खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डावर जी। जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू जी। इसी बीच और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। खंडवा से हैं अब्दुल गफार डावर, खुर्शद सिब, अब्दुल हक डावर, जियाउलक, अब्दुल रहमान डावर, कादर डावर जी। तो आइए साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है साजन जी घर आए। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

श्रोता साथियों, आपको बताना चाहूंगी कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी दोस्तों अगले कार्यक्रम आपकी फरमाइश में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ साथियों नमस्कार।

बहन बोनो, आ तो हती हमारी आज की सभा। हमें आशा कर रहा हूँ कि आज इस सभा में प्रसारित थावा वाला कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवल आ गया इन्हें बल्ले आप मन राय सुझाव आली शको हमारे अणपता माते हमारो पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9414082643। तो भाई बोनो, आ तो हती आपने आज नी सभा। बीजी सभा में फेरी मुलाकात थागा। तारुदी आपनी बोन अंजलि नु राम राम राम राम।

0: आज के सुविचार।
1: मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वो हे दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय। काल, काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता, समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
3: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनू, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जैया हवा में आपड़े हाल हां ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है।
3: होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा,
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
3: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
3: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है कि आप अपने जीवन का हर दिन पूरी तरह किस तरह से जिए।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि कशिश, जिंदगी हमें हर दिन एक नया पन्ना देती है। कुछ पन्ने खुशियों से भरते हैं, कुछ अनुभवों से, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर सुबह हमें एक और मौका मिलता है अपने आज को बेहतर बनाने का।
0: जी हाँ।
1: तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे कि हम अपने जीवन का हर दिन पूरी तरह से किस तरह से जिए, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय के बारे में तो आपको बता ही चुके हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जिस विषय को लेकर हम बात कर रहे हैं वो वैसे तो काफी सुनने में सरल लगता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो जीवन जीने का पूरा नजरिया बदल जाएगा। जागृति जी, विषय है साथियों, अपने जीवन का हर दिन पूरी तरह कैसे जीना है।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि दोस्तों, जिंदगी किसी परीक्षा की तरह नहीं है जिसमें हमें सिर्फ अंतिम परिणाम का इंतजार करना हो। जिंदगी तो उन छोटे छोटे पलों का नाम है जागृति जी, जो हर दिन हमारे सामने आते हैं।
1: बिल्कुल
0: साथियों, सुबह की पहली किरण, परिवार के साथ बिताया गया समय, दोस्तों के साथ हंसी, अपने सपनों के लिए की गई मेहनत, किसी की मदद करने की खुशी, ये जो सारी चीजें हैं ये सभी मिलकर हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। जागृति जी,
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि अक्सर हम अपने वर्तमान को छोड़कर भविष्य की चिंता में इतने उलझे रहते हैं। साथ ही हमारे जो युवा साथी, वो सोचते हैं कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं घूमूंगी, जब मेरा सपना पूरा होगा तब जिंदगी का मैं आनंद लूंगी। लेकिन इसी जब के इंतजार में आज का दिन हमारे हाथ से निकल जाता है।
0: बिल्कुल,
1: हमें ये समझना होगा श्रोताओं कि भविष्य की तैयारी जरूरी है लेकिन वर्तमान को जीना भी उतना ही जरूरी है।
0: जी जी,
1: इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएं या बिना सोचे समझे हर इच्छा पूरी करने लगे।
0: बिल्कुल,
1: बल्कि इसका मतलब ये है कि आज जो हमारे पास है उसकी कद्र करते हुए हमें अपने आज को पूरी ईमानदारी और उत्साह के साथ जीना है।
0: जी हाँ,
1: आज का दिन दोबारा नहीं आएगा साथियों, इसलिए आज की पढ़ाई आज करें, आज अपने माता पिता से प्यार से बात करें, आज अपने दोस्तों की मदद करें, आज अपने सपनों की दिशा में एक कदम बढ़ाएं और आज अपने मन की खुशी के लिए थोड़ा समय निकालें।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही अगर बात करें कि युवाओं के लिए पूरी तरह जीना क्या होता है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि युवावस्था जीवन का एक ऐसा दौर है जहां हमारे भीतर दोस्तों ऊर्जा भी होती है और सपने भी होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इसी समय हमारे सामने पढ़ाई, करियर, प्रतियोगिता, परिवार की अपेक्षाएं और भविष्य की चिंता जैसी कई चुनौतियां सामने होती है। ऐसे में पूरी तरह जीने का मतलब केवल घूमना फिरना या मनोरंजन करना नहीं है। पूरी तरह जीने का मतलब है दोस्तों कि जीवन के हर पहलू को संतुलित तरीके से स्वीकार किया जाए।
1: बिल्कुल,
0: पढ़ाई करें तो मन लगाकर करें, काम कर रहे हैं तो ईमानदारी से करें, खेल रहे हैं साथियों तो पूरे उत्साह से खेलें, और परिवार के साथ अगर बैठे हैं तो मोबाइल से थोड़ा दूर होकर उनसे दिल से जुड़ें। दोस्ती करें तो उसमें विश्वास और सम्मान भी रखें, और जब कोई कठिन परिस्थितियां आए तो उससे भागने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करें।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि जीवन का हर दिन अच्छा नहीं होगा दोस्तों, कुछ दिन थकान के होंगे तो कुछ दिन असफलता के, कुछ दिन निराश के भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वह दिन बेकार था। कभी कभी कठिन दिन हमें ऐसे सीख दे जाते हैं जो कोई किताब नहीं दे सकती। जागृति जी,
1: बिल्कुल कशिश, आपने बहुत सही बात बोली, क्योंकि हम अक्सर बड़ी खुशियों की तलाश में छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: एक कप चाय के साथ परिवार से बातचीत, बारिश में

0: इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, और हम बात कर रहे थे कि हम अपने जीवन का हर दिन पूरी तरह से किस तरह से जिए, जैसे कि हर दिन एक नई शुरुआत हमें किस तरह से करनी, इसको लेकर हमने हमारे श्रोता साथियों को बताया था कशिश।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही युवाओं के लिए जाना था कि पूरी तरह जीना क्या होता है। इसी के साथ हम जान रहे थे कि छोटी छोटी खुशियों को हम किस तरह से सीखें, सपने देखें लेकिन आज से ही शुरुआत करें, ये भी हमने जाना था। यही जानते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया और हमारा आज कैसा होना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों, आज का जो युवा है वो डिजिटल दुनिया में बहुत चीजों से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: सोशल मीडिया हमें जानकारी और मनोरंजन देती है, लेकिन कभी कभी साथियों हम दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी से तुलना करने लगते हैं। किसी की सफलता देखकर लगता है जागृति जी कि हम पीछे रह गए हैं।
0: जी हाँ।
1: किसी की यात्रा को देखकर लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है। किसी की उपलब्धि को देखकर लगता है कि हम अपनी मेहनत को छोटा समझने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी बातों से हमें ये याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जिंदगी किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी नहीं होती।
0: बिल्कुल,
1: हर व्यक्ति की अपनी गति है, अपनी परिस्थितियां हैं और अपनी यात्रा है। इसलिए दूसरों की तुलना करने के बजाय खुद से आप सवाल करें कि क्या मैं कल से आज थोड़ा बेहतर बन रहा हूं या बन रही हूं? अगर जवाब श्रोता साथियों हाँ है, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जिंदगी केवल करियर और सफलता का नाम नहीं होती युवा साथियों, हमारे रिश्ते भी हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जागृति जी,
0: बिल्कुल,
1: कई बार हम अपने दोस्तों को समय देते हैं लेकिन माता पिता से 2 मिनट बात करने का समय नहीं निकाल पाते। घर में लोग हमारे पास होते हैं लेकिन हमारा ध्यान हमेशा हमारे मोबाइल में होता है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आता है जब हमें ये महसूस होता है कि समय तो बीत गया लेकिन हमने उन खूबसूरत पलों को ठीक से जिया ही नहीं। इसलिए अपने परिवार के साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, दोस्तों से खुलकर बातें कीजिए, रिश्तों में सम्मान और संवेदनशीलता रखिए श्रोता साथियों, क्योंकि समय दिया हुआ प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि युवा जीवन में असफलता आना भी स्वाभाविक है। परीक्षा में कम अंक आ भी सकते हैं, प्रतियोगिता में हार हो भी सकती है, नौकरी का अवसर हाथ से निकल भी सकता है श्रोताओं, या कोई योजना सफल नहीं हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन एक सफलता हमारी पूरी पहचान नहीं है, असफलता को तय करने

0: दीजिए कि आप कौन हैं। उसे एक शिक्षक की तरह देखिए और पूछिए कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ।
1: बिल्कुल,
0: कभी रास्ता बदलना पड़ता है, कभी तरीका बदलना पड़ता है और कभी थोड़ी देर रुककर फिर से आगे बढ़ना ही पड़ता है। लेकिन हर अनुभव हमें कुछ न कुछ नया सिखाता है। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते खुद को भूल जाना भी सही नहीं है। श्रोताओं, युवाओं को अपनी पढ़ाई और करियर के साथ साथ आराम, रचनात्मकता, खेल, संगीत, कला, प्रकृति और अपने पसंदीदा कामों के लिए भी समय निकालना होगा।
1: बिल्कुल,
0: अपने मन की बात को समझना कमजोरी नहीं श्रोताओं, बल्कि आत्म जागरूकता है। जब हम खुद को समझते हैं तभी हम अपने जीवन के सही फैसले बेहतर तरीके से ले पाते हैं।
1: बिल्कुल, साथी श्रोता साथियों, हर रात आप खुद से 3 सवाल पूछिए। जैसे कि दिन के अंत में कुछ मिनट अपने लिए आप निकाले और खुद से ये पूछे कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे खुशी है।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा सवाल ये पूछे कि आज मैंने क्या नया सीखा, और तीसरा ये कि कल मैं अपने आज से थोड़ा बेहतर क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। जागृति जी, इन छोटे सवालों से धीरे धीरे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। युवा साथियों, जिंदगी को केवल भविष्य की चिंता में मत गुजारिए। आप अपने सपनों के लिए मेहनत जरूर कीजिए, लेकिन रास्ते में मिलने वाली खुशियों को भी महसूस कीजिए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि कल की तैयारी आप जरूर करें, लेकिन आज को मत खोइए। अपने परिवार को समय दीजिए, अपने दोस्तों को महत्व दीजिए, प्रगति को महसूस कीजिए, अपनी प्रतिभा को पहचानिए साथियों, और साथ ही साथ गलतियों से भी सीखिए। जरूरत पड़ने पर मदद मांगिए, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लीजिए, लेकिन अपनी यात्रा की तुलना किसी और से मत कीजिए। क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती इस बात में नहीं है कि हमारे पास सब कुछ हो, बल्कि इस बात में है कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसे कितनी खूबसूरती से जीते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, इसीलिए कहा गया है कि हर सुबह एक नया अवसर है, हर शाम एक नया अनुभव है, हर गलती एक नई सीख है और हर दिन जिंदगी को थोड़ा और खूबसूरत बनाने का मौका है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना श्रोता साथियों, आज से आप एक छोटा सा प्रयास करें कि हम अपने आज को कल के इंतजार में बर्बाद नहीं करेंगे। हम अपने सपनों के लिए मेहनत करेंगे, हम अपने रिश्तों को समय देंगे, हम छोटी छोटी खुशियों को महसूस करेंगे और जीवन में आने वाले हर दिन को पूरी जागरूकता, उम्मीद और उत्साह के साथ जिएंगे।
1: जी हाँ,
0: जिंदगी लंबी कितनी है ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन जो दिन हमारे पास है उसे कितना अर्थपूर्ण बनाना है ये काफी हद तक हमारे हाथ में जरूर है।
1: बिल्कुल,
0: आज का दिन आपके जीवन की कहानी का एक नया पन्ना है श्रोताओं, इसे शिकायत से नहीं उम्मीदों से भरिए, इसे डर से नहीं हिम्मत से भरिए, और इसे सिर्फ गुजारिए मत, इसे महसूस कीजिए, सीखिए और पूरी तरह से जिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी हैं और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो हम जरूर लेंगे दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहेंगे एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो युवा साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: भाई ने बोलू आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह या आपड़े ने कितनी शांति मिले है जैया हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा
1: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो
0: होवे आज नाना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है
1: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
2: थारी में पासो लावो चूनू हवाद सेहत बनेगा एकदम शानदार बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू बारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातू जोड़ो
0: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा
2: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि साथियों आप सभी जानते ही हैं कि हम कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर जब भी हाजिर होते हैं तो आपसे एक नए विषय को लेकर बातचीत करते हैं। और जैसा कि अभी हम कार्यक्रमों के माध्यम से श्रोता साथियों पोषण माह मना ही रहे हैं, तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर हमारी आपसे बातचीत रहेगी। साथियों, आज हम बात करेंगे शिशु के जीवन के पहले 1000 दिनों को लेकर। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो इसी दस्तूर को निभाते हुए दोस्तों सुनते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि गीत से पहले विशेष रूबरू में आपको करा ही चुकी हूँ कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं शिशु के पहले 1000 दिन को लेकर। तो श्रोता साथियों, किसी भी घर में बच्चे का जन्म खुशियों की शुरुआत होता है, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या श्रोता साथियों, आप ये जानते हैं कि बच्चे के जन्म के पहले से लेकर उसके 2 साल पूरे होने तक का समय उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और माना जाता है कि यही जो दौर होता है वो उसके पूरे जीवन की नींव रखता है और वो अवधि है जीवन के पहले 1000 दिन। श्रोता साथियों, इन 1000 दिनों में माँ का पोषण, गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य जांच, बच्चे का जन्म, स्तनपान 6 महीने बाद पूरक आहार, टीकाकरण, साफ सफाई और परिवार का प्यार, हर छोटी बात बच्चे के विकास में बड़ी भूमिका निभाती है। तो आज के इस कार्यक्रम में इस विषय को लेकर मेरी आपसे ढेर सारी बातें होंगी और बताना चाहूंगी साथियों कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बीच विषय विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे। तो आइए श्रोता साथियों, आप सभी को पहले विशेषज्ञ से रूबरू करवा देते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से बच्चे के जो प्रथम 1000 दिन होते हैं वो उसके जीवन में कितनी महत्वपूर्णता रखते हैं। सर नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: हाँ जी।
0: जैसा कि सर आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पोषण माह हम सभी मिलकर मना रहे हैं, तो आज सबसे पहले कार्यक्रम में आपका परिचय जानना चाहूंगी।

0: अपने को तो बांसवाड़ा वाले सब जानते हैं, डॉक्टर युधिष्ठिर त्रिवेदी। 50 साल से मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, बांसवाड़ा जिले में काम कर रहा हूँ। और अभी भी कोई सिलेक्टेड ऐसे पेशेंट होते हैं तो देखता हूँ राती तलाई में बैठ के।
1: तो सर जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बताया, तो आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि पहले 1000 दिन आखिरकार क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले आप हमारे श्रोता साथियों को यही बताइए आसान सी भाषा में कि जीवन के पहले 1000 दिन से हमारा क्या मतलब है।
0: जीवन के पहले 1000 दिन मतलब 1000 दिन पेट में बच्चा जिस दिन ठहरता है उस दिन से गिन लेने हैं। तो 9 महीने तो पेट के और फिर 2 साल और ऊपर, ये 1000 दिन है। तो अपने 1000 का आंकड़ा महत्वपूर्ण होता है, सब जानते हैं। ऐसे ही बच्चों में 1000 का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए ये 1000 दिनों पे दुनिया भर में वो कर रहे हैं कि भाई इन 1000 दिनों में बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने हमें बताया कि 1000 दिन क्या होते हैं और उसका क्या मतलब है, यही हम देखते हैं कि हमारे गाँव में कई परिवार सोचते हैं कि बच्चा जो है वो बड़ा होकर सब कुछ सीख जाएगा। तो उसके लेकर हमें क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, शुरुआती दिनों में हमें किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
0: आपने बिल्कुल सही प्रश्न बहुत अच्छा पूछा, गांव में ऐसा ही समझते हैं। इसलिए पोषण सप्ताह में अपन इसी बात की बात करेंगे कि पहले 1000 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जैसे मकान की नींव रखते हैं ना, तो नींव कमजोर हो गई तो बाद में बड़े होके बच्चे को आप कितना भी टॉनिक पिलाओ और कितनी भी अच्छी स्कूल में रखो और कसरत कराओ, उसका शरीर अच्छा नहीं बन सकेगा शुरू से जो कमजोर हो गया। तो पहले कमजोरी होने से अगर आंख चली गई विटामिन ए की कमी होने से, तो वो आंख वापस नहीं आएगी। पहले कमजोरी रहने से बार बार बीमारियां हो गई और शरीर में, तो बाद में कितना भी अच्छा खिलाओगे काजू बादाम रोज तो भी अच्छा नहीं होगा बच्चा। इसलिए ये पहले 1000 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आदमी के दिमाग का विकास होता ना, 1 किलो के ऊपर होता दिमाग, ये अपने खोपड़ी में रहता, उसी से तो सब फर्क पड़ता है ना। कोई तो कितना बड़ा नेता बन जाता है, कोई छोटा सा रह जाता है। किसी को पढ़ाओ तो याद ही नहीं रहता, किसी को अच्छा याद रहता है, कोई तो पढ़ लिख करके ना आकाशवाणी में चला जाता नहीं इतना बढ़िया बोलता है, और कोई गांव निसोरी होता है बोलता भी नहीं आवड़े, लोग करी करी ने बोले आम करी ने याद भी नहीं रहे। तो ये सब दिमाग पे निर्भर है और दिमाग का विकास 2 साल तक ही होता है। वैसे तो दिमाग वधे नहीं, अपने हाथ पोग ही तो थोड़ो 17 वर 18 वर नो था त्यार उधी वत्तू रे है ने, लांबो था सोरो पीलो था, बहिरने भी पहले वत्ती जाए पसे धीरे धीरे बच्चादानी मोटी था, बीजू मोटो था ने उंजाऊ शुरू था 12-13-14 वर सुधी है ने। पर दिमाग 2 वर में जितलो थई गयो थई गयो, खास तो पेट में रहे 9 महीना में ने खूब वधे, पसे थोड़ू थोड़ू वत्तो जाए पहला साल में ने, अजी थोड़ूक वधे 2 वर में ने, 2 वर बाद तो बिल्कुल नाम मात्र 4-5 वर सुधी थोड़ू सो वधे अने इना में तो फिर अपन उसको अभ्यास कराते हैं, पढ़ाएंगे लिखाएंगे उस पे। तो शुरू में ध्यान देना तो बहुत जरूरी है। नींव कमजोर थी गई तो मकान बिल्कुल बेकार है। अबे आप पूछोगा हूँ ध्यान देवू जुए,
1: बिल्कुल सर
0: पूछोगा एम तो बताओ। तो आपड़े बीजू ध्यान हूँ रखू के पेट में बच्चू हो तई वेरे माँ ने संता नहीं करे, माँ आराम करे बरोबर, तई वेरे माँ ने बराबर खवाड़वू है। खवाड़वू है तो आपड़े गाँव में मनक जाने के आप भाई तो 2 जीवी है, डबल खवाड़ो
1: है।
0: आपड़े आंगनवाड़ी में भी जाए तो गर्भवती महिला ने डबल आले अनाज सब है, तो डबल भी आलवू है ने खावानी गुणवत्ता। आपने अंग्रेजी में के क्वालिटी, आपने देशी भाषा में कहकर खावानो जे स्टैंडर्ड है के ये भी ताजू खाऊ जो है। एक तो रोटो खाओ मकीनो कोरो कोरो खा ले, ये भी अच्छो खाऊ पड़े ताजू है, पर रोटा ने अलावा दूध पिए, बादाम थोड़ा घी ले, शाक सब्जी ले, तो वो खाने की क्वालिटी बताएंगे। तो खाना डबल भी खाना, समय पे खाना, और खाने की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए कि साफ सब्जियां खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा घी वो भी देना चाहिए। ये तो खुराक में ध्यान रखने का है। दालें बहुत अच्छी है प्रोटीन की, बच्चा नु शरीर बने तो प्रोटीन भी जो है मांसपेशी बनवाने, तो दालें भी खानी चाहिए, विटामिन भी चाहिए तो साग सब्जी चाहिए, फल फूल भी चाहिए। कैल्शियम, बच्चे की हड्डियां बनेंगी तो माँ की हड्डी में से जाता है वो कैल्शियम, तो सीताफल जैसे फल खाने चाहिए। विटामिन सी भी जो है तो आपने आंवले हुए और पपीता पालक मेथी इनमें सब संतरे जे मले

0: नंदे दादा दादी घर में जो बनने वाले हैं उनकी सबकी इच्छा है कि माँ का ध्यान रखें, माँ बरोबर आराम करे, माँ ने कोई टेंशन नहीं आले, लड़ाई झगड़ो नहीं करावे, माँ ने है के दाड़े भी आराम करे, वो ध्यान रखे, इन्हें माते काम वारे ने के ना को आस करेगा हारी अटलेस्ट लाइवा अपने पढ़ना भी ने ऐसा नहीं है। जब पेट में बच्चा हो तो माँ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, खुराक अच्छी, उसके आराम का ध्यान रखना, उसके मानसिक स्वास्थ्य का, टेंशन नहीं था इन्हें, लड़ाई नहीं था है ने, भी कोई लड़ झगड़ न करो, अपने बीजा ने कोई लड़ाई हो, संता हो, घर में कर्जो थी गयो तो इन्हें माथे की बात न करो, ने चौथी बात मां नु असल ध्यान रखवा, बढ़िया कहानियां होनावानी, भगवान राम नी, कृष्ण कन्हैया लाल नी, अपने मन सब जाने है ने, तई वेरे भजन करे, माँ ने संता हो क्या जापो हरते ठाए गाले जापा में तो खूब दुखे है, आजकल नवी सूर्य थोड़ी गेवी भी है जापा में कोई थे गयु तो ये भी इन्हें हिम्मत अलाड़ी के कोई नहीं, सब आपूर तू भगवान करे, सपने कौन जापो करावे, आजकल तो अपने तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा बहन है, सब अस्पताल में आटली नर्से है, ये भी सब ध्यान रखो। बीजू कोई खराबी तो नहीं, बच्चा ने के माँ में खतरो तो नहीं रहे, जांचने हूँ के बताड़ो आप खबर है, अपने बहने होने इन्होंने भी खबर होगा, महीने ने महीने अस्पताल में जाने जांच करावे, 9 तारीख के जांच करावे, वो कौन सी जांच कहलाती है, ANC एंटीनेटल क्लिनिक है ने, पेट में बच्चों है तई वेरा महीने ने महीने जाने जांच करावी दवाखाना में, आज तक सरकार तो सोनोग्राफी करावे तो खबर पड़ी जा बच्चों मोटू थई रियो के नहीं थई रियो, बच्चा ने मई तो कोई खराबी नहीं, वजन करे सिस्टर तो खबर पड़ी जाए, खूनी जांच कराबी सिस्टर करे, दवाखाना में करे, सब जगह करे, खूनी जांच में खून कम तो नहीं ये खबर पड़ी जाए, खून कम हो तो माने भी खतरो, ये एंटीनेटल जांच भी कराबी, पहले जमाने तो जांच से थाती ना, तो हवे तो जांच में सब खबर पड़ी जाए, बच्चा नु वजन कितलू है, बच्चों बराबर थई रियो के नहीं थई रियो, बच्चों कमजोर तो नहीं, खूनी जांच से फटाफट नानी जगह थई जाए, तो ये जांच करा भी जरूरी, तो गर्भवती महिला नो ध्यान रखू तो इन तक उतारेगा, माँ भी ठीक देगा ना, पेट नो बच्चो भी ठीक रहेगा, इनो दिमाग भी बराबर
1: रहेगा। होवे जिम की सर आप घनी असल बातें मने बताड़ी रहो, तो आए सभी मु जानू चाहूंगा कि अगर जे सोरो है ये जन्म बाद भी इन वजन कम रही क्यों तो इन परिवार ने इन देखरेख खर्चे करवी है,
0: तो जापो असल जगह खराब होगा, कमजोर शुरू हो तो सांस भी नहीं ले, बस परमानेंट दिमाग खराब थी जाते, जे कमजोर शुरू हो तो इनो डॉक्टर नर्से बताड़ी देगा कि तुम्हारे जापा मोटो अस्पताल में कराओ है ने, हमारे जापो ये भी जगह कराओ जो के जहाँ डॉक्टर हो ने खून जुए तो खून भी मले, जहाँ नाना सोरा ने जुआ वास्ते बच्चों नो डॉक्टर हो, ऑपरेशन करी ने सोरू काढ़े या वो कम वजन वालू सोरू निस्तकी भी लेने तो बच्चा ना डॉक्टर ने 23 फरह दे के कार्ड तुम्हें सोरू रोयू नहीं हो, तो पहले तो थप थपावी ने 18 मिनट 15 सेकंड में 20 सेकंड में 18 मिनट में सांस ले लें, रोवे तो ठीक है, नहीं तो बस इन्हें ऑक्सीजन आ लें, इन्हें मशीन तक ही सांस आ लें, ये भी ध्यान रखू, बीजो कमजोर सोरू हो तो वधारे कमजोर हो तो अस्पताल में राखे, ऑक्सीजन आ लें, एक इनक्यूबेटर केवा एना में टेम्परेचर मेंटेन करें, नरी थकी दूध आले, आई नो दूध सब तक बढ़िया रहे, तो मानो दूध काढ़े हाथ तक दबावी ने काढ़ो के आजकल पंप आवे, पंप तक काढ़ी पसे नली थकी भी ये दूध पाओ, केम के सब तक बढ़िया रहे, आ तक अपने कमजोर नु बीजू कमजोर सोरू नु ठंडो पड़ी जाए सोरू तो इन्हें असल ओढ़ावी ने राखव पड़े, 2 किलो सुधी नो हो तो घरे राखी शक, ने 2 किलो थकी कम नो हो तो पसे दवाखाना में राखो, नहीं तो इनक्यूबेटर कहवा के इनमें टेम्परेचर सब कंट्रोल रहे, बच्चा ने एक वायर लगाड़ दे ने पेलो मशीन में है तेना में टेम्परेचर आवतु रहे, ने मशीन एवी रहे कि टेम्परेचर कम थाय ते इना में गर्मी वधारे पैदा थाय, तो सोरा नु टेम्परेचर बराबर रहेवू जोईए, ध्यान राखवानो बेन, सफाई भी कमजोर सोरा ने वधारे राखवानी, केम के बीमारी थई गई ते हजी कमजोरी थई जायेगा, पछी ने बीमारी जानलेवा थई जायेगा, बराबर वजन ने सोरो तो बीमारी ने हुए फेस करी ले, बीमारी ने दवाई करण ठीक थी जाने, कमजोर हो तो बीमारी लड़वान ताकत जरा नहीं हो तो जरा बीमार थी ने खलास
1: होवे, तो जिम की सर आपे बता दियो कि कमजोर जे सूरत आए हैं कम वजन वाला हैं इनको ध्यान अपना ने हरते रखो है
0: वधारे रखवानो होवे, हर एक सोरा नो ध्यान रखवानो पर कमजोर नो डबल रखवानो
1: होवे, तो जिम की सर घणी असल बातें आप बताड़ी रहो, आए से भी मु जानू चाहूंगा कि कई एवी गलती है आपड़े करी द से आपड़ा ने नहीं करवी सुवे आने टाइम,
0: एक तो पहले तो अपने मन काम से तो कम बुद्धि पीलू, पहले पहले दूध ने रे कोलेस्ट्रॉल पीरू पीरू से ये फेंकी देता, अवे तो आजकल समझ आ गई है सब में, हमारा रेडियो वाला एक खूब की दो है ने गांव गांव में आशा बहने हैं ने आंगनवाड़ी

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सच्चा बचपन में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार साथियों।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरावरा हंगरा किसान भाई बहनों ने आपनी बोन अंजलिनु राम राम। किसान भाई बहन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 एफएम माते ने आप सबनो घणे मान स्वागत करो हां हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के किसान भाई बहनों आप सब जानो सो के अमे अमारे टाइम माते हाजिर थई जह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाते। तो किसान भाई बहनों आज हमारी आप तक की बातचीत नो विषय है जलवायु शमन हूं कहवा है ने अणा परिवर्तन ने रोकवा बल्ले आपणे कया कया उपाय करी शका। तो किसान भाई बहनों अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी आप तक की घणा कानी बातें थाएंगा, पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरा विदा गीत मोरे करा आपड़ी वाते। तो किसान भाई बहन आप हमर दरेजू आपड़ू रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 एफएम माते।

0: किसान भाई बोनो गीत तो आयशो पूरु नैना गीत बात एक वगत फेरी आप सबनो घणेमान स्वागत कर रहा हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम खेती बाड़ी में जिम की किसान भाई बोनो अमे आपने गीत के पहले विषय बता दीदू तू के आज आपने बात करवा वा रहा के जलवायु शमन हूँ कहवाए ने आ जलवायु जो परिवर्तन थी रू है इन्हें आपने हरते रोकी सका। तो किसान भाई बोनो अना विषय माते जानकारी अलवा बल्ले आज आपने स्टूडियो में पधारे तक है श्रीमान प्रमोद जी रोकड़िया साहब। तो सब तक की पहले आपने हमरी लड़ा नी वाते मोरे कर आपड़ी वाते सर नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: किसान भाइयों सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: सर जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम खेती बाड़ी से समय समय पर जुड़ते हैं और हमारे बातचीत का एक नया विषय भी हमारे साथ में जुड़ता है तो आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत का विषय है कि हम ये जो जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं वो क्यों हो रहा है और साथ ही ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं क्योंकि ये परिवर्तन जो है वो हमारे लिए कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है।
1: निश्चित रूप से जैसा भी आप बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन आजकल अपन देखते हैं कि जलवायु के अंदर कई सारे परिवर्तन आते हैं
0: जी बिल्कुल।
1: कभी तो बारिश जल्दी आ जाती है कभी बारिश लेट आती है कभी वातावरण में गर्मी बहुत बढ़ जाती है कभी वातावरण में गर्मी कम हो जाती है ठंडक हो जाती है तो इसी को जलवायु परिवर्तन कहते हैं
0: जी हाँ।
1: और क्योंकि हम किसान लोग हैं हम खेती वाले लोग हैं तो हम ये देखते हैं कि जलवायु का हमारे को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है
0: जी बिल्कुल सर।
1: हमारे को इसका विपरीत प्रभाव जैसे अभी अपन देख रहे हैं कि बारिश नहीं आ रही तो ये भी जलवायु परिवर्तन का एक दुष्परिणाम है
0: जी बिल्कुल।
1: किस तरह से वातावरण के अंदर जो बादल बनने थे वो नहीं बन पा रहे और जो हवाएं का रुख है और जो गर्मी है वो ज्यादा

0: होकर बादल का बनने का प्रक्रिया रुक रही है
1: हाँ।
0: तो जो मानसून के बादल हमारे यहाँ अभी नहीं आ पा रहे
1: जी बिल्कुल
0: तो
1: सही।
0: एक ये साइकिल होता है, एक निरंतर एक चक्र होता है जो हमारे चलता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि साहब खरीफ है तो हम कहते हैं बरसात का सीजन आ गया, हम जून जुलाई में ये तैयार होते हैं कि हम बारिश आ रही है
1: जी बिल्कुल।
0: तो इस चक्र के चलते हमें एक निश्चित रूप से ठंड के दिनों में हमारी ठंड आना शुरू हो जाती है और वापस ठंड चली जाती है, तो ये चक्र के रूप में जाता है। लेकिन जलवायु के अंदर परिवर्तन, क्योंकि हम कुछ ऐसे तरह के गैसेस जो होते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं इसको, तो वो गर्म होती हैं और उसके हिसाब से जलवायु के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है उसमें जो वातावरण में से नमी जा रही है, धूप जा है, तो उसमें कुछ ऐसे है इंडस्ट्री वगैरह है उससे गैसेस बन रही है
1: जी जी।
0: तो इस तरह से जलवायु का परिवर्तन होता है
1: जी बिल्कुल सर।
0: इसको अपन ऐसा भी समझ सकते हैं कि हम जलवायु परिवर्तन के लिए दो तरीके से भी हम बात कर सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन को या तो हम अपनी खेती के ऊपर उसके विपरीत प्रभाव को रोकें और दूसरे जलवायु के परिवर्तन होने के कारणों को रोकें
1: जी बिल्कुल।
0: तो जिसको अपन जलवायु शमन भी कहते हैं
1: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये जो जलवायु परिवर्तन है इसका प्रभाव हमारी खेती पर भी होता है और साथ ही हम देखते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं वो हम पर भी इफेक्ट करती हैं। तो यही आपने जैसा कि बताया कि आज हम जलवायु शमन के बारे में बात करेंगे, तो सर ये क्या होता है और किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं?
0: जलवायु शमन जैसे अपन बात करें क्लाइमेट मिटिगेशन
1: जी बिल्कुल,
0: यानी कि क्लाइमेट का जो इस तरह से रोकना उसको कि हमारे खेतों पे और उस पे हमारे वातावरण में विपरीत प्रभाव ना पड़े
1: जी बिल्कुल।
0: तो एक तो होता है जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हम अपनी खेती को जलवायु के अनुरूप कर लें, उसका मतलब कि हम अपने जल्दी जो पकने वाली वो फसलों को ले लें
1: जी जी।
0: और ऐसे तरह के कारक बनाए ताकि हम उसके अनुरूप अपना काम करें, गर्मी है तो उसके अनुरूप करें खेती को, उसके अनुरूप जैसे हम कहते हैं मिलवा खेती करना शुरू कर दें, जैविक खेती करना शुरू कर दें, जैसे अपन बातें करते हैं कि हम जैविक खेती करेंगे तो नमी को हम ज्यादा रोक पाएंगे
1: जी जी।
0: मिट्टी को अच्छी कर पाएंगे, तो ये हम उसके अनुरूप हमारी खेती में परिवर्तन करें
1: जी बिल्कुल।
0: और दूसरा है कि हम उसके कारकों को रोकने का प्रयत्न करें, अब उसको हम जलवायु शमन कहते हैं, जलवायु जिस मिटिगेशन जो अपन बात करें ना
1: जी जी।
0: तो उसमें क्या है कि उसमें दो तरीके से बात करेंगे, क्योंकि एक जो अपन कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस होती है जो वातावरण को गर्म करती है
1: जी हाँ।
0: तो उनको तो कम करना, उनके जो कारण है उसको रोकना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की खपत करते हैं
1: जी जी,
0: जैसे अपन कहते हैं जंगल वगैरह जो जंगल के पेड़ वगैरह होते हैं, तो हम कहते हैं वन अधिक लगाना, पेड़ अधिक लगाना, तो उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो अपन जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते लेते हैं, तो अगर ज्यादा पत्ते होंगे, ज्यादा पेड़ होंगे, ज्यादा पौधे होंगे, तो उसको वो सोख सकते हैं
1: जी जी।
0: तो दो तरीके से कि कार्बन डाइऑक्साइड रोकना के प्रयास करना और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकली हुई है मतलब उसको जो सोखने वाला कार्यक्रम करना
1: जी बिल्कुल।
0: अब क्योंकि हम तो कृषि वाले आदमी, हम ये तो नहीं कह सकते कार्बन डाइऑक्साइड रोके, वो इंडस्ट्री वगैरह होती है उसके विकास के कार्य है, उनका अपनी एक गति है जो हमारे विषय में भी नहीं आती
1: जी।
0: हम कहते हैं भाई वो इंडस्ट्री को तो अपन नहीं रोक सकते हैं, हमें वो भी आवश्यकता है, लेकिन हम खेती के आदमी अपने वनों को बढ़ाना और इस तरह के जो कार्य है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं सिंक, यानी कि उसको सोखना, तो उसको सोखने की प्रक्रिया के जो परिणाम है उसको हम उस पर ज्यादा अपन फोकस करें
1: जी बिल्कुल। सर आपने सही कहा, क्योंकि हम अधिक से अधिक वन और पेड़ पौधे लगाएंगे तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको हम रोक पाएंगे, बाकी जो चीजें हैं वो अलग अलग निर्भर करती हैं, लेकिन हम जो हमारे स्तर पर कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए
0: बिल्कुल। इसको आप कैसे करें, अपन जैसे कहते हैं कि भाई कैसे किस रूप में हम इसको शमन करें
1: जी बिल्कुल।
0: तो शमन करने के लिए हम कई सारे, जैसे अभी वन की बात करें, अपन वन रोपण करें, वन रोपण में हम ज्यादा पेड़ लगाए, अभी अपन अपने ही बातें करें कि हमारे यहाँ कितना वन क्षेत्र है, अभी अपन देखते हैं हमारे यहाँ जंगल काफी है, बहुत पहले की बातें करते हैं तो खूब वन थे
1: जी,
0: लेकिन धीरे धीरे वनों का आकार हमारा कम होता जा रहा है। तो हमें धीरे धीरे जो वातावरण में गर्मी बढ़ती जा रही है, तो हम स्थानीय लेवल पे बात कर सकते हैं, तो हम स्थानीय लेवल पे अपन जिले की बात कर सकते हैं, हम जिले में किस तरह से वन का क्षेत्र बढ़ाए, अभी लगभग मानते हैं कि 20,000 हेक्टेयर हो तो हम उसको 5,000 हेक्टेयर और बनाए
1: जी बिल्कुल।
0: तो ऐसे करीब 5,000-1,000 हेक्टेयर अगर हम बढ़ाते हैं तो इस तरह से हम वन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं,
1: बढ़ा सकते हैं।
0: तो वन के क्षेत्र में हमारा जैसे महुआ है, हम सागवान है, ऐसे कई सारे करंज है, ऐसे जो भी वन के पौधे हैं, तो हम हमारे जो अपना वन विभाग है उससे हमारी सहयोग लेकर हम वन के क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे जो लकड़ी काटने की, पेड़ काटने की जो प्रक्रिया है उसको हमें रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो हमारी ओवरऑल जो हमारी कार्य है वो हमारे वातावरण को हमारे को फायदा देगी, क्योंकि जैसे अपन बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड कि जो सूखने वाले जो पौधे हैं यानी जो पेड़ है, क्योंकि उसमें एक पेड़ के अंदर बहुत सारे पत्ते होते हैं,
1: जी बिल्कुल सर,
0: तो उसमें ज्यादा गुंजाइश होती है कार्बन डाइऑक्साइड सूखने की, तो ऐसे पेड़ों का बढ़ाना चाहिए, तो इसके कार्यक्रम को करना चाहिए
1: जी।
0: तो एक तो हम इसी की बात करेंगे भाई वन रोपण है, दूसरा अपन बात करें कि जो हमारे ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है
1: जी जी,
0: तो उसमें जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्सर्जन होता है, जैसे कि अपन आजकल देखते हैं कि सोलर लाइट है ना, सूर्य की जो ऊर्जा का जितने विकल्प हैं, तो ऊर्जा के विकल्पों पे बात कर सकते हैं कि हम हमारे क्षेत्रों में, अभी हम अपन राजस्थान की बात करें
1: जी,
0: तो पूरा राजस्थान अपना सौर ऊर्जा के रूप में पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान है हमारा
1: जी,
0: तो हम उसको और बढ़ाते हुए, क्योंकि सूरज की रोशनी हमारे सबके लिए उपलब्ध है, तो उसमें हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, हमें अपने लाइट के लिए हमारे पास विकल्प बनाने चाहिए। आजकल कई सारी योजनाएं भी आती है
1: जी, जी।
0: जैसे छतों के ऊपर सोलर की प्लेटें लगाकर हम अपनी बिजली का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, तो ये भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के जो रोकने के कार्य है उसमें आता है, क्योंकि हम इनकी बात करते हैं कि हम अपन जो कैसे कोयला आधारित अगर बिजली बनाते हैं, तो कोयला आधारित बिजली बनने में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है
1: जी बिल्कुल,
0: एटॉमिक पावर वाले में कार्बन का उत्सर्जन होता है, लेकिन ऐसे जो है क्योंकि वो तो हमारी आवश्यकता है, लेकिन हम अगर छोटे रूप में भी कहें तो हम सूर्य ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, पन ऊर्जा है, इस तरह के जो विकल्प हैं उसका उपयोग को अधिक से अधिक करें, और क्योंकि हमारे जब हम जैसे बात भी करेंगे अपना, तो राज्य है नंबर वन है इसमें हमारे सबसे ज्यादा, क्योंकि गर्मी के हमारे बहुत सारे स्रोत हैं,
1: तो
0: हम उसका दोहन करके हम सोलर ऊर्जा का कार्य भी कर सकते हैं, और हमारे लेवल पे हम अपना जो सूर्य के जितने भी हैं, ताकि उससे सूर्य ऊर्जा के लिए हम जैसे मोटर चलाना है, घर के लाइट है, रोड़ों के लाइट है
1: जी जी सर,
0: और इस तरह से सोलर प्लेट लगाकर अभी ये भी चल रहा है कि अपने क्षेत्रों में भी के भी जल, क्योंकि उसमें जगह घेरता है, जब हम कांच की प्लेटें लगती है तो उसमें स्थान घेरता है, तो उसमें ज्यादा कभी ये भी माना जाता है कि जैसे पानी के ऊपर है, तो पानी के ऊपर लगाकर हम सोलर प्लेटें लगाते हैं, ये भी एक रूप बड़े रूप में ये कार्य भी
1: किया जा सकता है,
0: ये योजनागत कार्यक्रम है जो बड़े रूप में किया जाता है, लेकिन हमें इसके जो फायदे है उसको हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह से उसके लगाने का प्रयास करें
1: जी बिल्कुल,
0: तो इस तरह से हम उसको करें। अब फिर पर्यावरण के बारे में हम क्या है कि उसमें जन जागरूकता फैलाना है, इसके बारे में जैसे बात भी आज भी बात करें अपन रेडियो पे
1: जी जी।
0: तो ये भी जन जागरूकता फैलाने का है कि हमें जितने हमारे श्रोता हैं वो इसके बारे में सीख रहे हैं, हम पेड़ों के लगाने के महत्व को सीख रहे हैं, पेड़ों के लगाने के महत्व को हमको रोज सिखाया जाता है
1: जी बिल्कुल,
0: लेकिन हम उसके उस एंगल पर ये समझने की आवश्यकता है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है उसको रोकने के प्रयास करने चाहिए, उसको रोकने के प्रयास में अगर हमारा एक पेड़ भी हम लगाते हैं या हम वन के रूप में कोई अगर हम प्रयास करते हैं तो हमारे प्रयास बहुत लाभदायक होते हैं
1: जी बिल्कुल।
0: तो इस तरह से हमारे खेतों में हम कहते हैं भाई कि हम खेतों के चारों तरफ पेड़ लगाएं, तो पेड़ लगाना मिट्टी को रोकने के लिए तो फायदेमंद है ही है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए फायदेमंद है, हमारे यहाँ जो पानी के जो स्रोत हैं वो बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लेकिन साथ में हमारी जो कई हवाएं चल रही है तो उससे हमारे पौधों को बचाव के लिए भी आवश्यक है, और जो आज अपन जलवायु शमन की बात कर रहे हैं तो उसमें तो अति आवश्यक है कि जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को सूखने का जो स्रोत है वो बढ़ जाता है इससे
1: जी बिल्कुल।
0: तो इस तरह से ये भी करते हैं, फिर हम इसकी जानकारी के बाद में पर्यावरण की जो हमारी शिक्षा है इस पे भी जोर देना चाहिए कि जो हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में बच्चे पढ़ रहे हैं
1: जी जी।
0: तो उसके अंदर भी उनको ये ज्ञान देना की आवश्यकता है, हमारे जो गुरुजन है तो वो इसमें सेमिनार वगैरह करके वर्कशॉप करके हमारे कुछ बच्चों को तैयार करके इसके बारे में जिक्र करके टॉपिक को समझा कर बच्चों को समझाएं, ताकि जो पर्यावरण के बारे में बच्चों की जो जिज्ञासा है उसको शांत किया सकते हैं, जलवायु के बारे में जो जिज्ञासा है उसको शांत किया सकते हैं, और कहीं हम गलती से गलती काम ना करें। तो इसलिए बच्चों को हमारे जो स्कूल के हैं या कॉलेज में जो पढ़ने वाले जो हमारे शिक्षार्थी हैं तो उनको भी हमारे जो टीचर्स हैं गुरुजन हैं वो उनको ये स्पेशल रूप में लेकर इसकी शिक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो ये भी हमको करना चाहिए
1: जी बिल्कुल।
0: फिर कई सारे जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे अभी बात करेंगे ये पन ऊर्जा और ये है, लेकिन कुछ हाइड्रोजन ऊर्जा जैसे होती है, हाइड्रोजन एक गैस होती है जो वातावरण में बहुत रुख है, लेकिन उसके प्रयोग करके हमें गाड़ियों के लिए हमारा प्रयोग किया जा सकता है
1: जी हाँ।
0: तो उसके प्रयोग के लिए भी हम उस दिशा में भी हमको सोचना चाहिए कि किस तरह से हम उस पर करें। एक हम आजकल सुनते हैं कि सब इथेनॉल से गाड़ियां चल रही है, अभी हमारी चल रही है कि सब इथेनॉल जो है जैसे पेट्रोल वगैरह होता है उसमें एक इथेनॉल तत्व होता है, इथेनॉल तत्व को मिलाने से जो पेट्रोल की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और पेट्रोल की खपत कम हो जाती है। तो और इथेनॉल बनता कैसे, इथेनॉल जो हमारे पौधों के जो तत्व होते हैं, जो हमारे जैसे कड़वी है, मक्की की कड़वी है, गन्ने की कड़वी है, तो इनसे इथेनॉल बनता है। इनसे इथेनॉल बनने के बाद में उस इथेनॉल हमारा एक जो दहन के लिए काम में आने वाला एक ईंधन है, उसका प्रयोग होने से क्या, उससे कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज्यादा उत्सर्जन नहीं होता। तो इस तरह के प्रयोग अगर वैकल्पिक जो प्रयोग है उसको करके हम इसको काम में ले सकते हैं। तो इथेनॉल पे भी हम अपनी चर्चाएं चला सकते हैं। हमारे जो नए जो उद्योग लगाने वाले जो हमारे साथी लोग हैं वो इथेनॉल के उद्योग के बारे में भी बात करें, समझें और उसको लगाने के प्रयास करने चाहिए। तो इस तरह से फिर हमें कई सारे ऐसे विकास कार्यों के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि जो हमें अपना जनसंख्या वृद्धि है, तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं कि जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने के काम में आते हैं। तो हम केवल अपने जो कह ये नहीं बात करें कि इंडस्ट्री को रोकना, केवल हम ये नहीं सकें हमारे उद्योगों को रोकें, हम सीधे सीधे उद्योगों की जिम्मेदारी ना करें, हम उद्योगों की जिम्मेदारी के साथ में हमारी जिम्मेदारी को भी समझें कि हम इस किस तरह से उसके रूप में हम अपना फायदा अपने जो है जनसंख्या के हिसाब से फायदा कर सकते हैं, वन के हिसाब से फायदा कर सकते हैं, हमारे जो वैकल्पिक ईंधनों के बारे में बात कर सकते हैं, और इन सब के साथ में हम ये इस जमन के बारे में जन जागरूकता फैला सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाई बहनों को दी है कि किस तरीके से जलवायु जो शमन हो रहा है उसके क्या कारक हो सकते हैं, जैसा कि सर ये जो कारक हैं वो हमारे श्रोता साथी अगर कार्यक्रम सुन रहे होंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे वो कि कैसे आसान तरीके हैं बहुत सारे जिसकी वजह से ये जो जलवायु का परिवर्तन हो रहा है उसे हम बढ़ने से रोक सकते हैं। समय पर वर्षा हो, समय पर गर्मी हो, समय पर सर्दी हो, ये सारी चीजें हमारे जीवों को उपार्जन के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो ये सारी चीजों में जो परिवर्तन हो रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें रोकने के लिए हम अपना अहम योगदान दे सकते हैं। तो सर, जैसा कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे किसान भाई बहनों को आपने बहुत अच्छी जानकारी से अवगत करवाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: धन्यवाद।
1: सीम के किसान भाई बहनों, अवड़े आपड़े वैस में प्रमोद जी रोकड़िया सर जुड़े तक ने एने आपड़ा ने घनी असल तरीका तकी बतार दीदू है कि आज परिवर्तन थे रू है इन्हें रोकवा बल्ले आपड़ा ने घना आकाना जो उपाय है ये आपड़े स्तर माते करवा होगा, ने अगर आपड़े आ उपाय ने अपना भी लो तो आपड़े देखी शको कि आज परिवर्तन थे रू है ये रोकी जागा ने आपड़ो जो जीवन है ये सरल थे जागा। तो किसान भाई बहनों, आशा कर रहा हूँ कि आ हंगरी बातें आपे ध्यान तकी हामरी होगा ने आप अपनी वातन ने अपने जीवन में अमल भी करोगा। હવે આપણે દેખી રહ્યો કે ટાઈમ થઈ ગયો હૈ આપણે અણસ કાર્યક્રમ થી સૂટ પડવાનું, તો આપણે સૂટ તો પડ પણ સાથે પહેલા હામરી લે એક ઓર ગીત મોરે પડો સૂટ

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिंदगी पर बात की शुरुआत पानी तक ही करो। थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवन। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है मिट्टी और गांव के भविष्य को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: कहा गया अंजलि कि मिट्टी बचेगी तो गांव बचेगा, और गांव बचेगा तो देश का भविष्य संवरेगा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे मिट्टी और गांव के भविष्य का क्या महत्व है। लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं मिट्टी और गांव के भविष्य को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, किसी भी देश की असली पहचान केवल उसके बड़े शहरों, ऊंची इमारतों और आधुनिक तकनीक से नहीं होती। देश की आत्मा उसकी मिट्टी, खेतों, गांव और उन लोगों में बसती है जो प्रकृति के साथ कदम मिलाकर जीवन जीते हैं।
1: जी जी।
0: गांव की पगडंडियों से लेकर खेत की मेड़ तक, कुएं के पानी से लेकर मिट्टी की खुशबू तक, इन सब में हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन का आधार छिपा होता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, मिट्टी केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, यही मिट्टी अन्न पैदा करती है, पशुओं के लिए चारा देती है, पेड़ पौधों को जीवन देती है और करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार बनती है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए श्रोता साथियों, मिट्टी का भविष्य सीधे गाँव के भविष्य से जुड़ा हुआ है। यदि मिट्टी स्वस्थ और उपजाऊ रहेगी तो गाँव समृद्ध होंगे और यदि मिट्टी कमजोर होगी तो गांवों के सामने रोजगार, भोजन और पलायन जैसी अनेक चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।
0: जी हाँ।
1: आज आवश्यकता इस बात की है श्रोता साथियों कि हम गांवों को केवल अतीत की तस्वीर न समझें, बल्कि उसे भविष्य की नई संभावना का केंद्र बनाएं। आधुनिक तकनीक, शिक्षा, स्थानीय संसाधन और सामूहिक भागीदारी के माध्यम से गांवों को आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाया जा सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि मनुष्य का जीवन प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति का एक महत्वपूर्ण आधार मिट्टी है। खेत में बोया गया एक छोटा सा बीज मिट्टी, पानी, हवा और सूर्य के प्रकाश के सहारे पौधा बनता है और वही पौधा हमारे भोजन का आधार बनता है। हमारी थाली में आने वाला गेहूं, बाजरा, मक्का, दालें, सब्जियां और अनेक फल मिट्टी से ही हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए श्रोताओं, किसानों के लिए मिट्टी केवल खेती की जमीन नहीं बल्कि उसकी मेहनत, उम्मीद और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन लगातार रासायनिक पदार्थों का अत्यधिक उपयोग, मिट्टी का कटाव, पानी की कमी, जंगलों की कटाई और भूमि का अनियोजित उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।
1: जी हाँ।
0: अगर हम समय रहते मिट्टी की रक्षा नहीं करेंगे तो भविष्य में खेती की लागत बढ़ सकती है और उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए मिट्टी को बचाना केवल किसानों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, गांव भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं।
0: जी हाँ।
1: यहाँ लोगों के बीच आपसी सहयोग, सामूहिक श्रम और प्रकृति से जुड़ाव की परंपरा रही है।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कि गांव की पहचान केवल खेतों से नहीं होती, यहाँ कारीगर, पशुपालक और महिलाएं हैं, युवा हैं, छोटे व्यवसायी हैं और ऐसे अनेक लोग हैं जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: पहले गांव में जरूरत की अनेक वस्तुएं स्थानीय स्तर पर ही तैयार होती थी। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, बड़ी लकड़ी का काम करता था, लोहार औजार बनाता था और किसान खेती करता था। इस तरह गांव की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई थी।
0: जी हाँ।
1: आज समय बदल रहा है, डिजिटल तकनीक, इंटरनेट, आधुनिक कृषि उपकरण और नई शिक्षा ने गांवों के सामने नई संभावनाएं खोल दी है। आवश्यकता केवल यह है कि इन अवसरों का सही दिशा में उपयोग किया जाए।
0: बिल्कुल अंजलि,
1: इसी के साथ जागृति जी बात करें कि मिट्टी की रक्षा क्यों जरूरी है। तो श्रोता साथियों, मिट्टी बनने में बहुत समय लगता है लेकिन उसका क्षरण अपेक्षाकृत जल्दी हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: वर्षा के पानी के साथ हम देखते हैं कि उपजाऊ मिट्टी बहकर चली जाती है। जागृति जी, हवा से मिट्टी का उड़ना और लगातार एक ही प्रकार की खेती करना मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।
0: बिल्कुल।
1: मिट्टी को बचाने के लिए हमें जैविक पदार्थ का उपयोग बढ़ाना, फसल विविधता अपनाना, पेड़ पौधों को लगाना, खेतों में मेड़बंदी करना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए।
0: जी हाँ, इसलिए कहा गया है कि खेत की मेड़ मजबूत होगी, मिट्टी की पकड़ भी मजबूत होगी। किसान अगर मिट्टी की जांच करवाकर उसके अनुसार पोषक तत्वों का उपयोग करें अंजलि, तो खेती अधिक संतुलित और टिकाऊ बन सकती है। जैविक खाद, कंपोस्ट, फसल अवशेषों का उचित उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकता है।
1: जी जी।
0: जल और मिट्टी के गहरे संबंध को लेकर हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं तो मिट्टी और पानी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जहाँ पानी का सही प्रबंधन होता है वहाँ मिट्टी भी बेहतर स्थिति में रहती है। वर्षा का पानी अगर तेजी से बहकर बाहर चला जाए तो वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी ले जा सकती है।
1: जी हाँ।
0: गांव में तालाब, कुएं, छोटे जल स्रोत, खेत, तालाब, मेड़बंदी और वर्षा जल संचयन जैसे उपाय पानी को रोकने में सहायक हो सकते हैं। इसीलिए हर गांव में ये सोच विकसित करनी होगी कि बारिश की हर बूंद को बचाना है। पानी की हर बूंद बचाए श्रोताओं, मिट्टी और गांव के भविष्य को जरूर सजाए।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, हम जान रहे हैं मिट्टी और गांव के भविष्य को लेकर ढेर सारी बातों।
0: बिल्कुल।
1: ये बातें निरंतर आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, आज हम कार्यक्रम में बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत करने वाले हैं। उससे पहले आपको कहना चाहूंगी कि प्रकृति हमारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक है। वह हमें बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखाती है। पेड़ हमें धीरे सिखाते हैं, नदियाँ निरंतर बहते रहना सिखाती है और फूल हमें सिखाते हैं कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो उसमें सुंदरता और खुशबू बनाए रखी जा सकती है। आज का हमारा विषय है फूलों की छाओं में छिपा है जीवन का उपहार। जी हाँ दोस्तों, यह केवल फूलों की सुंदरता की बात नहीं है, यह उस जीवन दर्शन की बात है जिसमें प्रकृति, मनुष्य, परिवार, गांव और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं फूलों की छाव में छिपा है जीवन का उपचार।
1: बिल्कुल
0: जी हाँ श्रोता साथियों, प्रकृति ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए अनेक अनमोल उपहार दिए हैं। पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, मिट्टी, हवा और फूल, ये सभी श्रोता साथियों हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इनमें श्रोता साथियों फूलों का अपना एक अलग ही स्थान है। फूलों को देखते ही श्रोता साथियों मन खुशी और ताजगी को अनुभव करता है। उसकी सुंदरता वातावरण को आकर्षित बनाती है और उसकी खुशबू मन को प्रसन्न कर देती है। लेकिन श्रोता साथियों, क्या फूल केवल सुंदरता देने के लिए होते हैं? बिल्कुल नहीं, फूलों का हमारे जीवन और स्वास्थ्य से गहरा संबंध है।
1: बिल्कुल,
0: हमारी परंपरा में कई फूलों का उपयोग पूजा पाठ, घरेलू उपचार, सुगंध, सौंदर्य और विभिन्न पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धतियों में किया जा रहा है। हम देखते हैं श्रोता साथियों की गुलाब, गेंदा, चमेली, गुड़हल, कमल और कई अन्य फूल श्रोता साथियों हमारे आसपास आसानी से दिखाई देते हैं। इन फूलों में मौजूद प्राकृतिक सुगंध और वनस्पति योग्यताओं का अलग अलग उपयोग किया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: हालांकि श्रोता साथियों, किसी भी फूल को औषधि मानकर सीधे सेवन करना उचित नहीं है। स्वास्थ्य संबंधित उपयोग के लिए सही जानकारी और विशेषज्ञों की सलाह लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि फूल जो है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि फूलों की सुंदरता मन को सुकून देती है। श्रोता साथियों, क्या आपने कभी सुबह सुबह खिले हुए फूलों को ध्यान से देखा है? गुलाब की लालिमा, गेंदे का पीला रंग, चमेली की खुशबू और कई सारे ऐसे फूल होते हैं जिनकी सुंदरता हमें भाती है।
0: बिल्कुल,
1: और खेतों के किनारे खिले छोटे छोटे जंगली फूल, इन सबको देखकर मन जो है वो अपने आप प्रसन्न हो जाता है। प्रकृति का यही सौंदर्य हमारे मन को कुछ समय के लिए रोजमर्रा की भागदौड़ और तनाव से दूर कर सकता है।
0: जी हाँ,
1: आज हमारी जिंदगी मनीषा काम के दबाव, आर्थिक चिंता, पारिवारिक जिम्मेदारी और लगातार मोबाइल देखने की आदत के कारण ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। ऐसे समय में कुछ देर प्रकृति के बीच बैठना, पौधों को देखना, बगीचे में टहलना मन को आराम देने वाला अनुभव हो सकता है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति की हरियाली आंखों को ही नहीं मन को भी सुकून देती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर गुलाब की बात करें तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। इसका उपयोग सदियों से श्रोता साथियों सौंदर्य, सुगंध और पारंपरिक घरेलू देखभाल में किया जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: गुलाब की पंखुड़ियों से श्रोता साथियों गुलाब जल और अन्य सुगंधित उत्पाद बनाए जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: गुलाब की खुशबू मन को प्रसन्न करने में मदद करती है साथियों, और कई लोग गुलाब की सुगंध को आराम और ताजगी के लिए भी जोड़ते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, अब यही बात आती है कि फूलों के बीच समय बिताने का क्या महत्व है। श्रोता साथियों, जब हम किसी बगीचे में आते हैं तो वहाँ का वातावरण हमारे सामान्य वातावरण से अलग महसूस होता है।
0: जी हाँ,
1: खुली हवा, हरियाली, फूलों की खुशबू, पक्षियों की आवाज और धूप की हल्की गर्माहट, ये सब मिलकर हमें प्रकृति के करीब ले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज कुछ समय पैदल चलता है और अपने आसपास की प्रकृति को महसूस करता है तो यह उसकी सक्रिय जीवन शैली बन सकती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि फूलों को सूंघना या पौधों के बीच बैठना किसी बीमारी का वैज्ञानिक इलाज नहीं है। इसका लाभ मुख्य रूप से मन की शांति और स्वस्थ जीवन शैली से जुड़ा हुआ है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, जीवन में तनाव पूरी तरह हम देखते हैं कि कभी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे निपटने के तरीके जरूर सीखे जा सकते हैं। प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना, सुबह टहलना, पौधों की देखभाल करना, खुली हवा में बैठना और परिवार के साथ समय बिताना तनाव कम करने वाली स्वास्थ्य आदतों का हिस्सा हो सकता है। एक छोटा पौधा मनीषा हमें बहुत बड़ी सीख देता है। वह आज लगाया जाता है लेकिन उसका फल और फूल हमें भविष्य में मिलता है।
0: हाँ।
1: इसी तरह हमें भी अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, कुछ परिस्थितियों में समय, प्रयास और सकारात्मक सोच की जरूरत होती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से फूलों की छाव में छुपा है जीवन का उपचार, इस विषय को लेकर हम बातें कर रहे हैं। तो ये बातें हमारे आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दी।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान रहे थे, यही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि फूल केवल हमारे मन को सुंदर नहीं लगते, वे प्रकृति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फूलों पर आने वाली तितलियां और मधुमक्खियां परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: बिल्कुल,
0: अनेक पौधों और फसलों के बीच चक्र में परागण जरूरी होता है, इसलिए जब हम अपने घर या खेत के आसपास फूलदार पौधे लगाते हैं तो हम केवल सुंदरता नहीं बढ़ाते बल्कि छोटे छोटे जीवों के लिए भी अनुकूल वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: प्रकृति में हर जीव दूसरे से जुड़ा हुआ है। फूल है तो कीट है, कीट है तो परागण है, और परागण प्रकृति के अनेक पौधों के जीवन चक्र का हिस्सा है।
1: हाँ।
0: यानी एक छोटा सा फूल भी प्रकृति की बड़ी व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि लोगों को पौधों की देखभाल करना बहुत अच्छा लगता है। सुबह पौधों को पानी देना, नई कली देखना, सूखे पत्ते हटाना और पौधों को धीरे धीरे बढ़ते देखना मन में खुशी पैदा कर सकता है। विशेषकर बच्चों को पौधों से जोड़ना बहुत उपयोगी है। जब बच्चा एक छोटा पौधा लगाता है और कुछ महीने बाद उसमें फूल देखता है तो उसे धैर्य, जिम्मेदारी और देखभाल का महत्व समझ आता है। उसे यह भी समझ आता है मनीषा कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, इसलिए प्रकृति की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें गेंदे के फूल की तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि गेंदा हमारे घरों और गांव में आसानी से दिखाई देने वाला फूल है।
0: बिल्कुल,
1: पूजा पाठ और सजावट में इसका खूब उपयोग किया जाता है। साथियों, इसकी पीली और नारंगी रंग की पंखुड़ियां वातावरण को उत्साह से भर देती है। गेंदा पारंपरिक वनस्पति ज्ञान में भी श्रोता साथियों महत्वपूर्ण माना गया है। इसकी पत्तियों और फूलों का विभिन्न पारंपरिक उपयोग में उल्लेखन मिलता है। हालांकि श्रोता साथियों, किसी भी पौधे को उपचार के रूप में इस्तेमाल करने से पहले हमें विशेषज्ञों की सलाह लेना हमारे लिए जरूरी है। गेंदा हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण संदेश देता है साथियों, स्वास्थ्य के लिए। श्रोता साथियों, प्रकृति हमेशा दूर के जंगलों में नहीं होती, हमारे घर के आसपास उगने वाले पौधों में भी प्रकृति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।
0: जी हाँ मनीषा, आपने सही कहा। यही बात करें श्रोता साथियों से कि कई बार हम सुनते हैं कि किसी फूल या पौधे से हर बीमारी ठीक हो जाती है, ऐसी बातों पर बिना प्रमाण के विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ पौधों में औषधीय गुण हो सकते हैं और उनसे बनी कुछ चीजों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा में किया जाता है, लेकिन किसी पौधे, फूल, पत्ते या घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल बीमारी के इलाज के लिए करने से पहले विशेषज्ञ और डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: फूलों की सुंदरता और प्रकृति से मिलने वाला सुकून हमारे जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन बीमारी होने पर सही चिकित्सा लेना भी उतना ही जरूरी है। श्रोता साथियों, पेड़ पौधे हमारे आसपास के वातावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
1: जी हाँ।
0: वे हमें छाया देते हैं, मिट्टी बचाने में मदद करते हैं और अनेक पक्षियों और जीवों को आश्रय देते हैं। हरियाली वाला वातावरण हमें मनीषा प्रकृति के करीब रहने का अवसर देता है।
1: जी हाँ।
0: गाँव में खेतों की मेड़, घर के आंगन, स्कूल परिसर और सामुदायिक स्थानों पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल पौधे लगाए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, पौधा लगाना शुरुआत है, उसकी देखभाल करना असली जिम्मेदारी है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि फूल है वो प्रकृति की मुस्कान है, वे हमारे घर, आंगन और वातावरण को सुंदर बनाते हैं। उनकी खुशबू मन को प्रसन्न करती है और उनकी रंग बिरंगी छटा ही वो श्रोता साथियों हमारे जीवन में आनंद भरती है।
0: बिल्कुल,
1: गुलाब हमें खुशबू और कोमलता का संदेश देता है, गेंदा हमारी परंपराओं से हमें जोड़ता है, चमेली वातावरण को सुगंधित करती है, गुड़हल प्रकृति की सुंदरता को याद दिलाती है और कमल है वो श्रोता साथियों हमें कठिन परिस्थितियों में खिलने की प्रेरणा देता है।
0: बिल्कुल,
1: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि फूलों का वास्तविक उपचार केवल उनके औषधीय उपयोग से नहीं है, बल्कि श्रोता साथियों प्रकृति से हमारा संबंध में भी छुपा हुआ है। आइए श्रोता साथियों, हम अपने घर और गाँव में अधिक से अधिक पौधे लगाएं, बच्चों को प्रकृति से जोड़ी फूलों और पौधों की देखभाल करें, सुबह शाम कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं और अपने जीवन में सकारात्मकता के लिए जगह बनाएं।
0: बिल्कुल मनीषा, यही अब बात आती है कि प्रकृति हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। श्रोता साथियों, फूलों की सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि जीवन में कठिनाइयां आने के बावजूद हमें खिलना नहीं छोड़ना चाहिए। फूल मिट्टी में पैदा होता है, धूप सहता है, बारिश छिलता है और फिर भी अपनी खुशबू बिखेरता है। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है, हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी लेकिन हमें उनसे सीख लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। जब मन परेशान हो तो कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना, परिवार से बात करना, मित्रों से अपनी बात साझा करना, नियमित शारीरिक गतिविधियां करना और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ से मदद लेना स्वस्थ रास्ते हैं। यही अब बात आती है कि आज से करें छोटे से शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, आज से ही आप अपने घर के आसपास एक पौधा लगाएं, उसकी नियमित देखभाल करें, बच्चों को प्रकृति से जोड़ें, फूलों और पौधों को बेवजह नष्ट न करें, सुबह और शाम कुछ समय प्रकृति के बीच बिताएं और किसी बीमारी के इलाज के लिए बिना सलाह के घरेलू नुस्खे पर निर्भर न रहे, क्योंकि स्वस्थ जीवन केवल दवा से नहीं बनता बल्कि स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक भोजन, नियमित गतिविधियां, पर्याप्त आराम, मानसिक शांति और समय पर चिकित्सा, ये सभी स्वस्थ जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। फूल हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन में सुंदरता हर जगह मौजूद है। कभी वह हमारे आंगन के छोटे से गमले में होती है, तो कभी खेत की मेड़ पर होती है, तो कभी गांव के रास्तों के किनारे, कभी जंगल में, तो कभी किसी पेड़ की छांव में। हमें बस उसे देखने और महसूस करने की जरूरत है। प्रकृति हमारे शरीर, मन और समाज के लिए कई तरह से उपयोगी है, इसलिए प्रकृति से जुड़ना अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक सुंदर कदम हो सकता है।
1: जी हाँ।
0: फूलों की छांव हमें सिखाती है कि प्रकृति के करीब रहिए, जीवन को सरल बनाइए, मन को सुकून दीजिए और स्वस्थ रहने की आदतों को अपनाइए, क्योंकि याद रखिए प्रकृति हमारी साथी है, उसकी रक्षा करेंगे हम तो स्वस्थ और सुंदर भविष्य की ओर बढ़ पाएंगे।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्य प्रद बातें अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारशर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
2: नमस्कार।

ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, नई भाषा सीख सकते हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, नौकरी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं, नई तकनीक सीख सकते हैं और अपने हुनर को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, एक गांव में रहने वाला युवा आज मोबाइल के माध्यम से देश दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकता है। लेकिन समस्या मोबाइल नहीं है दोस्तों, समस्या तो तब शुरू होती है जब मोबाइल हमारे समय और ध्यान का मालिक बनने लगता है। साथियों, जब हम कहते हैं कि बस 5 मिनट फोन देखता हूँ, तो वो श्रोता साथियों देखते देखते आधा घंटा हो जाता है, फिर कहते हैं कि एक वीडियो और देख लेता हूँ, और एक वीडियो से 10 वीडियो हो जाते हैं श्रोता साथियों। यही वह जगह है जहाँ साधन धीरे धीरे हमारी आदत बनने लगता है। जी हाँ साथियों, यही है मोबाइल एक साधन के रूप में आदत तक के सफर की बात। तो यही साथियों एक छोटे से गांव के युवा की कहानी मैं आपको बताना चाहूंगी, वो है रवि। साथियों, रवि पढ़ाई में ठीक था, उसका सपना था कि वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करके एक अच्छी नौकरी हासिल करे। उसने अपने लिए रोज का टाइम टेबल भी बनाया, जैसे कि सुबह उठना कब है, थोड़ा व्यायाम करना है, पढ़ाई करना है, शाम के 2 घंटे परीक्षा की तैयारी करनी है। वैसे तो श्रोता साथियों शुरुआत में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था और कुछ दिन बहुत अच्छे भी चले। फिर एक दिन उसने पढ़ाई से संबंधित वीडियो देखने के लिए मोबाइल को उठाया, वीडियो देखा, उसके बाद दूसरा वीडियो सामने आया, फिर तीसरा। फिर श्रोता साथियों सोशल मीडिया के एक एक करके नोटिफिकेशन आने लगे। साथियों, रवि ने सोचा कि थोड़ा सा देख लेता हूँ, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट बीते साथियों, फिर 10 मिनट बीते, और फिर 20 मिनट बीते। फिर किसी दोस्त का मैसेज आया, फिर एक वीडियो, फिर एक रील। दोस्तों, जब रवि ने मोबाइल नीचे रखा तो लगभग 1 घंटा बीत चुका था। उसने किताब खोली, लेकिन अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। फिर क्या हुआ, अगले दिन भी यही हुआ साथियों। फिर धीरे धीरे रवि की पढ़ाई कम और मोबाइल का समय ज्यादा होने लगा। कुछ महीनों बाद उसने ये महसूस किया कि समस्या उसकी किताबों में नहीं थी, समस्या थी उसका ध्यान और उसके नियंत्रण में। उस दिन रवि ने एक फैसला लिया, उसने मोबाइल साइड में रखा और उसने मोबाइल देखना भी छोड़ दिया। उसने बस मोबाइल के इस्तेमाल के नियम बदल दिए, जैसे कि पढ़ाई के समय फोन दूर, जरूरी काम के लिए फोन पास, सोशल मीडिया के लिए निश्चित समय, सोने से पहले मोबाइल नहीं साथियों। धीरे धीरे उसका ध्यान वापस आने लगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने मोबाइल को अपनी जिंदगी का मालिक बनने के बजाय अपना साधन बनाना जरूरी समझा साथियों। और यही हम सभी को करना है, क्योंकि वर्तमान में श्रोता साथियों मोबाइल हम सबकी आदत बन चुका है और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम मोबाइल चलाते चलाते अपने जरूरी कामों को भूल जाते हैं। तो इस तरीके से साथियों, इस कहानी के माध्यम से मेरा आपसे कहने का तात्पर्य यही है कि आप मोबाइल का यूज कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मोबाइल का उपयोग मत कीजिए,

प्रश्न ये उठता है कि अगर मोबाइल हमारी आदत बन रहा है तो इसे पहचानना हमें कैसे है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मोबाइल आपके लिए जरूरत है या आदत। आप अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। पहला सवाल साथियों आपका ये होगा कि क्या आप बिना किसी जरूरी काम के बार बार मोबाइल चेक करते हैं। दूसरा सवाल ये कि क्या मोबाइल दूर रखने पर आपको बेचैनी महसूस होती है। तीसरा सवाल ये साथियों कि क्या आप पढ़ाई या काम के बीच बार बार स्क्रीन को देखते हैं। चौथा यह कि क्या आप मोबाइल चलाने के लिए अपना जरूरी काम टाल देते हैं। पांचवा ये श्रोता साथियों कि क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ 5 मिनट मोबाइल देखने से क्या होगा लेकिन बहुत ज्यादा समय बाद में निकल जाता है। छठा सवाल ये श्रोता साथियों कि क्या मोबाइल के कारण आपकी नींद का समय बिगड़ रहा है। और सातवां ये कि क्या परिवार या दोस्तों से बात करते हुए भी आपका ध्यान फोन में ही बना रहता है। साथियों, अगर इनमें से कई सवालों के जवाब आपके हाँ है तो शायद मोबाइल आपकी जरूरत से ज्यादा बढ़कर आपकी आदत बन रहा है और आपको इसे नियंत्रण में करना होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि आज हमारे युवा साथियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती समय है। साथियों, जिंदगी में पैसा खो जाता है तो मेहनत करके वापस हम कमा लेते हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो दोबारा हासिल कर ली जाती है लेकिन गुजरा हुआ समय जो होता है साथियों वो वापस नहीं आता। युवावस्था जीवन का वह दौर है जिसमें हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं और इसी समय हम ये तय करते हैं साथियों कि हमें आगे क्या बनना है, कौन सा हुनर हमें सीखना है, किस क्षेत्र में जाना है और अपने परिवार और समाज के लिए क्या करना है। लेकिन साथियों, अगर दिन का बड़ा हिस्सा हम बिना किसी उद्देश्य के मोबाइल स्क्रीन पर निकाल देते हैं

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अभी ही समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे

में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसे स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई न बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का